आज से श्री दरबार साहब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण कर रहे सी। एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा अमृतसर केंद्र है। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस ते दी पंजाबी सेवा। स्टडी के मुताबिक इस वेले सवेर दे 6 बजे वाले ने हुण पेश है प्रोग्राम सूफियाना कलाम।

You've been down.

ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਫੀਨਾ ਕਲਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते खां सवाए आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बोस ऑन योर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते बुध सकंदा प्रोग्राम शुरू थी चुको है। डिटेल्स कुछ मित्र आहिनि त अगर में तव्हां हमेशह भगत कलाम साहब जन जी मिठड़े आवाज में कलाम ॿुधंदा तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो पोइ प्रोग्राम नशर कयो वेंदो सुञाण तोखे ख़बर कहिड़ी ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। इहा त असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधायो हींअर अचो त भगत कलाम साहब खे ॿुधूं।

भगत कौरव साहब जंजी मिठड़े आवास में कलाम धीरे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे पेश आहे तफ़सरो गुज़िरियल हिकु ॾहाके दौरान भारत ऐं अमरीका मंझि तावन तमामु घणो वधीक वधियो ऐं पुख़्तो थियो आहे। अॼु जी तारीख़ में इहो वसी समत आहे तंहिंमें घणाई खेत्र शुमार आहिनि। सेखिदानी वापार ऐं सीड़प खां वठी करे बचाव ऐं सुरक्षा तइलीम ऐं स्किल तंहिंखां सवाइ तवानाई ऐं माहौलियात हिन खां अलावा ॿिया घणा ई खेत्र अची था वञनि। भारत अमरीका हिकमत अमी भाईवारी में हिकु ॿियो नओं बाब जोड़ियो वियो आहे जो क्रिटिकल ऐं उभरंदड़ टेक्नोलॉजीज़ ते मई 2022 में हिकु नई शुरूआत जो ऐलान कयो वियो। क्रिटिकल ऐं एमरजिंग टेक्नोलॉजीज़ यानी कि ICET तंहिंमें क़ुदिरती ऐं अक़ीदेमंद भाईवार शुमार आहिनि जिन जा पाण में 75 साल खां बि वधीक अरसे जा मतबरी लाॻा पाइनि। सही टेक्नोलॉजी खे अहमियत ॾियनि था इन खां लगाव मुस्कन में उभरंदड़ टेक्नोलॉजीज़ खे पिण घणी अहमियत ॾियनि था। ICET जो दारोमदार आहे ॿिनि मुल्कनि जे क़ुदिरती क़ौतुनि ते। इन खां अलावा कुझु ॾींहं शुरूआतूं आहिनि ॿिनि मुल्कनि घणनि ई बुनियादी टेक्नोलॉजीज़ खे अॻिते वधाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे तंहिंमें अची थो वञे सेमी कंडक्टर क्वांटम ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तंहिंसां भारत जी तकनीकी महारत जो पतो पवे थो ऐं भारत खे हिकु फ़क़त पढ़ जो आउटसोर्सिंग मुल्क करे कोन लिखियो वेंदो आहे। भारत पधरो करे ॾेखारियो त खेसि जदीद क़ौत आहे ऐं जदीद टेक्नोलॉजी खे तमामु ई घटि अघ ते अमल में आणे रहियो आहे। ICET जे शुरू थियण खां वठी करे हिन में घणाई खेत्र चुस्ती सां मशगूल रहिया आहिनि। यूनेस्को सरकार खां सरकार ताईं मैकेनिज़्म कोन आहे पर हिन में वापार ऐं अदब पिण शुमार आहिनि। स्पेस खेत्र में ॿई नासा ऐं इसरो पिण हिकमत अमली ढांचे खे तयारु कयो आहे त जीअं ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट कोऑपरेशन खे अॻिते वधायो वञे। अॻिमें निसार उपग्रह खे छोड़ियो वियो आहे। भारत ऐं अमरीका गॾियल टास्क फोर्स बरपा कयूं आहिनि जेके दूर मुवासिलात ते कमु करे रहियूं। इन खां अलावा ओपन RAN ऐं 5G 6G टेक्नोलॉजी ते पिण कमु करे रहियूं आहिनि। तंहिंमें चिपसेट खे पिण गॾिजी करे तयारु कयो पियो वञे। इंडो US क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म तंहिंखे पिण बरपा कयो आहे। इन जो पहिरियों कमु आहे हिकु वसी क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस ऐं टेक्नोलॉजी करार खे अमल में आणणु। इन समय बाहमी कॉल कया विया आहिनि त हिकु भरोसेमंद ऐं ज़िमेवार AI खे तयारु कयो वेंदो। इन खां अलावा बायोटेक्नोलॉजी ऐं जदीद मटेरियल ते पिण शुरूआती कार्यवाहियूं कयूं वयूं आहिनि। इन विच में भारत ऐं अमरीका माइनिंग ऐं प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ऐं रेयर अर्थ ते हिकु ढांचे खे मुकमल कयो आहे। इन ढांचे ते नई दिल्ली में पार्टी मामलनि जे वज़ीर डॉ SJYSHANKAR ऐं अमरीकी सूबाई सेक्रेटरी मार्को रूबियो सही कई जो ताज़ो ई हू क्वैड फॉरन क्वैड पार्टी वज़ीरनि जे गॾिजाणी खां पोइ पाण में मुलाक़ात कई हुई। ढांचे जो मक़सदु आहे भारत अमरीका तावन खे वधीक पुख़्तो बणाइण ख़ासि करे क्रिटिकल मिनरल्स में इन खां अलावा रेयर अर्थ सप्लाई चेन में। इन सभ में शुमार आहे प्रोसेसिंग रिसाइकलिंग ऐं रिलेटेड सीड़प ढांचे खे सेम

सही कारण पठाया एम माइलस स्टोन हो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूर देश के अगत वी इन अलावा सरदार डोनाल्ड जे ट्रम्प के जो ताजा ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी यात्रा कई संदेश यात्रा दौरान भारत अमेरिका गडल बयान पिण डो वो तेमें क्रिटिकल मिनट्स से अहमियत बयान डो वो में पढ़े मामले के वजीर डॉक्टर एस जयशंकर क्रिटिकल मिनरल्स से पढ़े वजीर की गडजाणी में हिस्सों वरतो हो जैसे मेहमान नवाजी कई सेक्रेटरी रूबियो वॉशिंगटन डीसी में गडजाणी थी 14 फरवरी 2026 से भारत ए अमेरिका रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट फोरम से भाईवारी कर रहा है।

0: आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा प्रोग्राम सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी।

विद्रोह प्रोग्राम सजन तो खबर कड़ी आकाशवाणी की सिंधी सर्विस हिंसर पेश आज खास खास खबरों इसराइल ए ईरान मंझ ताजे छिकदान सबब नई दिल्ली खेन यकदम छिकदान के घटकाने जो सद डो है। अज मध्य प्रदेश इंदौर में भारत ब्रिक्स जराई कम कर ग्रुप ए ब्रिक्स जराई वजीर ग्रुप के गडजानी कराए रो है। फिलीपींस में 7.8 मैग्नीट्यूड के जिलजिले अचान सबब घट में घट बटी मानू मार औरतों के क्रिकेट में भारत पहली वार्म अप मैच आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के ब्रिटेन के कार्डिफ में थी उन वार्म अप रांद में वेस्ट इंडीज के 26 रनसन मात डी है। भारत टेस्ट क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के एक इनिंग 300 रनसन मात डी है।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस 9870 किलोमीटर से गुजरिया है। हिंसर असाज प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है। वह असा गडजानी थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेसी तीन दीदा इजाजत सदाई घट।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट तम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका में अमृता दत्ता की आवाज में भजन। सबसे पहले सुनिए मीराबाई की ये रचना।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप अमृता दत्ता से भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं गीतों भरे गुड मॉर्निंग।

दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह मुस्कुराहट और पॉजिटिव वाइब्स से भरी होगी। जी हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए तो पूरा दिन शानदार बन सकता है। तो चलिए अब सुबह को और शानदार बनाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, ये वो मौका होता है जब हम कल की थकान और सब चीज को, जो भी कुछ गलत सही जो भी हुआ, उसको अलविदा कहकर आज के सपनों को नई उड़ान दे सके। और दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन घंटों में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं।

दोस्तों याद रखिए, सूरज को उगने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए और आपको चमकने के लिए किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। जी हाँ, और दिल की

उलझनों को अगर कुछ उलझने हैं भी तो चलिए संगीत के साथ घोल देते हैं। और भाई ये तो होता ही है कि खुशियां और गम साथ साथ ही चलते हैं।

0: इसी गीत के साथ आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 8 बजने को है, अब प्रसारित होगा समाचार प्रभात।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की, युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
4: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस

0: और वो किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
2: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बचा हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक हो जाता हूं।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है।

0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डांबुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती पुरमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। यह समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
0: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। भारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एंटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merrivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
2: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation, connectivity, national security, and the vision of Viksit Bharat by 2047. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. The system will also provide end-to-end digital workflows for cargo and passenger processing, including slot booking, payments, tracking and single window clearances, while improving coordination among government agencies and private operators. On two occasions, the Home Minister will also inaugurate newly developed stakeholder accommodation facilities at Dokki in Meghalaya and Srimathpur Land Port in Tripura, strengthening infrastructure support for border management and personnel.
0: The 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting will begin today at Indore in Madhya Pradesh. The BRICS Agriculture Working Group meeting will also be held simultaneously under India's BRICS presidency this year. Details from our correspondent.
3: Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part. These include Brazil, China, Russia and South Africa. The conference runs till June 13. It begins with the meeting of the Agriculture Working Group. Key topics include food security, farm innovation, climate-friendly farming, agriculture trade and empowering small farmers. On June 12, a special dialogue among agriculture ministers will be held. It will focus on food security through small farmers, women and youth. On June 13, the main ministerial meeting of BRICS nations will take place. A joint document on agriculture cooperation and innovation will be prepared. Foreign delegates will also get a taste of Indore's rich culture and heritage. They will visit historic sites like Rajwada, Chhappan Dukan, Sarafa and Mandu. Abhinav Goyal, Akashwani, Bhopal.
0: Union Steel Minister H.T. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu visited the Visakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy expressed condolences to the families of the deceased workers and announced an ex gratia of 25 lakh rupees for next of kin of the deceased and 10 lakh rupees for those injured. In addition, affected families will be allowed to continue residing in steel plant quarters. Their children will receive free education.

0: $1 lakh H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Bambula this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day. आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1 लाख की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दांबुला में सहमुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की सम्त एक तारीखी कदम होगा। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहिदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: बैन अलावा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला अहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। जरी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, जरी इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, जरी तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को जरात के वजीरों के माबेन खसूसी मुजाफरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, खवातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। जरी इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: स्टील महकमे के मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुंभों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रूपये की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रूपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाजत होगी। उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रूपये की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रूपये दिए जायेंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से ये इमदाद दी जायेगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने

0: $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने वफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा असलाहत और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अलावा मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि जरिए और डिब्बाबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोख से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस पहल से खत्ते की लीची को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर कीमत हासिल होने में सहूलत होगी और शिमाल मशरकी भारत की जरिए अशिया के लिए नए मौके पैदा होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सह मुल्की ए सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अर्शद खान और अंशुल कंबोज शामिल हैं। खवातीन क्रिकेट में बरतानिया में कार्डिफ के मुकाम पर खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपने पहले तैयारी मैच में वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय खवातीन टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। अब भारत अपने अगले तैयारी मैच में कल मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगा। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इतवार को एडबेस्टन में रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजिला आने से कम 35 अफराद की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इस जलजिले के तनाजुर में शुरू में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी वार्निंग जारी की गई। अलबत्ता बाद में इसे या तो मनसूख कर दिया गया या इसकी सतह कम कर दी गई। फिलीपींस के हुक्काम के मुताबिक इस कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 10,000 कुनबे बेघर हो गए हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं करीम अहमद।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। रोजनामा इनकलाब ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत ने अपने शहरियों से ईरान छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पैगाम को नुमाया किया है जिसमें वजीर आजम ने लिखा है कि मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरस में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां देखी हैं जिनकी जड़ें गरीबों के फलाह बहबूद में पैवस्त हैं। वजीर आजम ने DBT, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम का खासतौर से जिक्र किया। अखबार की एक और सुर्खी है, सरकार कबायली इलाकों की तरक्की पर खास ध्यान दे रही है, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। अखबार की बैन अलावी सुर्खियां इस तरह हैं, फिलीपाइन में 7.8 शिद्दत का जलजिला, 32 अफराद की मौत, एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में लैंड बोर्ड बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाकये के बाद बहरी जहाज MT मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है लेकिन साथ ही जंगबंदी के खिलाफ फर्ज की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमेरिका की वफाकी अदालत ने एच वन बी वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दामबुला में

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर 8:45 और ठीक 20 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम स्वर गंगा का। स्वर गंगा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुप्रिया मैत्रा से ध्रुपद गायन, जिसमें आप सुनेंगे राग अहिर भैरव। संगत कलाकार है पखवाज पे हरीश चंद्रपति।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुप्रिया मैत्रा से ध्रुपद गायन सुन रहे थे, जिसमें आपने सुना राग अहिर भैरव। संगत कलाकार थे पखावज पर हरीश चंद्रपति। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 809 किलोहर्ट्ज़

डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 9:15 होने को है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। अंगदान किसी जरूरतमंद के लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। एक मृत दाता अपने अंगों और उत्तकों से 8 से अधिक लोगों का जीवन बचा सकता है या संवार सकता है। हालांकि वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी जागरूकता के अभाव में समाज में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो इस नेक काम में बाधा बनती हैं। अंगदान के प्रति भ्रांतियां और आवश्यक वैज्ञानिक जागरूकता, विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अंगदान के लिए जागरूकता फैलाकर हजारों लोगों को जीवन दान दिलाने वाले उद्योगपति, समाज सेवी और पद्मश्री 2026 से सम्मानित नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला से महेंद्र सिंह लालस की ये बातचीत।
1: आज हमारे साथ हैं नीलेश मांडलेवाला जी। आपने अंग दान को लेकर देश में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसलिए आप पद्मश्री से भी सम्मानित हुए हैं। नीलेश जी, थोड़ी सी इस अंग दान पर बात करें, उससे पहले थोड़ा सा ये समझाए कि ब्रेन डेड क्या होता है और ब्रेन डेड के बाद क्या व्यक्ति का अंग दान करवाया जा सकता है और उसमें जीवन की कोई आशा या आकांक्षा नहीं होती।
2: डेड इज वेल टू डेथ, उसका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है, ऐसी अवस्था ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड होने की वजह हम कहे तो रोड एक्सीडेंट में हेड इंजरी होती है, उनमें छोटा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, या तो ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज की वजह से यानी छोटा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तभी हम उनके ऑर्गन्स के डोनेशन करवा सकते हैं। हर एक अस्पताल में ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेरेशन कमेटी होती है, 4 डॉक्टरों की कमेटी होती है। जो व्यक्ति ब्रेन डेड है, जो ऐसा लगता है, तो उसको पहले क्लिनिकली देखते हैं, क्लिनिकली देखने के बाद में उनको एपनिया टेस्ट करते हैं और एपनिया टेस्ट करने के बाद में यदि वो ब्रेन डेड है तो उनका ऑर्गन्स के डोनेशंस हो सकता है।
1: कौन कौन से अंग दान दिए जा सकते हैं एक ब्रेन डेड व्यक्ति के?
2: एक ब्रेन डेड व्यक्ति के जो हमारे सॉलिड ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, उनके अलावा हैंड्स का भी डोनेशंस हो सकता है। उनके साथ में हम टिश्यू के भी दान कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्निया है, स्किन है, बोन्स है, हार्ट वाल्स है। ऐसे हमारे सॉलिड ऑर्गन्स एज वेल एज टिश्यू के डोनेशन ब्रेन डेड के किस्से में होते हैं। नेचुरल डेथ में हम केवल टिश्यू का ही दान कर सकते हैं। आज ऑर्गन जो डोनेशन और एलोकेशन, वो दोनों प्रक्रिया अलग है। हमारे देश में ऑर्गन एलोकेशन और अवेयरनेस का काम नोटो के अंदर में होता है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है।
1: मतलब कोई व्यक्ति सीधा अगर अंगदान करना चाहे तो नहीं कर सकता?
2: नहीं कर सकता। उसके नोटो ने पूरे देश में अंगदान का एलोकेशन और अवेयरनेस के लिए 5 रीजियन बने हैं, यानी रोटो बनाए हैं, और उनके बाद में आता है सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। देश में किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऑर्गन्स की खराबी होती है तो वो जो भी अस्पताल में ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं वो अस्पताल में उनको जाके पूरा रिपोर्ट्स के साथ में नाम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी होती है, और उनके बाद में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, उनके अलग अलग रिपोर्ट्स निकालने के बाद में वो सोटो के अंदर रजिस्टर्ड होती है, नोटो में भी रजिस्टर्ड होती है। जब भी कोई ऑर्गन्स डोनेशंस होता है तो पहले सोटो को इन्फॉर्म किया जाता है और सोटो उनके वेटिंग लिस्ट के हिसाब से उनका एलोकेशंस करते हैं, तो उसके अंदर दूसरी कोई किसी की प्रक्रिया बीच में आती नहीं है। और दूसरा कि किसी की भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए ऑर्गन्स का एलोकेशंस नहीं होता है।
1: तो ऐसे ही बताया कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ये भी अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और उसके साथ साथ इस अंग को सुरक्षित रखना। तो यदि किसी व्यक्ति का अंग आपने निकाला है, फर्ज कीजिए किडनी निकाली है, तो उसे क्या उसी वक्त ट्रांसप्लांट किया जाता है या उससे पहले सुरक्षित रखा जाता है?
2: नहीं, ऑर्गन्स तो क्योंकि ये हमारे यहाँ कोई बैंक नहीं है, हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई ऐसी है कि बैंक वाली कोई बात नहीं है। जो हर एक ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांट की समय की मर्यादा होती है, हृदय का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में करना होता है, लंग्स का ट्रांसप्लांट 6 घंटे में होता है, लीवर का 12 घंटे में, और किडनी 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करनी होती है। लेकिन ऑर्गन प्रोक्योर करने के बाद में जितने कम समय में हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं उतना रिजल्ट उसका

0: रिजल्ट ट्रांसप्लांट के अच्छे हैं। इवन मैं हैंड्स का भी ट्रांसप्लांट की बात करूं, 2021 में हमने देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड्स का डोनेशंस करवाया था। 14 साल के बच्चे का हैंड का डोनेशंस हुआ था और 31 साल के युवान में वो ट्रांसप्लांट हुआ था। आज 4 साल ट्रांसप्लांट के हो गए, वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अभी वो थ्री व्हीलर व्हीकल चलाता है, स्विमिंग करता है और शीर्षासन भी करता है। तो जो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे है, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो हमेशा हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है तो उनकी जो दवाई है या फॉलोअप है वो रेगुलर रखना पड़ता है।
1: मनीष जी, आपने जो अब तक अंग दान करवाए हैं या जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं, ये सारे ब्रेन डेड व्यक्तियों के ही थे?
0: हाँ, यस। हमारे नेचुरल डेथ में तो ऑर्गन डोनेशन होते नहीं है, जो ब्रेन डेड है उसका ही ऑर्गन डोनेशन होता है और वही हम लोग करवा रहे हैं।
1: जी, ये आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया, बताएं कि अब तक जो आपने किया उससे संतुष्ट है?
0: ऐसे मानो तो संतुष्ट है और ऐसे मानो तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। पहले तो एक बात ये है कि जो ब्रेन डेड होते हैं उनकी जानकारी आज की तारीख में भी नहीं आती है। जानकारी आए तो हम लोग उसको समझा सके, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हमारे गुजरात में है, हमारे सूरत में है कि वहाँ पे जहाँ कोई ब्रेन डेड होता है, आज परिवार सामने से कॉल करता है कि हमें ऑर्गन डोनेशन करना है। इवन नेचुरल डेथ में भी परिवारों का फोन आता है कि हमारे स्वजन की डेथ हुई है और हम लोग ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं। तो इतना बदलाव लाने में तो हम जरूर सफल हुए हैं, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि हमारे देश में कितने ऐसे प्रांत है वहाँ पे अब आज की तारीख में भी अंगदान के विषय की चर्चा नहीं होती है और अंगदान ना के बराबर है। और हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने एक मिशन भी बनाया कि जो वर्ष 2047 में जब भी हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। तो मिशन लेके हमारी संस्था डोनेट लाइफ चल रही है और हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई बार बार मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को भी अंगदान का महत्व समझा रहे हैं। और उन्होंने जो 2047 की परिकल्पना हमें दिखाई है कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत होगा, तो उसमें हम भी ये अंगदान के माध्यम से हमारा योगदान देंगे।
1: मनीष भाई, बहुत सारी जगहों पर अंधविश्वास मिथ ऐसी चीज है जिसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आपकी आंखें चली गई हैं, फर्ज कीजिए, तो हो सकता है मृत्यु के बाद ही तो हम अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होंगे। इस तरह के बहुत सारे वहम बहुत सारे लोगों में होते हैं, आपको भी शायद इनका सामना करना पड़ा होगा।
0: मैं पिछले 20 सालों से ये सब चीजों का सामना कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आंखों का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा, तो मैं उनको बताता हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है, और हम जो उनके पार्थिव देह का अग्निदाह देते हैं वो तो एक खोखा ही होता है। तो लोग बोलते हैं कि हमें अंगदान नहीं करना चाहिए, तो मैं उन लोगों को पूछता हूँ कि हमारे समाज में ऐसी कितनी माताएं हैं, बहनों हैं कि जिनको यूट्रस की तकलीफ होती है, ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ होती है, उनका यूट्रस निकाल दिया जाता है, शरीर का एक अंग कम तो हो ही गया, शरीर खंडित हो ही गया, तो क्या ऐसी माता बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे भाइयों में गोल्ड ब्लैडर की तकलीफ होती है, उनका गोल्ड ब्लैडर निकाल दिया जाता है, शरीर का एक अंग कम हो गया, शरीर खंडित हो ही गया। हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं, यानी कि परिवार में से ही एक किडनी का दान करते हैं। तो दो किडनी में से एक किडनी कम हो गई, शरीर खंडित हो गया, तो क्या ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? तो ये भ्रांतियां हमने दूर करने की कोशिश की है और लोग समझते भी है कि बात तो सही है। हम वही संदेश लोगों को देते हैं कि आपके ब्रेन डेड स्वजन के अंगों की स्वर्ग में जरूरत नहीं है किंतु पृथ्वी पर है। और दूसरा जो धार्मिक मान्यता की बात है, तो हम लोगों को बताते हैं कि पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था, और महर्षि दधीचि ऋषि ने जब ये दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में है। हमारे डोनेट लाइफ संस्था का शुभारंभ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी के वरद हस्ते हुआ था। उस समय दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे आप विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियां रहेगी। लेकिन एक इतना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी

0: और में धड़क रहा होगा।
1: हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते धन्य हो रही होगी। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी। हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़ मांस मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम।
2: बहुत सुंदर जी। फिर ऐसे भी आपके सामने बहुत सारे अनुभव आए होंगे जब बहुत सारे लोगों ने परिवारजनों ने कहा होगा कि देखिए आज हमारा स्वजन तो नहीं रहा, लेकिन उस व्यक्ति से मिले होंगे जिसको उसका हृदय लगा है और आभार व्यक्त करते होंगे।
0: ये जो संबंध है ये संबंध खून के संबंध नहीं है, ये संबंध का नाम है मानवता। मानवता से बड़ा कोई संबंध नहीं है। और जब भी परिवार मिलता है ऐसे तो नामों की घोषणा नहीं की जाती है, लेकिन वो आज सोशल मीडिया का माध्यम ऐसा है, प्रिंट मीडिया का माध्यम ऐसा है, और एक दूसरे को जब भी मिलना होता है तभी जो दृश्य बनते हैं वो कभी शब्दों में भी बयां नहीं किए जा सकते हैं। हमने जो भी ऑर्गन डोनेशन करवाए हैं, कितने परिवार उनके बेटे की शादी में आए हैं, एक परिवार के आपस में रिश्ता बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ा रिश्ता है, वो रिश्ते का नाम है मानवता।
2: जी, दो दशक से ज्यादा समय से आप ये समाज का ये सुंदर कार्य कर रहे हैं। आपको राष्ट्रपति जी ने सम्मानित भी किया, बताया कि संतुष्ट है इस सम्मान से।
0: आज मैं तहे दिल से भारत सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने पद्मश्री से हमें सम्मानित किया, और खास करके हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये सम्मान जो है हमें मिला है, ये सम्मान नीलेश मांडलेवाड़ा या डोनेट लाइफ का सम्मान नहीं है। ये सम्मान है जो भी संस्थाएं या जो भी व्यक्ति देश में अंगदान के कार्य से जुड़ी हुई है, ये तभी का सम्मान है। और ये सम्मान से सरकार ने हमें जिम्मेवारी दी है, सरकार ने जो विश्वास हमारे ऊपर रखा है वो विश्वास को सार्थक करने की जिम्मेवारी अब हमारी है। हमें अंगदान जीवन दान के मिशन को पूरे देश में फैलाना है, जन जन तक लोगों को जागरूक करना है कि शरीर तो राख ही हो जाने वाला है, उससे अच्छा है कि हम उनके अंगदान करवाए, क्योंकि हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत समय सर अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन कैसे दिया जाए। और मैं मानता हूँ ये सम्मान जो मिला है, ये सम्मान मैंने आगे भी कहा, ये हमारा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, ये सम्मान ये अंगदान की प्रवृत्ति का सम्मान है, ये सम्मान है जितने भी अंगदाता है और उनके परिवारजनों का सम्मान है, ये सम्मान है जो भी डॉक्टर्स अस्पताल अंगदान के कार्य के साथ जुड़ी हुई है, ये इनका सम्मान है। जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट जो सहयोग दे रही है, ये उनका सम्मान है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का सम्मान है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में आधी रात को भी जो पीएम करके जो उसके बॉडी हैंडओवर करती है, ये इनका सम्मान है। और खास करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिन्होंने पिछले 20 सालों से अंगदान जीवन दान का संदेश जन जन तक पहुंचाने में जो सहयोग दिया है, इन सभी का सम्मान है।
2: नीलेश मांडलेवाला जी, आप देव रूप में तो नहीं रहेंगे एक निश्चित समय बाद, लेकिन आपने जो कार्य किए वो इस सृष्टि पर हमेशा अमर रहेंगे। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अंगदान के प्रति भ्रांतियां और आवश्यक वैज्ञानिक जागरूकता, अभी आप अंगदान के लिए जागरूकता फैलाकर लोगों को जीवन दान दिलाने वाले उद्योगपति और समाज सेवी पद्मश्री से सम्मानित नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला से महेंद्र सिंह लालस की ये बातचीत आप सुन रहे थे। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, यही आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम

0: सुबुगाही प्रोग्राम के तहत अभी आप भजन सुन रहे थे और अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 9 जून 2026 है और आज के दिन 1934 में कार्टून चरित्र डोनाल्ड डक पहली बार डिज्नी वॉल द्वारा निर्मित एनिमेशन फिल्म द वाइज लिटिल हैंड में दिखाई दिया और इसके कुछ दिनों के बाद वर्ष 1962 में गोवा की मुक्ति के बाद वहां लागू सैन्य प्रशासन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर एक नागरिक सरकार को सत्ता सौंपी गई थी और इसके कुछ दिनों के बाद वर्ष 2004 में जर्मन इलेक्ट्रॉनिक संगीत बैंड क्राफ्टवर्क ने पहली बार भारत में मुंबई के एक विशेष समारोह में लाइव प्रदर्शन किया था, जिसने देश में इलेक्ट्रॉनिक संगीत के इतिहास में

0: एक नया अध्याय जोड़ा
1: जी।
0: और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन
1: जी।
0: तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड विजेता मशहूर गीतकार असद भोपाली साहब को। उन्हें ऐसे गीतकार में शुमार किया जाता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल का लंबा संघर्ष किया। आज ही के दिन साल 1990 में हिंदी सिनेमा के ये अजीम शायर हमसे रुखसत हुए जिनकी कलम से लिखे गाने आज भी हर धड़कन की आवाज है। याद कीजिए फिल्म पारसमणि का वो सदाबहार गीत।

अभिनेता सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया के लिए लिखे गीत कबूतर जा के लिए असद साहब को प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अपने करियर में उन्होंने करीब 400 गाने लिखे जो आज भी गीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए चलिए सुनते हैं उन्हीं का लिखा एक और बेहद खूबसूरत तराना।

0: तो सुरों के महफिल में वापस से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में वादा किया था कि हम वीरता के कारवां में भी जाएंगे, तो इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती बल्कि वो हमारे वजूद और आजादी की गवाही देती है। आज 9 जून है और आज ही के दिन साल 1900 में महज 25 साल की उम्र में एक ऐसा नायक हमसे दूर चला गया जिसने अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी धरती के पिता भगवान बिरसा मुंडा की। जिस उम्र में लोग अपना करियर ढूंढते हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा ने उस उम्र में जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उलगुलान यानी एक महाक्रांति की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने झारखंड के जंगलों से अंग्रेजों और जमींदारों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो आदिवासियों के लिए भगवान थे। उन्होंने समाज को कुरीतियों से निकाला, अंधविश्वास को दूर किया और लोगों को सिर उठाकर जीना सिखाया। आज ही हम उन तीन शूरवीरों को भी याद कर रहे हैं जिनकी रगों में सिर्फ और सिर्फ इंकलाब दौड़ता है और जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन अब्बास तैयबजी की पुण्यतिथि है जिन्होंने गांधी जी के साथ दांडी मार्च का नेतृत्व किया। तो आज ही के दिन वीर क्रांतिकारी हरिकिशन सरहदी और दिनेश चंद्र मजुमदार ने अपनी महज छोटी सी उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। सलाम है भारत के इन वीर सपूतों को जिनकी शहादत से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आज भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित कालजयी और दिग्गज संगीतकार वसंत देसाई साहब की भी जयंती है। आज भले ही हम कितने भी आधुनिक गाने क्यों न सुन लें, लेकिन सुबह उठकर जब स्कूलों में बच्चे गाते हैं हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, या फिर फिल्म दो आंखें बारह हाथ की वह अमर प्रार्थना ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म, तो हमारा दिल अपने आप भर आता है। और इन कालजयी धुनों को तराशने वाले जादूगर वसंत देसाई जी ही थे।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी। शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुस के जनूब में आग लगने के वाकये के बाद

बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दांबुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज एक जदीद तर्ज की तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उमर दाखिला की वजारत ने कहा कि यह प्लेटफार्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के अहम मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहिदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफार्म है। बैन अलाक्वामी ब्रिक्स जरिए कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला ओहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। ज़रई वर्किंग ग्रुप की मीटिंगों के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई अख्तरा, आबोहवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वजीरों के माबैन खसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, खवातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। ज़रई इश्तराक और अख्तरा के बारे में एक मुश्तरक दस्तावेज भी तैयार की जाएगी। स्टील महकमे के मरकजी वजीर एसडी कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रूपये की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रूपये दिए जायेंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाजत होगी। उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रूपये की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रूपये दिए जायेंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से ही इमदाद दी जायेगी। हादसे की वजूहत का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहिरीन पर मुश्तमिल है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाके के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाके की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आया था या नहीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अम के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की लाइल्मी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासर हो सकता है।
صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک کوئی حتمی سمجھوتا نہیں ہو جاتا

0: नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने वफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा असलाहत और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सहमुल की ए सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बोला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, आयुष बदूनी, अर्शद खान और अंशुल कंबोज शामिल हैं। खवातीन क्रिकेट में बरतानिया में कार्डिफ के मकाम पर खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपने पहले तैयारी मैच में वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय खवातीन टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। अब भारत अपने अगले तैयारी मैच में कल मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगा। टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इतवार को एजबेस्टन में रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से कम 35 अफराद की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इस जलजले के तनाजुर में शाम में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी वार्निंग जारी की गई। अलबत्ता बाद में इसे या तो मनसूख कर दिया गया या इसकी सतह कम कर दी गई। फिलीपींस के हुक्काम के मुताबिक इस कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 10,000 कुनबे बेघर हो गए हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अलावामी मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि जरई और डिब्बेबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोख से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वजराए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुस के जनूब में आग लगने के वाके के बाद बहरी जहाज MT मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बोला में सहमुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अकबाले जरी का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: उर्दू का एक मारूफ शेर है, कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। नसीहत यानी सुनने वाले को अच्छी बात बताना या किसी ऐसे काम से रोकने की कोशिश करना जो आम खास में पसंद की निगाह से न देखा जाता हो, ऐसा अमल है जिसे

एक आदमी को करना चाहिए। शर्त यह है कि इस काम को करने वाला अकलमंद और होशियार हो, समझबूझ रखता हो, अच्छे और बुरे की तमीज रखता हो, हालात और वक्त के तकाजों के मुताबिक जो बात कही जाती है वो थोड़ी सी बात या मुख्तसर सी नसीहत भी कारगर हो जाती है। लेकिन अगर मौका महल की मुनासबस्ती ना हो तो बड़ी से बड़ी तकरीब भी असरअंदाज नहीं होती। दुनिया के तमाम मजाहिब भलाई और अच्छाई की तालीम देते हैं और अपने मानने वालों को बुराइयों से रोकते हैं। हर मजहब के कायदीन की कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि वो अपनी गुफ्तगू, किरदार, अमल और फेल इस अंदाज से पेश करें जिससे सामने वाला अपनी इस्लाह की तरफ मायल हो। नसीहत का तरीका तभी कारगर होता है जबकि वो उमूमी अंदाज की असर करने वाली बात हो। किसी खास शख्स को किसी खास वाक्य के साथ मतूम करने के साथ नसीहत का कोई असर नहीं होता, बल्कि बसा औकात इसके नतायज मनफी बरामद होते हैं। इसलिए नासी को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि किसी शख्स से कब, कहां और क्या बात कर रहा है। नस्ल इंसानी की तरबियत के लिए कुरान मजीद ने नसीहत का जो सुबह तरीका इख्तियार किया है, अगर उसकी रोशनी में देखा जाए तो उसने छोटी छोटी मिसालों से बड़े बड़े मसले हल कर दिए हैं। मसलन उसकी जबान में सबसे अच्छी बात लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना और बुलाने वाले के अमल सालेह करना और अपने आप को रब्बे करीम की तात गुजार फरमा बरदार बनाना है। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने मानने वालों को ये तलकीन भी करता है कि जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं उनके साथ दुश्मनी, तराजी या बदजुबानी मत करो, क्योंकि जवाब में वो बगैर सोचे समझे, बगैर जाने बूझे तुम्हारे हकीकी रब के साथ यही मामला करेंगे। इसलिए इससे बचने का तरीका यही कारामद हो सकता है कि उनसे ऐसे मौके पर एराज बरता जाए ताकि दोनों फरीक ही एक दूसरे को बुरा भला कहने से बच सकें। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी के हर मोड़ पर हर साल तबीयत फर्द एक बेहतर समाज की तश्कील का ख्वाह रहता है। इसके लिए खुद भी अमन अमान कायम रखता है और दूसरों को भी अमन की दावत देता है। वो पाकिजा माशरे की तामीर के लिए अपने हमदर्दों, दोस्तों, खैरखाहों को अच्छी बातों की तलकीन करता है। बिलाशुबा इससे बेहतर कोई अमल नहीं, लेकिन अगर ये नसीहत सामने वाले के मिजाज से मेल नहीं खाती तो इसका खातिर ख्वाह फायदा नहीं होता और सामने वाला इसे अपनी तौहीन और तज़हीक से ताबीर करते हुए नासे का दुश्मन बन जाता है। पंदोनिसाई आवाज तस्कीर का जाहिर ताल्लुक जबान से होता है। जबान से जो बात कही जाती है वो बिलावास्ता आदमी के दिलो दिमाग तक पहुंचती है और मुखातिब अगले मरहले ही कहने वाले के किरदार पर नजर डालता है। अगर वाइज या मुकर्रर किरदार की कसौटी पर खरा उतरता है तो सुनने वाला खुद ब खुद उसकी बात की तरफ पूरी तवज्जो देता है, और अगर उसके किरदार में झोल है तो सामने वाले को भी इससे कोई खास उनसियत नहीं होती। इसलिए बुनियादी मसला नासे के किरदार का है। इससे बात आगे बढ़ती है, इसलिए नासे के लिए जरूरी है कि वो समाज के उन अफराद में शुमार होता है जो कहने से ज्यादा मजाद खुद करने पर यकीन रखते हैं। दूसरा मसला नफ्स नसीहत का है, यानी जिस बात की तरगीब दी जा रही है, जिस काम से रोका जा रहा है, वो फिर नफ्स क्या है और कैसा है। तीसरी अहम बात मौका महल की है, यानी जिस वक्त की बात कही जा रही है वो वक्त इस बात के कहने का है या नहीं। बकौल शायर, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। किसी फर्द या मुआशरे को सुधारने के लिए जो तदाबीर इख्तियार की जा सकती है उनका आगाज जबानी गुफ्तगू से ही होता है। इसलिए नासे को चाहिए कि वो बात नपे तुले और जचे अंदाज में सोच समझ कर करे कि उस पर कितना अमल कर रहा है। किसी बुजुर्ग के बारे में मशहूर है कि उनके पास एक साहब अपने बच्चे को लेकर आए और ये दरख्वास्त की कि उनका बच्चा गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, आप दुआ कीजिए कि गुड़ खाना छोड़ दे। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि परसों लेकर आना। दो दिन बाद फिर वो साहब बुजुर्ग की खिदमत में तशरीफ लाए। बुजुर्ग ने दुआ की और बहुत जल्द ही उस बच्चे की आदत जाती रही। कुछ दिनों बाद इन साहब ने बुजुर्ग से इजहार तशक्कुर करने के साथ साथ ये राज भी जानने की ख्वाहिश की कि आपने पहली मरतबा में ही बच्चे के लिए दुआ क्यों नहीं की। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि उस वक्त तक मैं खुद गुड़ का बहुत शौकीन था जिसकी वजह से मेरी दुआ इतनी कारगर न होती। इससे पहले मैंने गुड़ छोड़ने का इरादा किया, तीन दिन में मैंने इस पर काबू पा लिया तो मैंने बच्चे के लिए दुआ की। बच्चों को जो नसीहत की जाती है वो बिलअमूम कारगर होती है, लेकिन यह ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे बहुत ज्यादा हसास होते हैं। वो किसी अच्छी या बुरी बात में तमीज करने के इतने अहल नहीं होते जितने बड़े होते हैं, लेकिन वो इतना एहसास जरूर रखते हैं कि उनको जो शख्स नसीहत कर रहा है खुद उसका अमल कैसा है। मसलन बच्चे ने हमारे सामने किसी सिलसिले में कोई झूठ बोला तो उसे फौरी तौर पर यह कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते कि झूठ बोलना बुरी बात है, बड़ा गुनाह है, अल्लाह नाराज होता है, वो नेमतें छीन लेता है, मुंह से बदबू आने लगती है, इसलिए झूठ नहीं बोलते। बच्चा फौरी तौर पर इसका असर लेता है,
लेकिन जब वो नसीहत

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।

सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।

0: श्रोताओं, हाल ही में माननीय राष्ट्रपति द्वारा देश के ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसे नायाब प्रेरणादायी लोग रहे हैं जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको ऐसी ही कहानी सुनवाने जा रहे हैं। मेघालय के हेलिवोर को भी पद्म सम्मान इस वर्ष का प्राप्त हुआ है, तो आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। सोहरा चेरापूंजी क्षेत्र के सिजगांव के निवासी हेली वार्ड ने पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से प्रकृति संरक्षण और खासी समुदाय की पारंपरिक ज्ञान परंपरा को सहेजने का कार्य किया है। सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
1: श्री हेली वार्ड समाज सेवा।
0: हेलीवार विशेष रूप से मेघालय के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज, जीवित जड़ पुलों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। ये अनोखे पुल रबर के पेड़ों के जीवित जड़ों को नदियों और घाटियों के ऊपर सावधानी पूर्वक दिशा देकर तैयार किए जाते हैं। समय के साथ ये जड़ें मजबूत होकर प्राकृतिक पुल का रूप ले लेती हैं, जो कई पीढ़ियों तक लोगों की सेवा करते हैं। इस अनूठी परंपरा के महत्व को समझते हुए हेलीवार ने इसके संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य किया। उनके प्रयासों से दूरस्थ गांवों को जोड़ने, जंगलों के संरक्षण और क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद मिली है। उन्होंने स्थानीय समुदायों को भी इन प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए प्रेरित किया तथा ऐसे सतत पर्यटन को बढ़ावा दिया जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर भी प्राप्त हों। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस पारंपरिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। हेलीवार युवाओं को जीवित जड़ पुलों के निर्माण की कला और उससे जुड़े मूल्यों का प्रशिक्षण देते रहे हैं, जिससे ये अनमोल विरासत आधुनिक समय में भी जीवित और सुरक्षित बनी हुई है। हेलीवार का जीवन इस बात का प्रेरणादायक उदाहरण है कि पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के प्रति सम्मान के माध्यम से एक टिकाऊ और बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। पद्मश्री सम्मान उनके आजीवन समर्पण और मेघालय के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखने के अथक प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए उत्पल की रिपोर्ट के साथ प्रशांत कुमार। श्रोताओं, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों के साथ भारत के वैज्ञानिक अपना लोहा मनवा रहे हैं और मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेश्राम ने भी हाल ही में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी ही उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने आकाश गंगाओं के एक समूह की खोज की और इस आकाश गंगा के समूह का नाम उन्होंने मणिपुर की ऐतिहासिक लोकटक झील पर रखा। तो आइए डॉक्टर रोनाल्डो लेश्राम की ये वैज्ञानिक खोज की कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत के प्रतिभावान वैज्ञानिक हमारे देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं।
2: मणिपुर के 29 वर्षीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेश्राम ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं के एक बहुत पुराने समूह की खोज की है। इस समूह का नाम उन्होंने मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। इस खोज से मणिपुर और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। डॉला इश्राम मणिपुर के थौबल जिले के खंगाबोक क्षेत्र के रहने वाले हैं। वर्तमान में जापान की राष्ट्रीय खगोलीय वैधशाला में कार्यरत हैं। उन्होंने ये खोज जापान के सुबारू टेलीस्कोप और नासा के जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की है। डॉला इश्राम के अनुसार प्रोटो क्लस्टर आकाश गंगाओं का एक विशाल समूह होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे विकसित होता है। लोकटक प्रोटो क्लस्टर की आयु लगभग 12 अरब 60 करोड़ वर्ष आंकी गई है। इसका संबंध उस काल से है जब ब्रह्मांड बहुत युवा था और उसकी आयु केवल लगभग 1 अरब 20 करोड़ वर्ष थी। इस अध्ययन से ये भी जानकारी मिली है कि अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब स्थित आकाश गंगाएं अपेक्षाकृत अलग अलग मौजूद आकाश गंगाओं की तुलना में अलग ढंग से विकसित होती हैं। इसका अर्थ है कि किसी आकाशगंगा के आसपास का वातावरण उसके विकास और स्वरूप को प्रभावित करता है। ताला इश्राम ने अपनी मास्टर डिग्री और पीएचडी की पढ़ाई तोहोकू विश्वविद्यालय से पूरी की है। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने एक प्रारंभिक क्षुद्र ग्रह की खोज भी की थी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया था। इस महत्वपूर्ण खोज पर आधारित शोध पत्र प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। डॉला इश्राम ने बताया कि इस खोज का नाम उन्होंने लोकटक झील के नाम पर रखा है। उनका कहना है कि आकाश गंगाओं के इस विशाल समूह की बनावट उन्हें लोकटक झील में तैरने वाली कुमदियों की याद दिलाती है। जिस तरह से झील में ये तैरते हुए भी एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं, उसी तरह इस प्रोटो क्लस्टर की आकाश गंगाएं भी एक विशाल संरचना के रूप में जुड़ी हुई हैं। इस नामकरण के माध्यम से वे मणिपुर को ब्रह्मांड से जोड़ना चाहते हैं और दुनिया को अपने राज्य की सुंदरता और महत्व से परिचित कराना चाहते हैं। शोध कार्य के अलावा डॉला इश्राम विद्यार्थियों में विज्ञान और खगोल विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। वे मणिपुर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं। ये संस्था पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के बीच खगोल विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देती है। ये उपलब्धि मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। उत्तल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं धर्मेंद्र मणि राजेश।

बताओ, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां बच्चों की उच्च जन्मदर दर्ज की जाती रही है और बच्चों की इसी जन्मदर को बनाए रखने के लिए मेघालय सरकार बहुत से प्रयास कर रही है। जन स्वास्थ्य सेवाओं की लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो आइए, मेघालय में किस तरह से जन स्वास्थ्य के ये प्रयास माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इस विषय पर ये रिपोर्ट सुनते हैं।

माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसका कारण राज्य में उच्च जन्म दर और नवजात शिशुओं की देखभाल न्यूनेटल केयर की बढ़ती जरूरत है। राज्य में हर साल लगभग 80,000 से 90,000 बच्चों का जन्म होता है। इसी वजह से मेघालय देश के उन राज्यों में शामिल है जहां जन्म दर सबसे अधिक है। इसलिए सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्य सचिव संपत कुमार ने कहा कि मेघालय की जनसंख्या लगभग मणिपुर के बराबर है, लेकिन यहां जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग दोगुनी है। इसलिए माताओं और नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चे ईश्वर का आशीर्वाद है और उनके जन्म का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि माताओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल की बढ़ती जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार पूरे मेघालय में NICU नवजात गहन चिकित्सा इकाई सेवाओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने हर जिले में NICU स्थापित करने की मंजूरी दी है। फिलहाल 3 नए NICU बनाए जा रहे हैं, जबकि मैरांग का NICU पहले से काम कर रहा है और वहां लगभग 70 बच्चों की जान बचाई जा चुकी है। संपत कुमार ने कहा

0: कि केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बच्चों के शुरुआती विकास के लिए एक व्यापक योजना की भी आवश्यकता है। उन्होंने ह्यूमन मिल्क बैंक को कमजोर और बीमार नवजात शिशुओं के लिए जीवन रक्षक बताया और कहा कि इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चिंता जताई कि सरकारी अध्ययनों के अनुसार केवल 26% बच्चों को जन्म के बाद पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध मिलता है, जबकि यह बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार बड़े अस्पतालों में ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित करने की योजना बना रही है। बच्चे के जीवन के पहले 2 वर्षों में उसके मस्तिष्क का लगभग 80% विकास हो जाता है, इसलिए इस अवधि में सही पोषण और देखभाल बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेघालय की मातृवंशीय सामाजिक व्यवस्था राज्य को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाने का अवसर देती है। इसके लिए समुदायों को स्तनपान, पोषण और बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मेघालय सरकार ने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट मिशन शुरू किया है। इसके तहत स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग मिलकर माताओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर काम करेंगे। इस पहल के तहत सरकार ने मुख्यमंत्री हेडमैन फेलोशिप कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिससे पारंपरिक मुखियाओं और सामुदायिक नेताओं को बाल पोषण और शुरुआती देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने में शामिल किया जाएगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन गर्भधारण से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तय होता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 003 लक्ष्य अपनाया है। इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु शून्य हो, शिशु मृत्यु शून्य हो और हर बच्चा 1000 दिनों के भीतर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विकास मानकों तक पहुंचे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अस्पतालों, समुदायों, धार्मिक संस्थाओं और पारंपरिक नेताओं के साथ मिलकर काम करेगी। नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल, मजबूत स्वास्थ्य सुविधाओं और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से मेघालय यह सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है कि हर माँ और बच्ची को स्वस्थ और बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक देखभाल और सहयोग मिल सके। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नेहा गोस्वामी।
1: श्रोताओं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई और इस बैठक में घुसपैठ, इनर लाइन परमिट और मूल निवासियों के अधिकारों को लेकर 4 हाई पावर्ड समितियों का गठन किया गया। हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने इस संबंध में हमें ये रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने विस्तार से इन समितियों के बारे में चर्चा की है। आइए सुनते हैं।
2: मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि उनकी सरकार ने घुसपैठ के मुद्दों की जांच करने, इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम को मजबूत करने, SC सर्टिफिकेट की दोबारा जांच करने और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 4 हाई पावर्ड कमेटियों का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कमेटियां गत 27 और 29 मई को उनकी अध्यक्षता में हुई उन बैठकों में लिए गए फैसलों के आधार पर बनाई गई हैं, जिनमें मूल आदिवासी अधिकारों, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, ILP फ्रेमवर्क और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा है कि इन कमेटियों में अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम AITF, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन APSU, अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ साथ कानूनी विशेषज्ञों, विद्वानों और सरकारी अधिकारी भी शामिल रहे, ताकि इन मुद्दों को सुलझाने में सभी की भागीदारी और व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। एक सरकारी आदेश के अनुसार घुसपैठ और अवैध प्रवासियों से जुड़े चिंताओं को देखते हुए सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्री वांकी लोवांग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति को अवैध आवर्जन को रोकने और संवैधानिक व कानूनी ढांचे के भीतर मौजूदा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक और कानूनी उपाय सुझाने का काम भी सौंपा गया है। ये समिति अपनी पहली बैठक के 6 महीने के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेंगी। राज्य में ILP सिस्टम को और मजबूत करने के लिए सरकार ने कृषि और बागवानी मंत्री गैब्रियल डिवांगसू की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई है। ये कमेटी ILP जारी करने, उसकी निगरानी और वेरिफिकेशन के मौजूदा सिस्टम की जांच करने के साथ ही 2026 की ILP गाइडलाइंस की समीक्षा करेगी और सिस्टम को मजबूत करने के लिए बदलाव के उपाय सुझाएगी। सरकार ने APSC सर्टिफिकेट के पुनः सत्यापन और उससे जुड़े मामलों की जांच के लिए शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना की अध्यक्षता में एक पैनल भी बनाया है। ये पैनल APSC सर्टिफिकेट जारी करने, उसकी निगरानी और वेरिफिकेशन के मौजूदा सिस्टम की समीक्षा करेगा, जिसमें 2022 में जारी की गई गाइडलाइंस भी शामिल है। सरकार के आदेशों में कहा गया है कि चारों कमेटियों को

0: विभागों और जिला प्रशासनों से रिपोर्ट, डेटा और स्टेटस अपडेट मांगने का अधिकार भी दिया गया है और उन्हें अपनी पहली बैठक के 6 महीने के भीतर ही अपनी सिफारिशें सौंपनी होंगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, विकास और कल्याणकारी योजनाओं का फायदा तभी आम लोगों को सही तरह से मिलता है जब वे जमीन पर उतरती हैं, और जमीन पर इन परियोजनाओं को उतारने का काम आमतौर पर हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पंचायतों पर होता है। और ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है त्रिपुरा के कंचनवाड़ी पंचायत ने। यहाँ पर जहाँ एक तरफ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, सभी का स्वास्थ्य बीमा है, वहीं सार्वजनिक विकास के भी ऐसे बहुत बड़े काम हुए हैं जिससे लोगों को सीधा लाभ हो रहा है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, शुद्ध पेयजल हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट। तो आइए कंचनवाड़ी ग्राम पंचायत की योजनाओं को धरातल पर उतारने की इस कहानी को सुनते हैं और हम कंचनवाड़ी ग्राम पंचायत के कामों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमें ये रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी ने।
2: त्रिपुरा के पुरुकुटी जिले के कुमारघाट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली कंचनवाड़ी ग्राम पंचायत केवल 4.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन सतत ग्रामीण विकास और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस पंचायत ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज इस पंचायत में 20 बिस्तरों वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। ठोस और तरल कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए खुले में जिम की भी सुविधा विकसित की गई है। यह पंचायत की सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है। यहाँ मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर 0 है। इसके अलावा कंचनवाड़ी के क्षय रोग यानी टीबी मुक्त पंचायत के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई है। इन्हीं उपलब्धियों के कारण कंचनवाड़ी पंचायत को अब प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिलने जा रहा है। ये ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है। कुमारघाट पंचायत समिति के अध्यक्ष सुमति दास और क्षेत्र के वरिष्ठ निवासी संजीत कुमार बशाक ने कहा कि यह सम्मान क्षेत्रों के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उनकी सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। उन्होंने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया।
3: मुझे बहुत खुशी है कि फटिकराय विधानसभा क्षेत्रों के मेरे कुमारघाट ब्लॉक ने देश की सबसे हेल्दी पंचायत की टाइटल जीता है। ये अवार्ड दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास अवार्ड है, जिसे केंद्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय ने अनाउंस किया है। इस अवार्ड की कीमत 1 करोड़ रुपए है। कंचनवाड़ी पंचायत एरिया में 100% औरतें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाती है। यहाँ न्यू बॉर्न डेथ और प्रेग्नेंट माओ की मौत 0 है। पंचायत के सभी लोगों के पास ब्लड ग्रुप कार्ड है। यहाँ सैनिटाइजेशन का भी ठीक से पालन किया जाता है। इस अवार्ड को जीतने के लिए पंचायत से लेकर सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ।
4: गौरवान्वित हूँ कि मैं कंचनवाड़ी नासवा का बासिंदा हूँ। आनंद की बात है, यवनकुटी डिस्ट्रिक्ट कंचनवाड़ी पंचायत सुस्वास्थ्य पंचायत हेल्दी पंचायत के तौर से जो खिताब अर्जन किया है, इसके लिए यहाँ के पंचायत में जो 7 सदस्य हैं, वो 7 सदस्यों में 5 महिला सदस्य हैं और उन्नत यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था है, पानीय जल का सुव्यवस्थित व्यवस्था है। यहाँ के पंचायत के हर एक नागरिक को आपके जो हेल्थ कार्ड पर्याप्त है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्थापना है। इसी वजह से सारे भारतवर्ष में इस गांव सभा कंचनवाड़ी को हेल्दी गांव सभा के रूप में चुना गया है।
2: नुकुटी जिला परिषद के सभाधिपति अमलिंद्र दास ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन में कंचनवाड़ी पंचायत ने 87.28 अंक प्राप्त किए हैं। ये मूल्यांकन जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक भागीदारी और सतत विकास में जुड़े विभिन्न मानकों के आधार पर किया गया था। अधिकारियों के अनुसार पंचायत की ये सफलता प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।
5: पंचायती राज इंडेक्स में फर्स्ट आया है। स्वास्थ्य विभाग पंचायत छाप से उसको पुरस्कृत किया गया है। उसके लिए मैं अपनी अंतर से देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और पंचायती राज व्यवस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ और अंतर से उनको धन्यवाद प्रदान करता हूँ।
2: एक कवि ने कहा है कि गांव की

0: धर्म उनकी शांति और सरलता में होती है। उनकोटी जिले का कंचनबरी गांव इस भावना को पूरी तरह साकार करता है। आकार में छोटा होने के बावजूद इस गांव ने स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता और सतत जीवन शैली के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज कंचनबरी केवल त्रिपुरा की एक आदर्श पंचायत नहीं है, बल्कि ये पूरे ग्रामीण भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए शुभम भट्टाचार्य, आकाशवाणी अगरतला, कुटी जिले से अनुपम भट्टाचार्य के साथ।
1: मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में एरी सिल्क का बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। एरी सिल्क पूर्वोत्तर भारत की एक अलग शिल्प कला की पहचान है। ये रेशम कोमलता, अहिंसा और संवेदनशीलता का प्रतीक है और इस रेशम से पूर्वोत्तर भारत के हजारों परिवार अपनी आजीविका कमा रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण भी एरी सिल्क के माध्यम से हो रहा है। तो आइए, पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक तंत्र का एक अहम हिस्सा एरी सिल्क के बारे में आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में सुनवाते हैं।
2: मेघालय के पारंपरिक एरी सिल्क आज अपनी कोमलता, टिकाऊपन और अहिंसा की विशेष पहचान के कारण देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील सोच और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक बनकर उभरा है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय और असम में तैयार होने वाला यह रेशम अपनी अनोखी उत्पादन प्रक्रिया और उपयोगिता के कारण अन्य रेशमों से अलग स्थान रखता है। एरी सिल्क को पीस सिल्क या अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। इसका कारण इसकी उत्पादन विधि है, जो इस दुनिया के अन्य रेशमों से अलग बनाती है। समानता शहतूत या मुगा रेशम में कोकून को उबालकर धागा निकाला जाता है, जिससे रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एरी सिल्क में सामिया रसीनी नामक कीड़ा पहले तितली के रूप में कोकून से बाहर निकलता है और उसके बाद खाली कोकून से धागा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए यह रेशम शाकाहारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लोगों के बीच खास पसंद बनता जा रहा है। मेघालय के रीभोई जिले और उमरेन दिवोन क्षेत्र को एरी सिल्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उमरेन दिवोन को देश का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया जा चुका है। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 25,000 से अधिक परिवार एरी सिल्क उत्पादन और बुनाई से जुड़े हैं, जिनमें 90% से अधिक महिलाएं हैं। इस तरह यह उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया है। एरी सिल्क की एक खास विशेषता इसकी थर्मो रेगुलेटरी प्रकृति है। यह कपड़ा मौसम के अनुसार शरीर को संतुलित तापमान प्रदान करता है। सर्दियों में यह शरीर की गर्मी को बनाए रखता है, जबकि गर्मियों में हवा के प्रवाह को आसान बनाकर ठंडक का एहसास देता है। इसकी बनावट में हल्की ऊनी गर्माहट भी होती है, जिसके कारण इसे कई बार असमिया ऊन के नाम से भी जाना जाता है। यही गुण इसे साल भर पहनने योग्य बनाते हैं और इसे दैनिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। इस रेशम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्राकृतिक रंगों का उपयोग। एरी सिल्क के कपड़ों को रंगने के लिए स्थानीय और जैविक स्रोतों से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी, लाल के लिए लैक और नीले या गहरे रंगों के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और कपड़े की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। प्राकृतिक रंगों के कारण यह वस्त्र त्वचा के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। वर्षों में एरी सिल्क को मिला जीआई टैग इसकी पहचान को और मजबूत करता है। यह टैग इस बात की पुष्टि करता है कि यह उत्पाद अपने मूल क्षेत्र और पारंपरिक तकनीक से ही तैयार किया गया है। जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर जापान और यूरोपीय देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इन देशों में ऐसे उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनका उत्पादन नैतिक तरीके से किया गया हो। आर्थिक दृष्टि से भी एरी सिल्क उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि देखी गई है।

बुनकरों को अब सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। कई क्षेत्रों में बुनकरों की आय में 30 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बदलाव ग्रामीण स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और नए डिजाइन के माध्यम से एरी सिल्क को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। एरी सिल्क काफी उपयोगी और टिकाऊ है। इसे घर पर ही हल्के ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट से आसानी से धोया जा सकता है। समय के साथ इसकी बनावट और अधिक मुलायम होती जाती है, जिससे इसकी उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। यह गुण इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनाता है। पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक प्रयासों के मेल से यह उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिला रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय।

अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

कर सकता है। हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख और संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी, ये आकाशवाणी है। उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

आशा भोसले की आवाज में ये नगमा हमने आपको सुनवाया फिल्म थी वक्त। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफीक को सुनिए, फिल्म है मेरे सनम।

मुकेश की आवाज में ये नगमा भी आपने सुना। फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है आए दिन बहार के।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए फिल्म साज हिदायतकार राज खोसला पर एक फीचर, तदबीर से तकदीर बदलने वाला फिल्म साज। तहरीर जनाब मलिक अश्तर की है और पेशकश है अली मोहतशिम रजा की।
1: जिंदगी गहरे पानियों का एक बेकरार समंदर है। इस समंदर में छोटे बड़े जजीरे दूर दूर तक बिखरे हुए हैं, जिन पर जरा देर दम लेने को मुसाफिर बैठ जाता है और घड़ी दो घड़ी सांस दुरुस्त करके फिर से समंदर की छाती पर कूद जाता है, ताकि तूफानों से नबर्द आजमा हो, लहरों का सीना चीरे और किसी अगले जजीरे तक पहुंचने की कोशिश करे। जिंदगी के इस सफर में कश्ती हयात उमूमन हालात की लहरों के रहमो करम पर होती है। मुमकिन है मुसाफिर कहीं और जाना चाहे और लहरों उसे किसी और किनारे पर ले जाए। सन 1944 में राजवीर सिंह खोसला नाम का एक 19 साल का नौजवान मुंबई की फिल्मी धरती पर उतरा तो था गुलकार बनने, लेकिन कुछ ही दहाइयों बाद उसकी शोहरत हिंदी फिल्मों के मोतबर और बड़े हिदायतकार के तौर पर होने लगी, जो खुद कभी किसी फिल्मसाज की नजर नायक का मुंतजर बनकर आया था। बाद में उसने न जाने कितनों को फिल्मी पर्दे का ताबिंदा सितारा बना दिया।

एक सदी पुरानी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने हिदायतकार हुए, लेकिन इन हिदायतकारों को आप उंगलियों पर गिन लेंगे जिनका अंदाज मुनफरिद था। ऐसे ही फिल्मकारों में राज खोसला की गिनती होती है। राज खोसला ने अपनी फिल्म

और इकबाल जैसे आने मर्तबत भी शामिल हैं। राज खोसला का रुझान बचपन से ही मौसीकी की तरफ था। वो गाने गाते और मौसीकी के बारे में कुछ भी नया जानने सीखने को हर वक्त तैयार रहते। खोसला शुरू से ही आंखों में सपना सजा कर बैठे थे कि एक दिन वो फिल्मों में बतौर गुलकार पहचान बनाएंगे। नौजवानी की सरहदों में कदम रखते रखते उनका गुलकार बनने का ख्वाब इतना मजबूत हो गया कि वो बंबई में अपने इस ख्वाब समेत किस्मत आजमाने चल पड़े।

ये वो जमाना था जब फिल्म नगरी में बड़े बड़े स्टूडियो काम कर रहे थे, जहां दिन भर किस्मत आजमाने वालों का जमघट लगा रहता था। ऐसा ही एक बड़ा स्टूडियो हुआ करता था, रंजीत स्टूडियो। स्टूडियो के मालिक थे चंदूलाल। रंजीत स्टूडियो में राज खोसला ने गुलकार के तौर पर वॉइस टेस्ट दिया। क्योंकि खोसला गुलकारी की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो इम्तिहान में खड़े उतरे, मगर चंदूलाल ने मसलहत से काम लिया। दरअसल उस वक्त स्टूडियो की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए एक नए गुलकार को फिल्म लेकर चांस देना चंदूलाल को मुनासिब नहीं लगा और उन्होंने मुकेश को मुंतखब कर लिया। राज खोसला ने जो उम्मीद बांधी थी वो टूट गई और अब ये नौजवान फिर से फिल्म नगरी में मौके की तलाश में

राज खोसला फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने पहचाने चेहरे के शनासा थे। ये शख्सियत थी देवानंद। देवानंद बतौर अदाकार फिल्मों में उस वक्त तक अच्छी पहचान बनाने में कामयाब हो चुके थे। राज खोसला ने फिल्मों में किस्मत आजमाने की अपनी मंशा उनके सामने जाहिर की तो देवानंद उनके काम आए। देवानंद ने उन्हें गुलकार के तौर पर तो मौका नहीं दिया, लेकिन एक और काम की पेशकश उन्हें की। ये सन 1951 का साल था और देवानंद की अदाकारी में बाजी फिल्म बन गई। इस फिल्म के हिदायतकार गुरुदत्त थे। देवानंद ने राज खोसला को मुआविन हिदायतकार के तौर पर काम दिलवा दिया। गुलकार बनने आए 26 साल के नौजवान का बतौर मुआविन हिदायतकार काम करना उसके फिल्मी करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ और यहाँ के बाद राज खोसला फिल्मकार के तौर पर मशहूर होने के

आज खोसला की पहली फिल्म सन 1954 में आई और वो थी मिलाप। फिल्म में देवानंद और गीता बाली की जोड़ी को नाजरीन ने काफी पसंद किया और फिल्म ने अच्छी खासी शोहरत भी हासिल की। इस फिल्म की कामयाबी ने राज खोसला का हौसला और फिल्म इंडस्ट्री में उनके कदम दोनों को मजबूत किया। 29 साल के एक नौजवान हिदायतकार के जरिए

0: अंदाज में बनाई गई फिल्म ने लोगों को ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरों को भी मुतासिर किया।
1: दर्द

1956 में आई फिल्म सीआईडी से हुई। ये फिल्म बतौर हिदायतकार राज खोसला को शोहरत की बुलंदियों तक ले गई। सीआईडी कई मानों में एक यादगार फिल्म थी। इस फिल्म ने राज खोसला को जो कुछ दिया सो तो दिया ही, फिल्म इंडस्ट्री को वहीदा रहमान जैसी बेमिसाल अदाकारा भी थी। फिल्म ने अपनी मौसीकी और गीतों के सबब खूब शोहरत हासिल की। यहाँ तक कि लोगों को बाज दफा यकीन करना मुश्किल हो जाता कि एक 31 साल का हिदायतकार इतनी शानदार फिल्म बना चुका है। इस फिल्म की तजस्सुस और हैरत से भरी कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म के गीतों ने और ज्यादा शोहरत हासिल की। बतौर मौसीकार उपनैयर ने इस फिल्म के गीतों से बहुत वाहवाही हासिल की।

फिल्म सीआईडी के दो साल बाद राज खोसला ने सन 1958 में फिल्म सोलवा साल बनाई। इस फिल्म में वहीदा रहमान और देवानंद की जोड़ी ने अदाकारी के जौहर दिखाए। चूंकि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सबको दिखाने की इजाजत नहीं दी, इसीलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर सकी। अलबत्ता फिल्म के गानों ने बहुत

15 साल के बाद राज खोसला ने कालापानी फिल्म की हिदायतकारी की, वो फिल्म देवानंद और मधुबाला की खूबसूरत जोड़ी पर तैयार हुई। इस फिल्म को नाजरीन ने खूब पसंद किया। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए देवानंद को अपने करियर में पहली बार बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के मुआविन अदाकारा को भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। जैसा कि होता आया है, इस फिल्म के गाने भी खूब चले।

कई फिल्मों की कामयाब हिदायतकारी के बाद सन 1960 में राज खोसला ने सोचा कि वो फिल्म साजी के मैदान में बतौर प्रोड्यूसर भी कदम रखे। इसी इरादे को दिल में लिए हुए उन्होंने बम्बई का बाबू फिल्म बनाई। इस फिल्म की तारीफ तो हुई लेकिन कमाई के मामले में फिल्म ने मायूस किया। इस नाकामी से राज खोसला की माली हालत काफी

1962 में राज खोसला की हिदायतकारी में फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना मंजर आम पर आई। फिल्म एक ऐसे फौजी अफसर की जिंदगी पर मबनी थी जो अपनी याददाश्त खो चुका है। पहले पहल तो ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन जब इसको दोबारा एडिट करके रिलीज किया गया तो इसने खूब कमाई की। इस फिल्म ने राज खोसला की बतौर हिदायतकार शोहरत में गणा कदर इजाफा किया।

शुरू में मनोज कुमार के साथ बतौर हीरोइन निम्मी का नाम तय हुआ, लेकिन खोसला ने निम्मी के बजाय साध्या को मुंतखब किया। ये फिल्म सस्पेंस से भरपूर थी और जाहिर है कि ऐसी फिल्में बनाने में खोसला को महारत हासिल थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए उमड़ी। फिल्म में साधना की पुरअसरार मुस्कुराहट और खोसला की शानदार हिदायतकारी का खूब चर्चा हुआ।

ऐसा नहीं है कि राज खोसला की हर फिल्म का मुकद्दर कामयाब रहा। सन 1967 में उन्होंने फिल्म अनीता बनाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। अनीता की नाकामी के 2 बरस बाद कामयाबी फिर से खोसला के दरवाजे पर आई और उनकी फिल्म चिराग सुपरहिट हुई। इस फिल्म ने खूब कमाई की और पिछली नाकामी से दिल बर्दाश्ता खोसला के एतमाद में भी काफी इजाफा हुआ।

राज खोसला की फिल्मों की कामयाबी का सिलसिला आगे बढ़ा। सन 1971 में मंजरेआम पर आई उनकी फिल्म मेरा गांव मेरा देश बहुत मशहूर हुई। इस फिल्म ने काफी कमाई की। वंशी किरदार के बावजूद विनोद खन्ना की अदाकारी को काफी पसंद किया गया।

1970 की दहाई के आखिर में राज खोसला ने फैसला किया कि वो लीक से हटकर फिल्में बनाएंगे। दरअसल वो बंदे टके जाप्तों पर फिल्मों से आजीज आ गए थे। खोसला ने मैं तुमसे तेरे आंगन की फिल्म बनाई, फिल्म विजय आनंद और नूतन की जोड़ी पर तैयार की गई थी। इस फिल्म को नाजरीन में अच्छी

रहाई पर मुश्तमिल खोसला के फिल्मी करियर की आखिरी सुपरहिट फिल्म सन 1980 में मंजर आम पर आई। फिल्म का नाम था दोस्ताना। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान ने बेहतरीन अदाकारी

1980 की दहाई में खुसरा की फिल्म आई तो, लेकिन कमाई के मामले में नाकाम सी रही। ये बात याद रखने की है कि उनकी फिल्मों ने कमाई भले ही न की, लेकिन हिदायतकारी के नुक्ते नजर से उनकी फिल्मों ने हमेशा सिनेमा वालों को मुतासिर किया। फिल्म सन 1980 के पूरे दहे में दासी, तेरी मांग सिंदूर से भरूं, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, माटी मांगे खून और नकाब जैसी फिल्मों के जरिए राज खोसला फिल्मी पर्दे पर दस्तक देते रहे, लेकिन उनकी फिल्मों को बहुत ज्यादा कमाई करने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। हालांकि तो हवादिस और जमाने के नशीबो फराज ने खोसला को तोड़ कर रख दिया और वो परेशानियों में गिरते चले गए।

फिल्मकारों की भीड़ में जिन वजूहात से अलग पहचान रखते हैं उनमें सबसे अहम बात तो यही है कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ही ख्वातीन का डायरेक्टर कहा गया। उन्हें खिताब अपनी फिल्मों में ख्वातीन के मजबूत किरदारों के लिए दिया गया। दरअसल हॉलीवुड में जॉर्ज कोकर को इसी लकब से याद किया जाता है और खोसला की मिसाल उन्हीं से दी जाती है। राज खोसला ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमा चुकी अदाकाराओं को भी मौका नहीं दिया बल्कि नए नगीने भी तलाश करके फिल्मी दुनिया को दिए। राज खोसला ने जिन अदाकाराओं को मुतारिफ कराया उन अदाकाराओं ने फिल्मी दुनिया की बुलंदियों को छुआ। CID के जरिए वहीदा रहमान की आमद तो हुई। सन 1964 में आई फिल्म वो कौन थी में अदाकारा आशा पारे को एक नई पहचान दी। इसी फिल्म के लिए सिमी ग्रेवाल को बेहतरीन मुआविन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला।

1979 में आई फिल्म दो रास्ते ने मुमताज को खूब शोहरत दी। इसी फिल्म ने राजेश खन्ना के स्टारडम में चार चांद लगा दिए। 1978 में आई फिल्म में तुलसी त्रयागन ने नूतन को खूब शोहरत दिलाई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला।

राजकोटला ने सिर्फ मरकजी किरदार निभा रही अदाकाराओं को ही नहीं बल्कि अपनी फिल्मों में हर अदाकारा को मजबूत और अहम रोल दिया। उनकी फिल्मों में औरतों को एक नए तरीके से अदाकारी के फन के साथ पर्दे सीने पर पेश किया गया। किरदार खवातीन के रिवायती किरदारों से जुदा लेकिन उनके मुकाबले कहीं ज्यादा तवाना और मुस्तहकम थे।

राज खोसला की फिल्मों की दूसरी बड़ी खसूसियत ये है कि उनकी फिल्में खूबसूरत मौसीकी और दिलकश नगमों से सजी हुई होती थी। खोसला की फिल्मों को कामयाबी मिले या नाकामी, लेकिन उनकी फिल्मों के गाने बेपनाह मकबूल होते थे। कहा जाता है कि उनके फिल्मी गाने आते ही कुछ ही दिन बाद शादी ब्याह में बैंड बजाने वाले लपक लेते थे और उसे बजाया करते थे। राज खोसला ने कई मौसीकारों के साथ काम किया और उन सबके गीतों को मकबूलियत हासिल हुई। ओपी नैयर, एडी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी से सजे उनके फिल्मी गीत खूब मशहूर हुए। उनके गीतों की मकबूलियत ने फिल्म की मकबूलियत को भी पीछे छोड़ दिया। राज खोसला की जिस मौसीकार के साथ सबसे ज्यादा कामयाब जोड़ी रही वो थे मदन मोहन। मदन मोहन ने खोसला की मुताबिक फिल्मों में बतौर मौसीकार काम किया। फिल्म वो कौन थी के गीतों की मकबूलियत इस जोड़ी की कामयाबी की एक मिसाल है। वो कौन थी के गीतों के अलावा मदन मोहन ने मेरा साया फिल्म में भी मौसीकी दी। इस फिल्म के बारे में तो क्या ही कहना, इस फिल्म के गीत आज तक लबों पर गुनगुनाते हैं। फिल्म के सब गाने बेहद

राज खोसला की फिल्म चराग में भी मौसीकी दी, इस फिल्म के गीत भी मकबूलियत के मामले में किसी से कम नहीं रहे। मदन मोहन ने राज खोसला की फिल्मों के बहुत से गीत लता मंगेशकर की सहरंगेज आवाज में रिकॉर्ड करवाए। ये वो गीत है जो एक दौर तक महदूद नहीं रहे बल्कि हर दौर में मकबूल हुए। इनमें बहुत से गीतों की शोहरत का यह आलम है कि उनके रीमेक आज भी तैयार

राज खोसला और देवानंद के दरमियान एक करीबी ताल्लुक रहा। दोनों ने एक दूसरे की कामयाबी में किरदार अदा किया। देवानंद ने राज खोसला को मुआविन हिदायतकार के तौर पर काम दिलवाया। जब बतौर हिदायतकार खोसला के कदम जमे तो उन्होंने देवानंद के साथ मिलकर फिल्मों को इस सलीके से बनाया कि देवानंद की शोहरत में काफी इजाफा हुआ। देवानंद को खोसला की फिल्मों से सिर्फ ग्लैमर ही नहीं बल्कि इजाजत भी हासिल हुए। देवानंद और खोसला के दरमियान ये कुर्बत

कहानी कार के तौर पर भी अपनी एक शनाख्त बनाई। उन्होंने जिन फिल्मों की कहानियां लिखी उनमें प्रेम कहानी, कच्चे धागे, एक मुसाफिर एक हसीना और मिलाप शामिल है। राज खोसला में जितना हिदायतकारी का हुनर था वो उतने ही मौसर कलम के भी धनी थे। इन फिल्मों के अलावा उन्होंने कई फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी लिखा। राज खोसला हमें जैसे सलाहियतों के मालिक शख्सियत थे। उन्होंने हिदायतकारी के अलावा अदाकारी भी की। सन 1952 में आई फिल्म जाल में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया। हालांकि इसके अलावा किसी और फिल्म में उनकी अदाकारी का जिक्र नहीं।

राज खोसला ने भारतीय सिनेमा में तवील दौर देखा। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे को रंगीन होते देखा। इस लंबे सफर में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। कई अदाकारों का करियर उन्हीं की देन है। फिल्म वो कौन थी में राज खोसला ने विलेन के किरदार के लिए प्रेम चोपड़ा को मुंतखब किया। इस फिल्म के बाद तो जैसे प्रेम चोपड़ा इस मखसूस किरदार के लिए ही मकबूल हो गए। फिल्म अदाकार महमूद को भी राज खोसला ने अपनी फिल्म CID के जरिए नाजरीन से बतौर अदाकार मुतारिफ कराया। राज खोसला ने पुराने रास्तों पर चलने के बजाय नई राहें बनाई और उसके बाद आने वालों ने उन रास्तों पर अपना सफर तय किया। मसलन मशहूर फिल्म शोले, जिस फिल्म से बहुत हद तक पकड़ पाई थी, वो फिल्म राज खोसला की ही फिल्म मेरा गांव मेरा देश थी। राज खोसला की फिल्मों के बारे में माहिरीन का कहना है कि उन्होंने तजस्सुस, जराइम और हैरत पर मबनी फिल्मों को जिस अंदाज में तैयार किया वो भारत में इससे पहले कम ही देखा गया। आलमी सिनेमा में इन मौजूदात पर जिस चाबुकदस्ती से फिल्में बनाई, वहीं फनकाराना महारत भारतीय फिल्मों में राज खोसला के यहाँ देखी गई। राज खोसला की जिंदगी उतार

महाराज खोसला के बाद उनकी फनी मीराश उनके बेटे विरल लूथरा को मिली। लूथरा भारतीय फिल्मों में एक अच्छे हिदायतकार के तौर पर पहचान बना चुके हैं। जिंदगी के आखिरी अय्याम खोसला ने बड़ी शिकस्तगी के आलम में गुजारे। वो फिल्म इंडस्ट्री की बेसबाती से भरी जिंदगी का बरमला इजहार करते हैं। 9 जून 1991 को राज खोसला ने दुनिया को अलविदा कहा। खोसला के बाद उनकी फिल्मी रिवायात को अगली नस्लें संभाल रही हैं और संभालेंगी। यकीनन फिल्मी शख्सियत की भीड़ में अपना मुनफरिद अंदाज और मजबूत अज़्म और इरादे के सबब राज खोसला हम सब के दिलों पर राज करते रहेंगे। शकीब, अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, हम उस रास्ते पे नहीं चलते जो रास्ता आम हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मसाज और हिदायतकार राज खोसला पर यह फीचर तदबीर से तकदीर बनाने वाला फिल्मसाज। तहरीर जनाब मलिक अश्तर की थी और पेशकश थी अली मोहतशिम रजा की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। भारत ने अकवामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए सख्त नुक्ताचीनी की है कि वो अपने शहरियों में भारत के लिए नफरत पैदा करने का मुनज्जम सिलसिला चला रहा है। मस्कत में भारतीय सिफारत खाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मैरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। बैन अल-अक़वामी ब्रिक्स ज़राई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। अमेरिका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और जनूबी फिलीपींस में कल के ताकतवर जलजिले में हलाक होने वालों की तादाद 37 हो गई है। तो खबरें तफसील से। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए सख्त नुक्ताचीनी की है कि वो नफरत का एक मुनज्जम निजाम चला रहा है, जिसके जरिए वो अपने शहरियों में भारत के तई मुस्तकिल जारहियत पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तराहात का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुप को फितना अल हिंदुस्तान का नाम देकर सरकार की शह पर गलत बातें फैलाने के बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तंकीद का निशाना बनाया। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पर्वत नैनी हरीश ने जोर देकर कहा कि अपनी दाखिली कोताही के लिए अपने पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। ओमान के शहर मस्कत

लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाजों में ये नगमा अभी आपने संगम फिल्म से सुना। अब सुनिए मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह को, फिल्म है परवरिश।

आपने सुना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म थी दूसरा आदमी। यह है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश, फिल्म है श्री 420।

चार सौ बीस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर की। अब सुनिए धर्मवीर फिल्म में किशोर कुमार और आशा भोसले को।

सुनिधि चौहान, केके और उदित नारायण की आवाजों में शिखर फिल्म का नगमा भी आपने सुना। अब सुनिए केके और सुनिधि चौहान को, फिल्म का नाम है गरम मसाला।

इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा और तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप आसिया मेमुना से आलमी खबरें सुनिए। भारत ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए सख्त नुक्ताचीनी की है कि वो

अपने शहरियों में भारत के लिए नफरत पैदा करने का मुनज्जम निजाम चला रहा है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय जहाजियों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। बैन अल-अक़वामी ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम की शुरूआत करेंगे। और अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए सख्त नुक्ताचीनी की है कि वो नफरत का एक मुनज्जम निजाम चला रहा है, जिसके जरिए वो अपने शहरियों में भारत के तय मुस्तकिल जारहियत पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तिलाहात का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुप को फितना अल हिन्दुस्तान का नाम देकर सरकार की शय पर गलत बातें फैलाने की बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तंकीद का निशाना बनाया। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवथा नैनी हरीश ने जोर देकर कहा कि अपनी दाखिली कोताही के लिए अपने पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुक्काम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे आसपास आग लगने के वाकये की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयामे अमन के बारे में हतमी मुजाकिरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की लाइल्मी या हिमाकत की वजह से ये अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही है। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। बैन अल-अक़वामी ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत आला ओहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील चीन रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। आज मुख्तलिफ मौजूआत पर कई इजलास हो रहे हैं। अहम मौजूआत में खुराक की यकीनी फराहमी जरई इख्तिरा आबो हवा के लिए साजगार खेती जरई तिजारत और छोटे किसानों को इख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वजीरों के माबैन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे जिसमें छोटे किसानों ख़वातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इससे पहले इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकल व हरकत के शोबे में सलाहियत शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज एक जदीद तर्ज की तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की सिमत एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत कनेक्टिविटी कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए की ऐन मुताबिक है।

रेडियो वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए सख्त नुक्ताचीनी की है कि वो अपने शहरियों में भारत के लिए नफरत पैदा करने का मुनज्जम निजाम चला रहा है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुर्मुस के जुनूब में आग लगने के वाके के बाद बहरी जहाज एमटी मैरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय जहाजियों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। बैनुल अक्वामी ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंडपोर्ट बंदोबस्त निजाम की शुरूआत करेंगे। और अमरीका के वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है, हमारी पहली मजलिस अब खत्म होती है। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

क्या बात है, पंचमदा का म्यूजिक, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और किशोर कुमार की जादुई आवाज। दोस्तों, इस गाने में रणधीर कपूर साहब का वो धोती कुर्ता वाला लुक और लाठी घुमाने का अंदाज आज भी लोगों के जहन में ताजा है।

दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। फिल्म में लीड रोल में थे पृथ्वीराज कपूर के पोते और राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर, और दोस्तों उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी बेहद ही खूबसूरत हीरोइन रेखा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रुकिए, इस फिल्म की जो जान थे इसके विलन थे, यानी हमारे शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। उनके अलावा फिल्म में सुलोचना, मनमोहन कृष्णा और रमेश देव जैसे बेहतरीन कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं।

दोस्तों अब थोड़ा सा रुख करते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। मनमोहन देसाई की फिल्म की एक खास बात होती थी, यानी बचपन में बिछड़ जाना, ये उनकी कहानी में जरूर होता था। इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। विभाजन के वक्त एक ट्रेन हादसे में केदारनाथ भार्गव का परिवार बिखर जाता है। दो भाई राम और लक्ष्मण अलग हो जाते हैं। लक्ष्मण यानी रणधीर कपूर अपने पिता के साथ रामपुर गांव में पलता बढ़ता है। एकदम सीधा साधा भगवान राम का परम भक्त। वहीं उसका बड़ा भाई राम यानी शत्रुघ्न सिन्हा किस्मत के थपेड़ों के कारण मुंबई में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कुमार बन जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लक्ष्मण के बचपन का जो दोस्त प्रकाश एक मर्डर केस में फंस जाता है और लक्ष्मण उसे बचाने मुंबई आता है। वहां वह लुई डिसूजा का रूप बदलकर एक गैंग में शामिल हो जाता है जिसका बॉस कोई और नहीं होता बल्कि उसका अपना सगा भाई राम होता है। अब

साथियों, इसी ड्रामे के बीच जब रेखा और रणधीर कपूर का रोमांस स्क्रीन पर आता है तो ये भारतीय सिनेमा का इतिहास बन जाता है। और अब सुनते हैं इसी पर दर्शाया ये गीत।

दोस्तों, फिल्म का बेहद मशहूर और भावुक भजन हमने अभी आपको सुनवाया, जिसे फिल्म में सुलोचना जी गाती हैं। और क्या आप जानते हैं कि आर डी बर्मन यानी पंचम दा ने इस गाने की धुन एक मशहूर रशियन कंपोजर सरगेई प्रोकोफिए के लेफ्टिनेंट कीजे सुटेक रोमांच थीम से प्रेरित होकर बनाई थी। जी हाँ, विदेशी धुन को भारतीय भजन में ढालना

दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का वो सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाने वाला स्टाइल इस फिल्म में इतना पॉपुलर हुआ कि लोग सिनेमा घरों में तालियां बजाते नहीं थकते थे। कई लोगों को लगता है कि यह स्टाइल रजनीकांत साहब का है, लेकिन सच यह है कि रजनीकांत ने इंडस्ट्री में आने से पहले शत्रुघ्न सिन्हा के इस अंदाज से काफी प्रेरणा ली थी।

साथियों, इस फिल्म की बम्पर सफलता को देखते हुए साल 1978 में इसका तमिल रिमेक भी बनाया गया था, जिसका नाम था मंगुड़ी माइनर।

दोस्तों अब समय की घड़ी इशारा कर रही है कि आपसे अनुमति ले ली जाए, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, अब सुनिए समाचार।
1: ये पंजाबी खबर, एक बज के 50 मिनट पे उर्दू खबर सुनोगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबर विनाल मैं रमेश खान, पहला इस बुलेटिन में खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 सालों दौरान देश के नौजवानों, औरतों और किसानों को समर्थ बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी वालों पंजाब तो आम आदमी पार्टी के आगू संजीव अरोड़ा नाल संबंधित हैंटन स्काई रियल्टी लिमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में छापेमारी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स खेतीबाड़ी सम्मेलन आज तो मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की निखेधी करदे कहा है कि पाकिस्तान धार्मिक शब्दावली की वरतों करके भारत खिलाफ नफरत फैला रहा है और कोला मंत्रालय ने कोला एक्सचेंज नियम 2026 में नोटिफाई कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 सालों दौरान देश के नौजवानों, औरतों और किसानों को समर्थ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 1.4 अरब नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र पहलों की भावना नाल सरकार विश्वास, विकास और जन भलाई लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हों अणथक यत्नों के नतीजे वजो अज देश ने बुनियादी ढांचे को लैके डिजिटल क्रांति तक आलमी पद्धर से एक नवी पछाण प्राप्त की है। श्री मोदी ने जोर दे के कहा कि एक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की सरकार सेवा, सुशासन और खुशहाली के इस मार्ग से निरंतर अगे बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 सालों तो सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत प्रेरित निरंतर यत्न राही देश एक मजबूत और सहनिर्भर भारत बनने वाल बढ़ रहा है। संस्कृत के एक श्लोक का जिक्र करदे श्री मोदी ने कहा कि समर्पण और सेवा भावना राष्ट्र निर्माण लिए सरकार की अनमोल पूंजी रही है। प्रधानमंत्री अगे कहा कि एक व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान कहा जाता है जब वह दूजे की भलाई तो ईर्खा किए बिना नेक काम करता रहे। भारतीय जनता पार्टी के संघ नेता नरेंद्र मोदी ने अज के ही दिन साल 2024 लगातार तीजी बार भारत के प्रधानमंत्री वजो सहु चुके थे। अपने तीजे कार्यकाल सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के प्रसार, समाजिक भलाई, रोजगार सृजन और आलमी पद्धर से भारत की स्थिति को मजबूत करने वर्गे मुख खेत्रां ते विशेष ध्यान दे रही है। पिछले एक साल विच विकास को तेज करने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने लिए कई महत्वपूर्ण पहलकदमियां की गई हैं। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी हैंटन स्काई रियल्टी लिमिटेड नाल संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 थावां पर छापेमारी कर रहा है। इस विच पंजाब के जलंधर, लुधियाना, उत्तर प्रदेश के बरेली और दिल्ली एनसीआर के इलाके

एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहम किया जा सकेगा। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए नुक्ताचीनी की है कि वो नफरत का एक मुनज्जम निजाम चला रहा है, जिसके जरिए वो अपने शहरियों में भारत के तहत मुस्तकिल दुश्मनी पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तिलाहात का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुप को फितनउल हिन्दुस्तान का नाम देकर सरकार की शह पर गलत बातें फैलाने की बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवेज नैनी हरीश ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इस तरह सिर्फ अपनी नाकामियों को नई दिल्ली पर डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की सियासी निजाम और सरकार चलाने में उसके फौजी बढ़ते हुए सरकर्दा रोल पर अफसोस का इजहार करते हुए हालिया आईनी तरामीम का जिक्र किया और कहा कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सिविलियन हुकाम पर पाकिस्तान की फौज की बालादस्ती बढ़ती जा रही है। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पार की फौजी सरगर्मी की मजम्मत की और कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों से होने वाली कसीर गैर फौजी अमवात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बैन अक्वामी ब्रिक्स जरिए कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला ओहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। आज मुख्तलिफ मौजूआत पर कई इजलास हो रहे हैं। अहम मौजूआत में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तिरा, आबोहवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। जुमे को ज़राअत के वज़ीरों के माबैन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हफ्ते के दिन ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीरों की मीटिंग होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट रोजीला टनल में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर और लद्दाख के दरमियान सभी मौसमों में आमदरफ्त वाली सड़क से फासला काफी कम हो गया है। इस तरह 10 साल से जारी ये ख्वाब पूरा हो गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर इस पेशरफ्त का आगाज किया। ये तकरीब लद्दाख में मिनीमर्ग में टनल के मशरकी पोर्टल के करीब मुनाकिद की गई। रोजीला टनल मुल्क की दिफाई एतबार से सबसे अहम सड़कों में से एक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश और पंजाब में छह जगहों पर काले धन को जायज बनाने के मामले में तलाश की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। इस मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड मुलविस है, जो पंजाब में लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली नोएडा खत्ते में ये तलाशियां की ली जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुकाम के मुताबिक हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वाबस्ता अफराद की कारोबारी दफातर और घरों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। इस मामले का ताल्लुक आम आदमी पार्टी के रहनुमा और पंजाब के वजीर संजीव अरोड़ा से है। डायरेक्टोरेट के मुताबिक 1 अरब रूपये से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन पर फर्जी जीएसटी दिखाई गई। बाद में इस माल को बरामदी माल दिखाकर मुबैना तौर पर नाजायज रकम को दुबई से भारत मुंतकिल किया गया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मुल्क की खारजा पॉलिसी में पिछले 12 साल के दौरान काफी ज्यादा तब्दीली आई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस दौरान हुकूमत ने आम शहरियों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजात की तस्दीक करने की बिला रुकावट सहूलियात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शिकायतों को दूर करने और शहरियों की राय हासिल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगाज किया है और किसी तरह की परेशानी की सूरत में मौसर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आलमी सतह पर काम की जगहों के लिए भारतीय शहरियों को रसाई फराहम की है और भारतीय ताजिरों को बैरून मुल्क मार्केट तक रसाई हासिल करने में मदद दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इन इकदाम से बरामदात में इजाफा करने में मदद मिली है और भारतीय मसनूआत ने इस खिदमात को नई मार्केट तक पहुंचाने में सहूलत फराहम हुई है।
बाकी मुल्क की तरह झारखंड में भी आज अजीम मुजाहिदे आजादी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गवर्नर, वजीर आला, वुजरा और कई दीगर शख्सियात ने रांची में कोकर समाधि स्थल जाकर उनकी गुलहाय अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरी और वजीर आजम समेत बहुत से रहनुमाओं ने भगवान बिरसा मुंडा को खिराज अकीदत पेश किया है। उनकी शहादत के दिन के मौके पर खिराज अकीदत पेश करते हुए नायब सदर जमहूरी सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जुड़ा शुजात और खुददारी की अलामत थे और वो इंसाफ में गैर मुतजलजल यकीन रखते थे। मर्दों की क्रिकेट में श्रीलंका के रंगगिरी डंबोला इंटरनेशनल स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज के इब्तदाई मैच में भारतीय टीम ए श्रीलंका टीम ए के साथ जीत के लिए 278 रन का निशाना रखा है। भारतीय टीम की टीम 6 विकेट पर 277 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले भारतीय टीम ए के स्किपर तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड फोर्ड बंदोबस्त निजाम का आगाज करेंगे। भारत ने अकवाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सरजनिश की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। उसके वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है, जिसका मकसद ज़राअत के शोबे में आलमी मामलात पर मुज़ाकरात करना है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: century, coupled with a 150-run partnership with Tilak Verma, helped India gain control of the innings. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in afternoon trade today. The Sensex rose 267 points to 73,791, while the Nifty added 86 points to 23,209 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading 0.9% higher, while the small-cap 100 index jumped over 1% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in the last 12 years. India hits out at Pakistan in the United Nations, calls it factory of hate. 5-day BRICS agriculture ministers meeting begins in Indore to focus on food security and empowerment of farmers. Strategic road project Zojila Tunnel achieves final breakthrough, bringing all-weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years. Nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert. Heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe also predicts heatwave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series on Mandala, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास बुनियादी ढांचे के विस्तार सामाजिक कल्याण रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।

0: बढ़ाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरूआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रूपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शी

0: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। यह मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम

0: 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे ही संगीतकार की कहानी जिनका नाम शायद हर श्रोताओं की जुबान पर ना हो, लेकिन उनकी धुनें आज भी दिलों में बसती हैं। वो संगीतकार जिन्होंने संगीत को केवल मनोरंजन नहीं माना बल्कि उसे भावनाओं की भाषा बनाया। आज बात होगी सिनेमा के उस संगीतकार की जिनकी धुनों में शास्त्रीयता, लोक संगीत और भावनाओं की गहराई एक साथ सुनाई देती है। आज बात होगी वसंत देसाई की जिनकी रचनाओं में भारतीयता

हुसैन देसाई का जन्म 9 जून 1912 को हुआ। बचपन से ही संगीत और कला की ओर उनका झुकाव था। शुरुआती दिनों में उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी संगीत। उनका सफर जुड़ा भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के प्रतिष्ठित बैनर प्रभात फिल्म कंपनी से। यहां उन्होंने काम करते हुए संगीत की बारीकियां सीखी और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। वसंत देसाई मानते थे कि संगीत केवल धुन नहीं, एक अनुभव है।

दोस्तों, आपको बता दें कि वसंत देसाई के संगीत की सबसे बड़ी खासियत थी भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ। उन्होंने कभी भी केवल लोकप्रियता के लिए संगीत नहीं बनाया, उनकी धुनों में लोक रंग, शास्त्रीयता और भावनात्मक गहराई साफ सुनाई देती है। उनका संगीत कई फिल्मों में दर्शकों को सुनने और महसूस करने दोनों का अवसर देता था। उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं गुड्डी, झनक झनक पायलबाजी, दो आंखें बारह हाथ, संपूर्ण रामायण, गूंज उठी शहनाई, आशीर्वाद, अमर ज्योति जैसी फिल्में। इन फिल्मों में संगीत कहानी का हिस्सा बन जाता था।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आपके साथ मैं हूं आज अर्चना गोयल। कहा जाता है कि वसंत देसाई किसी भी गीत को रिकॉर्ड करने से पहले उसके भाव को बहुत महत्व देते थे। दो आंखें बारह हाथ का गीत ए मालिक तेरे बंदे हम आज भी प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। ये सिर्फ गीत नहीं एक संदेश बन गया। वहीं झनक झनक पायल बाजी में उन्होंने शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय सिनेमा के साथ इस कदर जोड़ा कि दर्शकों को लगा कि जैसे वो कोई संगीत समारोह सुन रहे हों। उनकी रचनाओं में भारतीय वाद्यों का प्रयोग बेहद संतुलित होता था। वो उन कलाकारों में थे जिन्होंने ये साबित किया कि संगीत की उम्र नहीं होती। उन्होंने ऐसे दौर में काम किया जब फिल्मों में संगीत तेजी से बदल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी मौलिकता नहीं छोड़ी। उनकी धुनें आज भी संगीत प्रेमियों और सीखने वालों के लिए प्रेरणा है। उनका संगीत हमें याद दिलाता है कि सादगी भी गहरी हो सकती है।

विसंत देसाई ने वी शांताराम की कई फिल्मों में संगीत दिया। 50 के दौर के बाद दोनों में कुछ खटास आ गई। उसके बाद उन्होंने साथ में कभी काम नहीं किया। वाणी जयराम के साथ फिल्म गुट्टी का गीत बोले रे पपिहरा भी काफी मशहूर हुआ। उन्होंने कई मराठी फिल्मों में संगीत दिया जो काफी पसंद किया गया, जिनमें अमर भोपाली, श्यामची आई, लक्ष्मण रेखा, छोटा जवान मुख्य फिल्में रहीं। 1940 के दशक में उन्होंने अपनी शुरुआत प्रभात फिल्म कंपनी से की, जिसमें उन्होंने गाया और गीतों की रचना की और एक्ट भी किया। ये फिल्म थी धर्मात्मा और संत ध्यानेश्वर। 22 दिसंबर 1975 को मात्र 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

तो श्रोताओं, आज हमने जाना उस संगीत साधक को जिसने सुरों को पूजा की तरह जिया। बसंत देसाई भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी धुनें आज भी हमारे साथ हैं। हर पल उस पल में जब कोई गीत दिल को छू जाए, इसी भावना के साथ अब मैं अर्चना गोयल आपसे विदा लेती हूँ। सुनते हैं उनकी अमर रचनाओं में से एक गीत।

9:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। सुपहर 3:30 आप सुनेंगे प्रोग्राम अदबनुमा और शाम 4 आप लुफानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाखों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ से मजलिस में नशरों वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप आसिया मैमुना से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल के दौरान नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट जोजिला टनल में पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द हकीकत बनने वाला है। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं और आज से मुल्क भर में तकरीबात मनाई जा रही हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 साल में मुल्क के नौजवानों, ख्वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ शहरियों के आशीर्वाद और मुल्क मुकद्दम के जज्बे के साथ सरकार एतमाद, तरक्की और अवाम के बहबूद की तय अहदबस्ता है। वजीर आजम ने कहा कि इन अनथक कोशिशों के नतीजे में आज मुल्क ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल इनकलाब तक आलमी मंजरनामे पर एक नई पहचान बनाई है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को हकीकत की शक्ल देने के लिए सरकार खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और खुशहाली के इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए सख्त नुक्ताचीनी की है कि वह नफरत का एक मुनज्जम निज़ाम चला रहा है जिसके जरिए वह अपने शहरियों में भारत के तई मुस्तकिल दुश्मनी पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तलाहात का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुप को फितनउल हिंदुस्तान का नाम देकर सरकार की शह पर गलत बातें फैलाने की बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अक्वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पर्वथैनैनी हरीश ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इस तरह सिर्फ अपनी नाकामियों को नई दिल्ली पर डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के सियासी निजाम और सरकार चलाने में उसकी फौज के बढ़ते हुए सरकर्दा रोल पर अफसोस का इजहार करते हुए हालिया आईनी तरामीम का जिक्र किया और कहा कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सिविलियन हुक्काम पर पाकिस्तान की फौज की बालादस्ती बढ़ती जा रही है। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पार की फौजी सरगर्मियों की मजम्मत की और कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों से होने वाली कसीर गैर फौजी अमवात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बैन अलाक़वामी ब्रिक्स जरिए कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला अहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। आज मुख्तलिफ मौजूआत पर कई इजलास हो रहे हैं। अहम मौजूआत में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तिरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। जुमे को ज़राअत के वज़ीरों के माबैन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हफ्ते के दिन ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ सिफारती राबतों पर पुरउम्मीदी का इजहार करते हुए कहा है कि वाशिंगटन एक अहम कामयाबी हासिल करने के करीब है। एक इंटरव्यू में जनाब ट्रंप ने कहा कि वो एक बहुत पायदार, ताकतवर और बहुत अच्छे समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की तरफ से ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी बमबारी के मुकाबले में ज्यादा मौसर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरहद पर हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद बाहमी बातचीत अब भी आगे बढ़ रही है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया है कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत निजात लोगों के ग्रुपों ने वफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम का की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम करने पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा असलाहत और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी की ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकिरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की लाइल्मी या हिमाकत की वजह से ये अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 37 हो गई है जबकि 500 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। ये जलजला फिलीपींस की सबसे ज्यादा आबादी वाले दूसरे बड़े शहर मिंडानाओ में आया जिससे 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इनमें से बेशतर लोग को एमरजेंसी पनाहगाहों में जाना पड़ा। फिलीपींस के सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा है कि मुतालिका एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई में तालमेल के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने मुतासिरा इलाकों में स्कूली क्लासें मुअत्तल किए जाने का भी हुक्म दिया है। वहां यह जलजला ऐसे वक्त आया है जब फिलीपींस में स्कूली साल का यह पहला दिन था। कांगो के मशरकी हिस्से में हुकाम की जानिब से इबोला फैलने के ऐलान के एक महीने से भी कम अरसे में 100 से ज्यादा अफराद की जान तलब हो गई। इबोला की जिस बीमारी में ये अमवात हुई हैं वो एक नायाब वायरस बर्डी ड्यूगियो की वजह से हुई हैं और इसका जायर वायरस की तरह ना तो कोई इलाज है और ना इसके लिए कोई मंजूरशुदा टीका है। कांगो में माजी में 16 बार जायर वायरस की वजह से ये बीमारी फैली थी। इसी दौरान आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल एडहनॉम गैब्रियसिस इन दिनों युगांडा के दौरे पर हैं ताकि वो कांगो में फैली हुई इबोला बीमारी से निपटने के लिए मुल्क की तैयारियों का बजाते खुद जायजा ले सकें। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने फरीकैन पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर हमले बंद करें, ज्यादा से ज्यादा जब्त-ओ-तहम्मुल से काम लें और ऐसा कोई न कदम न उठाएं जिससे हालात मजीद खराब हो जाएं। जोजिला टनल प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द एक हकीकत बनने वाला है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने इस अहम प्रोजेक्ट के हतमी मरहले का आगाज किया और इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया जिसके नतीजे में कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाले रास्ते को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नितिन गडकरी ने कहा कि इस सुरंग की बदौलत श्रीनगर और लेह का रास्ता 12 महीने दस्तियाब होगा जिससे सैर व सियाहत, नकल हरकत और मकामी मईशत को तकवियत मिलेगी। जोजिला टनल मुकम्मल होने के बाद एशिया में अपनी नौयत का यह सबसे बड़ा दो तरफा रास्ता होगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में PMSMA के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब निफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में ये

0: मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की ज़ेरे क़यादत इस पहल PMSME का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। इस स्कीम का मकसद हमल को दरपेश खतरात का पहले से पता लगाए जाने और इसकी रोकथाम करके जचगी और इसके बाद की अमवात की शरह में कमी लाना है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल के दौरान नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है और इसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़रा ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट जोजिला टनल में पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द हकीकत बनने वाला है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे नशियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में।

पारसमणि फिल्म का ये दो गाना सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमे निगार थे असद भोपाली, वहां सफी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। और ये सुने फरीब फिल्म का नगमा सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ, नगमे निगार असद भोपाली।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में आप सुन रहे थे फरेब फिल्म का ये नगमा, और इस नगमा के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मेरी उम्मीद से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्रेडेश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम अदब नुमा।
1: सामीन की खिदमत में आदाब है, एक बार फिर हाजिर खिदमत है हम आज का ये प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है अदब नुमा, यानी इसमें बातें होती हैं कुछ अदब के हवाले से। अदब की कुछ असनाफ भी हम आपकी नजर करते हैं, जैसे कि कलामी शायर और साथ ही साथ कोई न कोई अफसाना भी हम आपको सुनवाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और आज सबसे पहले आपकी नजर करते हैं चंद खूबसूरत अशार। आज के हमारे शायर हैं जनाब हसन काजमी, आइए सुनते हैं उनसे उनका कलाम।
2: सामीन की खिदमत में गजल के एक मतला और चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मतला देखिएगा कि

0: तो बहुत मुश्किल काम आपने अख्तियार किया।
1: बहुत दुश्वार है लहजा गजल का। और लहजों की भीड़ में एक शेर देखिएगा कि मसा

गजल का एक लहजा ये भी देखिए कि बरतना इसका आसान भी नहीं है। आप खुद इस मिजाज के शायर भी हैं और मुस्तनद शायर हैं कि बर

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: सुने बिस्तर पे कल रात भर नींद करवट
0: आय हाय हाय, बहुत खूबसूरत
1: बदलती
0: शेर।

0: वाह, बहुत बहुत बहुत, क्या कर्म है, क्या आरजू है, क्या बयान है, क्या उसलूब है, वाह वाह वाह वाह।
1: मांग सुनी की सुनी रही, आरजू दिल में पलती रही।
2: समीन कलामी शायर के तहत अभी अपने जनाब हसन काजमी से उनका कलाम सुना। उम्मीद करते हैं कि उनका ये कलाम आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ही था तो आपने कागज और कलम लेकर बैठना था ना, कुछ अशार आपने नोट कर लेने थे ताकि कभी अगर जरूरत पड़े तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। हम तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं कि कुछ शेर अगर पसंद आते हैं तो फिर हम उन्हें नोट कर लेते हैं, और अगर कभी जरूरत पड़ती है तो हम अपने सुनने वालों को जरूर वो शेर सुना देते हैं, नज्म सुना देते हैं। यही सिलसिला जिंदगी में चलता रहता है। खैर, ये तो थी बात कलाम की यानी शेर व शायरी की, और इसी प्रोग्राम यानी अदब नुमा का जो अगला सेगमेंट होता है वो होता है अफसाना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहतरमा निगार अजीम का ये अफसाना जिसका उनवान है शगुन। आइए उनसे ही सुनते हैं उनका ये अफसाना शगुन।
3: इंदर और कामनी की मुलाकात हेमा की बर्थडे पार्टी में हुई थी। हेमा ने इस पार्टी में सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को ही मदो किया था, लेकिन इंद्र हेमा का दोस्त होने के साथ साथ उसका कजन भी था और हमराज भी। इस पार्टी में सब जमा दोस्त एक दूसरे से मुतारिफ थे, इसी सबब माहौल में बेतकल्लुफी और बेबाकी रची बसी थी। हर तरफ मुस्कुराहटें बिखरी हुई थीं। खाने और पीने की मुख्तलिफ अशिया और उनकी खुशबुएं और दीगर तमाम लवाजिम पुरशबाब महकते माहौल में मगरबी संगीत की धुनों ने समा बांध दिया था। ऐसा महसूस होता था इंद्र देवता ने खुद धरती पर उतरकर हुस्न व शबाब का दरबार सजा लिया है, लेकिन खुद इंद्र इस दरबार में अकेला था। हेमा अपने दूसरे दोस्तों और साथियों में मसरूफ थी। एक दूसरे को चाहने वाले जवान जोड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर मदमस्त थे। ऐसे में इंद्र इस दरबार में तन्हा था, क्योंकि उसका कोई साथी या दोस्त इस महफिल में मौजूद नहीं था। वो तन्हा ही दूर से इन नाचते थिरकते जवान जोड़ों को देख रहा था। पुरशबाब चेहरों में उसे कामनी बिल्कुल अलग ही नजर आ रही थी। ऐसे हुस्न को उसने पहली मर्तबा देखा था, और पहली बार ही उसने किसी के लिए दिल की तेज होती हुई धड़कनों को महसूस किया था। कामनी थी भी बेइंतहा खूबसूरत, बिल्कुल अप्सरा, गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी गहरी झील सी आंखें, मुस्कुराते लब, उभरे रुखसार, मुतनासिब जिस्म पर फपती आसमानी साड़ी। रक्स करते करते अचानक उसकी निगाह इंद्र पर पड़ी जो उसी को देख रहा था। लम्हा भर को वो रुकी, बाहें ढीली पड़ी और प्यार भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए वो इंद्र के पास आई और बोली, क्या आपको अकेलापन बहुत पसंद है? जी नहीं तो, मैं अकेला नहीं था, आप मेरे साथ थीं। ओह, तो आइए रक्स करें, वो मुस्कुराते हुए बोली। इंद्र तो चाहता ही यही था। इंद्र की धड़कनों ने कामनी को और कामनी की धड़कनों ने इंद्र को बांध लिया। वो दोनों एक दूसरे में समा गए। उनको देखकर ऐसा महसूस होता था वो वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं। रात का आखिरी पहर बीत चुका था, महफिल मुंतशिर होने लगी थी। इंद्र ने कामनी को उसके घर छोड़ने का ऑफर किया। रुखसत होते हुए इंद्र ने कहा, क्या हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं? क्या अगली मुलाकात की उम्मीद की जा सकती है? यकीनन, मुझे आपकी शख्सियत ने काफी मुतासिर किया है। हमारी अगली मुलाकात जरूर होगी, और फिर दोनों की ये पहली मुलाकात दोनों के लिए बहुत अहम साबित हुई, क्योंकि इंद्र एक तरफ तो कामनी के हुस्न पर फिदा था और दूसरे ये बेबाकाना तर्ज जिंदगी से बहुत मुतासिर। वो ऐसी ही जहीन, खूबसूरत, आजाद और पढ़ी लिखी लड़की चाहता था, और कामनी उसकी तमन्ना का फल थी। कामनी भी इंद्र की मर्दाना पुरवकार शख्सियत पर फिदा हो गई थी। उसमें वो तमाम खूबियां थीं जिसकी तमन्ना एक लड़की करती है। अब वो दोनों हर जगह, हर महफिल और हर पार्टी में एक साथ नजर आने लगे। अब हमें शादी कर लेना चाहिए, एक दिन इंद्र ने कामनी से कह ही दिया। कामनी ने भी शादी के लिए खुले दिल से हाँ कहकर रजामंदी का इजहार किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा, क्या तुम मुझे पूरी तरह समझ चुके हो? हाँ, क्यों नहीं, हम कई माह से एक दूसरे को देखते जानते आ रहे हैं। देखो इंद्र, देखने समझने और बरतने में बहुत फर्क है। बस इतना समझ लें कि अपनी जिंदगी में मैं किसी भी तरह की पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंद्र तो खुद भी आजादाना मिजाज का आजाद पंछी था, ना पाबंदी में रखना पसंद करता था और ना रहना, लिहाजा उसने कोई उज्र इस सिलसिले में पेश नहीं किया। लेकिन हेमा को लग रहा था कि इंद्र जल्दबाजी से काम ले रहा है। उसने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की कि तुम दोनों को थोड़ा और वक्त एक दूसरे को देना चाहिए, नजरियात का टकराव जिंदगी अजीरन कर देता है। लेकिन इश्क की पेंगे इतनी बढ़ चुकी थीं कि उतार मुमकिन न था। उन्होंने हेमा को इत्मीनान दिलाया कि नजरियात का टकराव हमारे दरमियान है ही नहीं, हम दोनों हम ख्याल हैं। लिहाजा हेमा की बर्थडे पार्टी में हुई इस पहली मुलाकात पर शादी की मोहर सख्त हो गई। दिन माह और साल हंसी खुशी बीतने लगे। खुद हेमा और उसके कई साथियों की शादियां इन 5 बरसों में हो गई थीं। हर पार्टी और हर शादी में ये कुंवारे और ब्याहता जोड़े जमा होते तो एक हंगामा बरपा हो जाता, लेकिन अब धीरे धीरे ये पार्टियां और तफरीगाहें सूनी होती जा रही थी, क्योंकि अब सब गृहस्थी के बंधन में बंधने लगे थे। सिर्फ इंद्र और कामनी ही आजाद पंछी की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। कामनी माँ बनना नहीं चाहती थी, उसे जिंदगी का ये जंजाल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका ख्याल था कि बच्चा पैदा करके औरत का हुस्न, उसकी दिलकशी, शौखी और आजादी सब कुछ गायब हो जाती है। हेमा वैसे भी खुद परस्ती का शिकार थी, वो रिश्तों की हकीकतों से नाशना थी। वक्त आगे बढ़ता गया। इंद्र सोचता था कि वक्त के साथ हेमा बदल जाएगी और माँ बनना कबूल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 और फिर 8 बरस बीत गए। हेमा भी एक बच्चे की माँ बन गई थी। बहुत दिनों बाद फिर पुराने दोस्त जमा हुए थे, क्योंकि हेमा के बेटे बबलू का पहला जन्मदिन था। जर्क बर्क हस्ती मुस्कुराती जवानियों के दरमियान कामनी को अपना हुस्न मान पड़ता दिखाई दिया, जबकि हेमा, दीपा और सोनाली एक एक दो दो बच्चों की माएं बनने के बाद भी फूल की तरह खिली हुई थीं। वो और उदास हो गई। उसने अपनी इस उदासी को मेकअप की गाढ़ी तहों में छुपाने की कोशिश की। उसकी शोखियां और शरारतें उदास होकर चिड़चिड़ेपन में तब्दील होने लगी थीं। इंद्र ने उसकी परेशानी को भांप लिया था। उसने एक दिन अपने कजिन हेमा को अपनी परेशानी बताई। कामनी हेमा की बचपन की सहेली थी, उसे अच्छी तरह जानती थी। उसके ख्याल और एहसासात उससे छुपे नहीं थे। वो पागल है, हेमा बोली। वो हमेशा से ही बच्चे पैदा करने के खिलाफ थी। ये उसके दिमाग का फतूर है जो अब तक निकल जाना चाहिए था। मैं एक मर्तबा फिर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। इंद्र तुम परेशान ना हो। इधर इंद्र गया और उधर कामनी दाखिल हुई। हाय हेलो के बाद वो फूट फूट कर रो पड़ी। रोने के बाद उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो उसने खुद को संभाला। अब बता क्या हुआ, हेमा ने पूछा। मैं बदसूरत और बददिमाग होती जा रही हूँ, डॉक्टर कहता है डिप्रेशन का शिकार हूँ। इंद्र भी मेरी वजह से परेशान है, तू ही बता मैं क्या करूं। हेमा, कामनी ना तू बदसूरत है ना बददिमाग और ना डिप्रेशन का शिकार, जिंदगी गुजारने का जरा सा अंदाज बदल दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुदरत से लड़ना मुनासिब नहीं। देख, शादी से पहले लड़की बंद कली होती है और शादी के बाद अधखिली कली, और ये अधखिली कली फूल तभी बनती है जब वो माँ बनती है। माँ बनकर उसके जिस्म का अंग अंग निखर जाता है, मुकम्मल हो जाता है, उसके हुस्न और एतमाद में इजाफा हो जाता है। बस तो कुदरत से लड़ना छोड़ दे और माँ बनना स्वीकार कर। अभी उम्र नहीं निकली, چند برس اور گزر گئے تو بہت دیر ہو جائے گی اور تب یہ اکیلا پن تجھے کھا جائے گا، تب تو ضرور بدصورت، بد دماغ اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی، سمجھی؟ ہیما کی باتوں کا کامنی پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے خود کو سارے بندھنوں سے آزاد کر دیا۔ اندر نے بھی اس کی اس تبدیلی کو محسوس کیا، لیکن جیسے جیسے دن بیت رہے تھے دونوں کے چہروں سے بے چینی عیاں تھی۔ ایک روز ناشتے کی میز پر خلاف توقع کامنی کو خوش اور مطمئن دیکھا تو اندر نے وجہ پوچھ ہی لی، کیا بات ہے، بہت خوش ہو آج؟ ہاں بہت۔ کیاری میں لگا کئی ماہ کا پت جھڑ گلاب ایسا کچکچا کر پھوٹا ہے کہ طبیعت خوش ہو گئی، میں تو اسے اکھاڑ کر پھینکنے والی تھی۔ اندر نے کامنی کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا، سمجھ لو تمہاری مراد پوری ہو گئی، یہ شگون بہت اچھا ہے۔ اور پھر دونوں ایک دوسرے میں سما گئے۔
2: سامعین، ابھی آپ نے محترمہ نگار عظیم سے ان کا یہ افسانہ سنا جس کا عنوان تھا شگن۔ جذباتی پیرائے میں بیان کی گئی ایک خوبصورت کہانی تھی۔ امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اور اب آخر میں سنتے ہیں ایک غزل۔

आप सुन रहे थे अपना बना के देखो फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। और लीजिए सुनिए बॉक्सर फिल्म का नगमा असद भोपाली का लिखा हुआ लता मंगेशकर की आवाज में।

उन्हें सुनी गुड्डी फिल्म का नगमा वानी जरैम और साथियों की आवाजों में नगमा निगार गुलजार मौसीकी वसंत देसाई की।

गूंज जूठी शहनाई, इस फिल्म का दो गाना सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, नाख्वानिगार भरत व्यास, मौसीकी वसंत देसाई की।

अर्धांगिनी फिल्म का यह नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। वसंत देसाई की थी मौसीकी। इसी मौसीकी में एक और नगमा आपकी नजर करते हैं। फिल्म है स्कूल मास्टर, आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की। नगमा निगार प्रदीप।

दिन दागी नक दागी नक दागी नक।

मौसी फिल्म का ये दुगाना आप सुन रहे थे तलत महमूद और लता मंगेशकर का गाया हुआ। भरत व्यास ने इस नगमे को कलमबंद किया, मौसीकी वसंत देसाई की थी। और ये सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये नगमा।

यह इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म है दो बहनें, आवाज लता मंगेशकर की, मौसीकी वसंत देसाई की।

अरे सुनिए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल के दौरान नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाया है। भारत ने अकवाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट जोजिला टनल में पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द हकीकत बनने वाला है। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं और आज से मुल्क भर में तकरीबात मनाई जा रही हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 साल में मुल्क के नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ शहरियों के आशीर्वाद और मुल्क मुकद्दम के जज्बे के साथ सरकार एतमाद, तरक्की और आवाम की बहबूद के तहत अहदबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन अनथक कोशिशों के नतीजे में आज मुल्क ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल इनकलाब तक आलमी मंजरनामे पर एक नई पहचान बनाई है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को हकीकत की शक्ल देने के लिए सरकार खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और खुशहाली के इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए सख्त नुक्ताचीनी की है कि वह नफरत का एक मुनज्जम निजाम चला रहा है जिसके जरिए वह अपने शहरियों में भारत के तई मुस्तकिल दुश्मनी पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तिलाह का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुप को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम देकर सरकार की शय पर गलत बातें फैलाने की बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अकवामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा पार्वतनैनी हरीश ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इस तरह सिर्फ अपनी नाकामियों को नई दिल्ली पर डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के सियासी निजाम और सरकार चलाने में उसकी फौज के बढ़ते हुए सरकर्दा रोल पर अफसोस का इजहार करते हुए हालिया आईनी तरामीम का जिक्र किया और कहा कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सिविलियन हुक्काम पर पाकिस्तान की फौज की बालादस्ती बढ़ती जा रही है। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पार की फौजी सरगर्मियों की मजम्मत की और कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों से होने वाली कसीर गैर फौजी अमवात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। वजीर खारिजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि मुल्क की खारिजा पॉलिसी में पिछले 12 साल के दौरान काफी ज्यादा तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस दौरान हुकूमत ने आम शहरियों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजात की तस्दीक करने की बिना रूकावट सहूलियात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शिकायतों को दूर करने और शहरियों की राय हासिल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आगाज किया है और किसी तरह की परेशानी की सूरत में मौसर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आलमी सतह पर काम की जगहों के लिए भारतीय शहरियों को रसाई फराहम की है और भारतीय ताजिरों को बैरून मुल्क मार्केट तक रसाई हासिल करने में मदद दी है। उन्होंने यह भी कहा कि इन इकदामात से बरामदात में इजाफा करने में मदद मिली है और भारतीय मसनूआत नीज खिदमात को नई मार्केट तक पहुंचाने में सहूलत फराहम हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय अफराद की जरूरतों को पूरा करने के लिए 44 सिफारतखाने और कौंसिलखाने खोले गए हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि हुकूमत की इन कोशिशों से भारतीय अफराद को बैरून मुल्क सफर करने में भी आसानी फराहम हुई है। बैन अलाक्वामी ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला ओहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। आज मुख्तलिफ मौजूआत पर कई इजलास हो रहे हैं। अहम मौजूआत में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तिरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। जुमे को ज़राअत के वजीरों के माबेन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे जिसमें छोटे किसानों, खवातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हफ्ते के दिन ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जोजिला टनल प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द एक हकीकत बनने वाला है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शहर

0: योजनाओं के वजीर नितिन गडकरी ने इस अहम प्रोजेक्ट के हतमी मरहले का आगाज किया और इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया, जिसके नतीजे में कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाले रास्ते को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नितिन गडकरी ने कहा कि इस सुरंग की बदौलत श्रीनगर और लेह का रास्ता 12 महीने दस्तयाब होगा, जिससे सैर व सियाहत, नकल व हरकत और मकामी मईशत को तकवीयत मिलेगी। जोजिला टनल मुकम्मल होने के बाद एशिया में अपनी नौइयत का यह सबसे बड़ा दोतरफा रास्ता होगा। जम्मू कश्मीर के आला हुकाम ने आइंदा शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा को खुशउसलूबी और कामयाबी से कराने के इंतजाम का जायजा लिया है। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार और जम्मू डिवीजन जोन के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भीमसेन तूती ने सिक्योरिटी बंदोबस्त और इंतजाम का जायजा लेने की गरज से कल रामबन जिले का दौरा किया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ सिफारती राब्तों पर पूरी पुरुमीद का इजहार किया है कि वाशिंगटन एक अहम कामयाबी हासिल करने के करीब है। एक इंटरव्यू में जनाब ट्रंप ने कहा कि वो एक बहुत पायदार, ताकतवर और बहुत अच्छे समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की तरफ से ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी बमबारी के मुकाबले में ज्यादा मौसर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरहद पर हालिया मिजाइल हमलों के बावजूद बाहमी बातचीत अब भी आगे बढ़ रही है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजह कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता, नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही है। उन्होंने यह वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने मगरबी एशिया पर में फिर से कशीदगी बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने फरीकैन पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर हमले बंद करें, ज्यादा से ज्यादा जब्त तहम्मुल से काम लें और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे हालात मजीद खराब हो जाएं। अमरीका की विफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। विफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 37 हो गई है, जबकि 500 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। कांगो के मशरकी हिस्से में हुकाम की जानिब से इबोला फैलने के ऐलान के एक महीने से भी कम अरसे में 100 से ज्यादा अफराद की जानें तलफ हो गई। इबोला की जिस बीमारी में ये अमवात हुई है वो एक नायाब वायरस बुर्दी दोगियों की वजह से हुई है और इसका जाहिर वायरस की तरह न तो कोई इलाज है और न इसके लिए कोई मंजूरशुदा टीका है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में PMSMA के 10 बरस निगहदाश की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब निफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में यह मुहिम चलाई जा रही है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल के दौरान नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाया है। भारत ने अक़्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट जोजिला टनल में पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द हकीकत बनने वाला है। इसी के साथ उर्दू का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे जाते हैं, हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ।

नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन की ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत दे विच आओ सुनदे हां सराइकी प्रोग्राम झोक माही दी।

राम राम जी। सारे भेण भिरावां को मेरे नमस्कार सत श्री अकाल। आज दे प्रोग्राम विच आपां गेम के आए हां एक कहानी ते एक लोकगीत। कहानी सुने सन साको ललिता मणि जी ते दीपाली छाबड़ा जी सुने सन साको आज सिराइकी दे बहु प्रसिद्ध लोकगीत। आओ जी प्रोग्राम दी शुरुआत करेंदे हां ललिता मणि जी को एक कहानी नाल। आज मैं आप सब दे सामने एक कहानी पेश करेंदी पई हां जिंदा शीर्षक है एक दूजे दे पूरक दू पात। व्हील चेयर ते बुला के सिस्टर मीना ने बुढ़ी मां को प्यार नाल डिठा। मुंह तू वगदी लार को पूंजिया ते बहु कीमती शाल पा दित्ती। आखना ते चांदी हई कि अपना ध्यान रखना मां पर आख ना सगी। अखा विच अथरू भर आए गला रुंध गया। मैं कहानी शुरू ते कर दित्ती है पर उन्दे किरदारा नाल ते तो आपको मिलवाया ही नहीं। मेरी कहानी मेन दो पात्रा ते ही लिखी गई है। मेरी कहानी दा शीर्षक ही है हिक दूजे दे पूरक दो पात्र। हिक पात्र है सिस्टर मीना जो अनाथ है ते बहु अच्छी नर्स है। पूरे हस्पताल दी चेहती है हर वेले सेवा विच लगी रहंदी है। ते दूजी पात्र है बुढ़ी अम्मा श्रीमती शांति देवी स्वर्गीय सेठ आत्मा राम जी दी कुआर जो ही शहर दे जाने माने रही सन। पात्रा नाल ते तुसा मिल गिदे पर इत्थां मैं इन गाल दा भी जिक्र जरूरी समझनी आ कि मेको ए कहानी लिखण दी प्रेरणा किथो मिली। मेरी धी बहु बीमार आंदी है। असा 11 साल हस्पताल दे बहु चक्कर कट्टे। बहु तरह दे डॉक्टर सिस्टर स्टाफ दूजे पेशेंट हुना दे रिश्तेदार बहु तरह दे लोगा नाल मिलना मिलावना थे पर हिक दू सिस्टर इयो जी मिलन जिना को मेरा सलाम है। उना दे सेवा दे जज्बे को देख के दिल खुश थी वेंदा है। बस इयो जी ही है मेरी कहानी दी सिस्टर मीना सेवा भाव नाल अपने काम करेंदे रावणा ते मरीजा को अपना बना घिनना। चलो हुन कहानी को अगू वधेंदे आ। बुढ़ी मां शांति देवी ने सिस्टर मीना को इवें देखिया ते उको आख्या बालड़ी मन ना भर। आखदे आखदे अपनी आवाज भी रुंद गई। कंबदे हत्था नाल बहु बहु आशीषा दित्तिया। खुश रहो जुग जुग जीवो तू मेरा बहु ख्याल रखे। पता नहीं केड़े जन्म दा रिश्ता है जो तू निभा दित्ते। जिंदा रही ता वल मिलसू नहीं ते कदे तू ही आवन जी मिलन। ते को पता ते है मैं किथा वेंदी पई हां। ठड्डी सा भर के खेंदी है पता नहीं क्यों जिंदा हां। रब भी नहीं सड़ेंदा अपने कोल। बंदा ही बंदे दा सहारा है बाकी सब झूठ है। वल कुछ सोचण लग पई वल ठंडी सा भरेंदे हो अखेंदी है मीना बालड़ी एक मिनट बाओ मेरे कोल। ए कुर्सी घील ते ध्यान नाल सुन मेरी गाल। मेरे कोल हुण इक्को ही मेरी आखरी निशानी है जो मैं अपनी धीआं कोलू लुका रखी है। हुण ओ मेरे कई काम दी कोई नी ना ही मैं उको हुण संभालन जोगी बच्ची आ। ओ मैं ते को देवना चाहंदी आ। ए मेरी कुर्ती दे अंदर वाले पासे एक हिस्सा है उंदे अंदर देख क्या है। मीना ने बुढ़ी मां दे खीसे विचों एक पोटली जो बहु सोहनी है गुत्थी दी तरह उको मां दे हत्था ते रख दिता। मां ने गुत्थी वापस मीना को दित्ती ते आख्या हिकू खोल।

मेडे छल्लेया आह मेडे छल्लेया छल्ला मेडे हथ दा पुत्तर मेरी सस दा नहीं ओ मेडे वस दा ते ओ मेडे छल्लेया छल्ला मेडे हथ दा पुत्तर मेरी सस दा नहीं ओ मेडे वस दा ते ओ मेडे छल्लेया आह मेडे छल्लेया वावा मेडे छल्लेया छल्ला छल्लम छल्लेया दाना पानी रल्लेया गिया गिया सावरे ते नुआ चोखा मल्लेया ओ मेडे छल्लेया वावा मेडे छल्लेया छल्ला मेडी बादा जवाई मेडी मादा नहीं ओ मेरे वस दाते ओ मेडे छल्लेया छल्ला मेडी बादा जवाई मेडी मादा नहीं ओ मेरे वस दाते ओ मेडे छल्लेया आह मेडे छल्लेया वावा मेडे छल्लेया छल्ला छल्लम छल्लेया दाना पानी रल्लेया गिया गिया सावरे ते नुआ चोखा मल्लेया ओ मेडे छल्लेया मेडे छल्लेया वावा मेडे छल्लेया छल्ला पया टोकरी पया गया नौकरी पिछो जंपई छोकरी ओ मेडे छल्लेया आ मेडे छल्लेया छल्ला पे टोकरी पाए गया नौकरी पिछो जंपई छोकरी ते ओ मेडे छल्लेया आ मेडे छल्लेया वावा मेडे छल्लेया छल्ला छल्लम छल्लेया दाना पानी रल्लेया गिया गिया सावरे ते नुआ चोखा मल्लेया ओ मेडे छल्लेया आहा मेडे छल्लेया वावा मेडे छल्लेया। हुन अगला श्लोक गीत एह एक प्यार करन आला जोड़ा है ते छुअर आदि ए छुअर को हुन मेडे नाल परनीज वन काज कर गिन काज तो पहला बहु गोम फिर गिदे बहु वादे कर गिदेन हुन अपने वादे पूरे कर तब मेको अपने चौकी दीराणी बनाचा मेको मुल्तानी कंगन पवाचा मुल्तानी कंगन पवा देवे पूरे कर दे वादे मुल्तानी कंगन पवा देवे पूरे कर दे वादे ए नरम तना झुक बावा ए नरम तना झुक बावा तेकु देखन ते छनकावा तेकु देखन ते छनकावा मेकु जल्दी जल्दी ला देवे मुल्तानी कंगन मुल्तानी कंगन पवा देवे पूरे कर दे वादे मुल्तानी कंगन पवा देवे पूरे कर दे वादे तेरे मेरे प्यार दा कोई भी शरीक नहीं तेरे मेरे प्यार दा कोई भी शरीक नहीं दो दिल एक थी गन किसे दी उड़ीक नहीं हाय दो दिल एक थी गन किसे दी उड़ीक नहीं ए मिठिया मिठिया छावा ए मिठिया मिठिया छावा तेकु रज रज से एक पुचावन तेकु रज रज से एक पुचावन आज मुक दल गल मुका दे वे मुल्तानी कंगन मुल्तानी कंगन पवा देवे पूरे कर दे वादे मुल्तानी कंगन पवा देवे पूरे कर दे वादे ए नरम तिना झुक बावा ए नरम तिना झुक बावा तेकु देखन ते छनकावा तेकु देखन ते छनकावा मेकु जल्दी ला देवे मुल्तानी कंगन मुल्तानी कंगन पवा देवे पूरे कर दे वादे मुल्तानी कंगन पवा देवे पूरे कर दे वादे दुनिया ते रचे तेरे प्यार दे सवाल वे दुनिया ते रचे तेरे प्यार दे सवाल वे साकु कोई वख करे किंदिए मजाल वे साकु कोई वख करे किंदिए मजाल वे ए जुल्फां बन दिए घटावा
ਇਹ ਜੁਲਫਾਂ ਬੰਨਦੀਆਂ ਗਟਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਖੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਖੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਾਡੇ ਵੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੰਗਣ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੰਗਣ ਪਵਾਡੇ ਵੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਡੇ ਵਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੰਗਣ ਪਵਾਡੇ ਵੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਡੇ ਵਾਡੇ ਇਹ ਨਰਮ ਤੇ ਨਾਜੁਕ ਬਾਵਾ ਇਹ ਨਰਮ ਤੇ ਨਾਜੁਕ ਬਾਵਾ ਤੇ ਕੋ ਦੇਖਣ ਤੇ ਚਮਕਾਵਾ ਤੇ ਕੋ ਦੇਖਣ ਤੇ ਚਮਕਾਵਾ ਤੇ ਕੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆਡੇ ਵੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੰਗਣ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੰਗਣ ਪਵਾਡੇ ਵੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਡੇ ਵਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੰਗਣ ਪਵਾਡੇ ਵੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਡੇ ਵਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਵਧਦੂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿਚੋਂ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਏ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥੀ ਵੇਂਦੀ ਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕੂ ਮਨਾਵਣ ਕੀਤੇ ਖਾਵਣ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਦੋ ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸ਼ਾਵਾ ਸਾਕੂ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸਾਕੂ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਲਾਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਬੜੀ

बड़ी स्वादी चाहोवे, रात को लड़ी मेरे नल सस, रात को लड़ी मेरे नल सस, सवेरे मेको चानल मिले आ रस। शावा साकू चाहोवे, बड़ी स्वादी चाहोवे, लाचिया वाली चाहोवे, बड़ी स्वादी चाहोवे, रात लड़िया मेरे नल सोरा, रात को लड़िया मेरे नल सोरा, सवेरे मेकू चानल मिले पकोड़ा। शावा साकू चाहोवे, बड़ी सिवादी चाहोवे, लाजिया वाली चाहोवे, बड़ी सिवादी चाहोवे, रात को लड़िया मेरे नल जेठ, रात लड़िया मेरे नल जेठ, सवेरे मेकू चानल मिले केक। शावा साकू चाहोवे, बड़ी सिवादी चाहोवे, लाचिया वाली चाहोवे, बड़ी सिवादी चाहोवे, रात को लड़ी मेरे नल नंद, रात को लड़ी मेरे नल नंद, सवेरे मेको चानल मिले बंद। शावा साकू चाहोवे, बड़ी सिवादी चाहोवे, लाचिया वाली चाहोवे, बड़ी सिवादी चाहोवे, ओ दीपू दिमा चा पिला, ओ सुमित दिमा चा पिला, ओ पुनीत दिमा चा पिला। शावा साकू चाहोवे, बड़ी सिवादी चाहोवे, लाचिया वाली चाहोवे, बड़ी सिवादी चाहोवे। आज वास्ते इतना ही, आशा करेंगे मेरी छोटी जी गुजारिश, छोटी जी कोशिश तो आपको सिलेकी नाल जोड़न दी पसंद आई हो सी। हम मेको इजाजत दो, दोबारा जल्दी मुलाकात थी से, तुसा दे अगो हाजिर थी सा, थोड़ा अगो कुछ नवा गेन के आवन दी कोशिश करे सा। राम राम जी, वाहेगुरु जी।

बलारी और बलारी नहीं, कटारा कंधे वाला सी।

हर राम प्यार मेरे।

निखिल परिवार। अगला गीत सरदूल सिकंदर दी आवाज दे विच सुनना चाहते ने। मजराना दे तहत फरमाइश है गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो हरदेव मिक्का बलविंदर बिरक जैतंग विरक ते मिक्का विरक। मंडी हरजी राम मलोड तो महेश गर्ग सुषमा गर्ग जशन गर्ग ते इना दा पूरा परिवार। पिंड जंडवाला चरत सिंह जगनीश मणिकेत अमन सुनेग सुमन ते ममता। श्री मुक्तसर साहब तो बब्बू सिंह दीमान बरजिंदर कौर दीमान रवनीत निशु ते भुपिंदर। कनवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुचो कैंचिया तो प्रेम सिंह चौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर सिमरन एकम दमन ते अभिजोत। पंचकूला सैक्टर 9 तो आशु चुग सलोनी चुग गोविंद चुग टोनी लव ते इना दा पूरा चुग परिवार। मेस गेट नाबा तो सोमदत्त कैरव ज्योति राणी ते गुरमन्नत। लो जी इन्हां सारां दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे आं सरदूल सिकंदर दी आवाज़ च एह गीत।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने

0: मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अवैध और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।
4: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहनों भाइयों को राम राम। तो सरिता बहन फिर दोबारा से हाजिर है हम लोग और कार्यक्रम हमारा वही और विषय भी वही रहेगा, गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रखरखाव, जिसमें हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, अध्यक्ष पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली पूसा।
5: जी हाँ, डॉक्टर ऋतु जैन प्रधान वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग IARI पूसा नई दिल्ली से, और कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं नीलम मदान।
4: और हमारे जो फोन नंबर है एक बार हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं, अपने किसान भाइयों को बता देते हैं।
5: विशेषज्ञ से सीधे बातचीत करने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा जो फोन नंबर है वो है 2342-1082 और जो दूसरा नंबर है वो है 2342-1080 और जी हाँ दिल्ली का पिन कोड है

0: शून्य एक एक। तो भाई आप हमें तुरंत फोन कर सकते हैं और अपने जो भी फूलों से संबंधित, बागवानी से संबंधित सवाल है वो अपने हमारे जो आए हुए आमंत्रित विशेषज्ञ हैं उनसे आप पूछ सकते हैं।
1: चलते अब तो चलते अपने अपने विशेषज्ञों के पास और करते हैं आपने जो समस्या है उनका समाधान।
2: डॉक्टर मार्कंडे, डॉक्टर ऋतु जैन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चल रहा है हमारा फोन इन कार्यक्रम, गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रखरखाव कैसे करें। हमने चर्चा की कि कैसे हम रजनीगंधा में हमने सस्य क्रियाएं क्या करनी है और हमने गुलदाउदी के लिए क्या इस समय प्रवर्धन कार्य करना है ताकि उनका अच्छा प्रवर्धन हो, कैसे खेत की तैयारी करनी है और कैसे फूलों का रखरखाव करना है। और हमने कहा था कि अब हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे बगीचे हैं उनमें हमें इस समय क्या काम करने हैं डॉक्टर मार्कंडे ताकि स्वस्थ रहें वो।
3: जी हर वर्ष हम लोग 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
2: बिल्कुल।
3: और उसमें हम लोगों का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक जो है कि पौधों को लगाएं और जिससे हमारा वातावरण जो है कि शुद्ध बना रहे।
2: जी।
3: और इसी के साथ साथ हम लोगों का जिम्मेदारी का ये बोध होता है कि जो हमारे वर्तमान में पौधे हैं उनको हम रख रखाव किस तरीके से अच्छा करें कि जिससे कि उनकी बढ़वार जो है अच्छी हो। जी इसके
2: जी जी बिल्कुल हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। जी हेलो।
4: जी मैम नमस्ते।
2: नमस्ते, कहाँ से बोल रही हो, क्या नाम है आपका?
4: जी मेरा नाम कृष्णा है, मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ मैम।
2: हाँ कृष्णा जी पूछिए।
4: मैम मेरा ये पूछना है कि जो हम पेड़ पौधे लाते हैं मार्केट से गमलों में लगाते हैं तो धूप में, गर्मियों में लू पड़ती है, गर्मियों में धूप है, उससे बचाने के लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या उपाय करें और मतलब और गर्मियों में जो पेड़ों पर फूल है वो कम आते हैं थोड़ा बहुत आगे मतलब ऐसी चिपक जाती हैं उनकी कलियां, उनके लिए आप मतलब वो बताएं।
2: जी जी कृष्णा जी देखिए आपने बात की कि जो आप मार्केट से पौधे खरीदते हैं वो गर्मियों में झुलस जाते हैं और उनके अच्छे जो है अच्छे दिखाई नहीं देते। तो अगर हम बात करें गर्मियों के पौधों की या हम कोई भी पौधों की बात करें तो खासकर मुझे लगता है आप गमले वाले पौधों की बात कर रही हैं। तो इस समय गमले वाले पौधों को संरक्षित रखना एक बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हम किस प्रकार का गमला इस्तेमाल कर रहे हैं, गमले को हमने किस स्थान पर रखा है, हम कितना पानी दे रहे हैं, किस समय पानी दे रहे हैं और उस जगह पर कितनी धूप आती है, कितनी छाया आती है, ये सब चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं गमलों के प्रबंधन के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो अगर हम मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल करें तो हमारे पौधे जो हैं वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं क्योंकि अगर हम प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है तापमान बढ़ रहा है तो प्लास्टिक के गमलों में जो तापमान है वो बढ़ जाता है जिससे कि मिट्टी जो है गर्म हो जाती है, उसकी जो पौधे की जड़ें होती हैं वो भी उससे प्रभावित होती हैं। दूसरी बात ये है कि आप पौधों को सिंचाई जो है सुबह और शाम के समय करें, दिन के वक्त पौधों को सिंचाई ना करें क्योंकि दिन में अगर सिंचाई करेंगे तो आपका पौधा ज्यादा से ज्यादा झुलस जाएगा। तीसरी बात, पौधे जो गमले में लगा रखे हैं उसमें निराई गुड़ाई समय समय पर करते रहें ताकि उसमें जितने भी खरपतवार हैं वो समय समय पर अगर आप निकालते रहेंगे तो उनकी बढ़वार अच्छी होगी और जो पौधे को पोषण मिलना है वो खरपतवार नहीं खाएगा। चौथी बात यह है कि आप पौधे को जब भी लगाते हैं उसमें हम गोबर की गली सड़ी खाद, पूरे अच्छे से जो गली हुई सड़ी हुई खाद हो उसको मिलाकर लगाएंगे तो आपका पौधा जो है वो बहुत ही अच्छा चलेगा। और साथ ही साथ एक और चीज कि हो सके तो आप पौधों को गर्मियों में छाया वाले स्थान पर रखिए और एक साल अगर आपके पौधे को आपका पौधा चल गया है, एक थोड़ी आवाज कम कर लीजिए मुझे थोड़ा बताने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जो पौधे हैं आपके तो उनको आप हर साल जो है या 2 साल के बाद गमले को परिवर्तित कर लेंगे तो आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। कई बार क्या होता है कि हमने गमले में जो पौधा लगाया है और उसको हमने उसी 2-3 साल तक उसी गमले में रहेगा तो वो उसकी जड़ें जो है वो मिट्टी को जकड़ लेती हैं और जिसकी वजह से पौधे की बढ़वार नहीं होती तो उसको बड़े साइज के गमले में लगाना पड़ता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छी तरह से चलेंगे और बहुत सुंदर दिखेंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। जी थैंक यू, मैं कहूंगी शुक्रिया आपका कृष्णा जी क्योंकि आपने जो सवाल पूछा ना मुझे लगता है बहुत डॉक्टर ऋतु जैन ने इतने विस्तृत

0: तरीके से बताया है कि अब किसी को भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली अपने गमलों का रख रखाव करने में।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, आपका भी धन्यवाद। और अब हम जानकारी ले रहे थे कि अपने बगीचों का रख रखाव कैसे करें।
2: जी तो मैं बता रहा था कि जैसे बगीचे में ये देखेंगे तो कई तरह के जो है कि पौधे आपको दिखेंगे, जैसे कुछ हो सकते हैं कि ट्री हो, कुछ क्लाइंबर्स होंगे, कुछ श्रब्स होंगे, कुछ हेज होंगे, कुछ बहुत पुराने पौधे होंगे, कुछ नए पौधे होंगे। ये देखा गया है कि जिन पौधों के जड़ों का विकास कम हुआ रहता है उनको जो है कि पानी की जो है कि आवश्यकता गर्मी में अपेक्षाकृत जो पौधे ओल्ड एज के होते हैं उनसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो डीप रूटेड होते नहीं है तो उनमें जो है कि ऊपरी सतह पे पानी नहीं रहता है तो उसमें खींचने की शक्ति नहीं होती है। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पानी का प्रबंधन जितना आपके पास हो पा रहा है तो यंग प्लांट को जो नए पौधे रोपित हैं उनको सबसे पहले दीजिए, और जो बिल्कुल इस्टेब्लिश प्लांट हैं जिनकी ये क्षमता है कि जमीन से पानी को खींच सकते हैं, उससे सर्वाइव कर सकते हैं, उनको जो है कि पानी जो है कि सबसे बाद में दीजिए। दूसरी चीज है कि ये देखा गया है कि गर्मी में जब नमी कम होती है तो कुछ पौधों के ऊपर टर्माइट चढ़ जाती है, दीमक चढ़ जाती है, तनों के ऊपर दीमक आ जाती है और वो धीरे धीरे बार्क को खा जाती है और बाद में पौधा जाकर के सूख जाता है
0: जी।
2: तो हमें ये करना चाहिए कि टर्माइट को यदि मारना है तो उसके लिए ऑर्गेनिक जो हमारे इंसेक्टिसाइड है जैसे नीम बेस, नीमेगान के नाम से इंसेक्टिसाइड आता है, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके यदि हम छिड़काव तने के ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा जड़ के आसपास कर देते हैं उससे जो है कि टर्माइट मर जाती है और वहां पे नमी यदि बना देते हैं तो जो टर्माइट जमीन की ऊपरी सतह पे आई रहती है वो नीचे की तरफ चली जाती है।
0: बिल्कुल, हमसे श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: जी।
1: मेरा एक सवाल था सर से। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं गुलाब के फूल लगाती हूँ छत पे तो उनके जड़े पता नहीं वो छोटे से जड़े क्यों सूख जाती है। मैं कई बार उसमें पौधे में खाद भी डालती हूँ, सभी सभी प्रकार के जो भी खाद आते हैं उसको इस्तेमाल करती हूँ और दरअसल उसको उसमें पानी वगैरह भी डालती हूँ फिर भी वो पनपते नहीं, इसकी क्या वजह हो सकती है।
0: आपने फूल का नाम तो बताया, अपना नाम बताया, अपना
1: नाम। अच्छा माफ कीजिएगा, मेरा नाम संगीता है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
0: जी संगीता,
1: मैं काफी समय से ये प्रोग्राम सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का वार्तालाप बहुत ही अच्छा है और बड़ा ही एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम भी है
0: जी।
1: तो बस उनसे मैं सर से ये जानना चाहती थी कि कृपया मुझे बताने की चेष्टा करें कि ये वजह क्या है।
2: संगीता जी, जैसे गुलाब के जो लगाने का टाइम है ये दिल्ली के उसमें देखें तो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो सबसे अच्छा माना जाता है टेम्परेचर को देखते हुए। तो जब आप गमले में गुलाब को लगाती हैं तो सबसे पहले ये देखना कि गमले का आकार कम से कम 10 इंची का आकार होना चाहिए, मिट्टी का गमला होना चाहिए और उसमें जो आप मीडिया डालते हैं जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद, मिट्टी और बालू, उसको हम लोग सुझाव देते हैं कि एक भाग गोबर की सड़ी खाद हो, एक भाग मिट्टी हो, एक भाग बालू हो, ताकि यदि ऐसा मिक्सचर यदि आप बनाएंगी तो लगभग ये 3 से 4 साल तक वो गुलाब का पौधा 10 इंची के गमले में जो है बढ़वार ले सकता है।
1: दरअसल सर मेरे साथ परेशानी क्या है कि मैं उसमें रेडीमेड खाद डालती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि समय के साथ साथ मैं उसको जब मौका मिलता पानी डालती हूँ और एक अजीब सी बात होती है कि उसमें कलियां आती हैं और वो कलियां पूरी तरह से फूल के प्रकार में नहीं बदल परिवर्तित होती, तो मुझे लगता है कहीं पे कुछ ना कुछ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से आप मिक्सचर बनाइए और नीचे जहाँ पे ड्रेनेज है वहाँ पे कंकड़ पत्थर रख दीजिए, इसको भर करके अक्टूबर के महीने में आप लगाइए, देखिएगा कि 1 साल के बाद इस पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और इसमें पुष्पन भी अच्छा होगा, इस तरह से ध्यान आप रखिए जो है।
0: बिल्कुल सही बात है। और हम चर्चा कर रहे थे फिर से कि कैसे बगीचों का रख रखाव रखना और जैसे मॉनसून हमारी आस और विश्वास है उसका इंतजार कर रहे हैं।
2: हाँ, मैं बता रहा था कि जैसे दीमक का जब प्रकोप होता है तो उसका निदान के लिए मैं बताया कि जैसे नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड नीमेगान 3 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करते हैं, तने पे भी करते हैं, मिट्टी के जो तने के आसपास की मिट्टी है उसमें भी डाल देते हैं, नमी बना के रखते हैं, तो इससे जो है काफी बचाव हो जाता है।
0: हाँ,
2: इसी के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो लोग बाल बालकनी में अपनी बागवानी को किए हुए हैं, तो इस टाइम देखा गया है कि पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो गमलों के नीचे जो है एक प्लास्टिक की ट्रे आती है जो है, यदि उसमें भी हम पानी को भर देते हैं तो जो पेड़ों की जो आवश्यकता होती है उसको तो लेता ही है, इसी के साथ उसके वातावरण में नमी बनी रहती है।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे से श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या है?
3: मेरा नाम नीरज कुमार, जिला ग्रंथ से बात कर रही
0: हूँ। हाँ नीरज जी, पूछेगा।
3: मैं बोल रहा हूँ ज्यादा फोन लगाना चाहते हैं।
0: हाँ,
3: मैं खुशियों के लिए जो का दफा जो है उसे पूरे कर।
0: आपकी आवाज हमें समझ नहीं आई है, इतना ही समझ आया कि आप फूल लगाना चाहते हैं, खुशबू वाले जी। अच्छा, सुंदर भी लगे और खुशबूदार भी हो।
2: नीरज जी, ये तो नहीं पता लगा आप कहाँ से बोल रहे हैं।
3: बुलंदशहर
2: से। तो आप खुशबूदार ये फूल लगाना है, तो अभी जैसे मानसून आ जाता है, किसी भी नर्सरी से आप बेला का पौधा लेकर के लगा सकते हैं, हरसिंगार का जो प्लांट होता है उसको लेकर के लगा सकते हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में आप जो देसी गुलाब है उसका आप लेकर के पौधे लेकर के आप लगा सकते हैं, और जो आने वाला मार्च होगा, मार्च के महीने में रजनीगंधा का जो पौधा है उसके ट्यूबर्स मिलेंगे, उसको भी लेकर के लगा सकते हैं। तो ये चार पांच तरह की चीजें आपको बताया है, यदि इनको लगाएंगे तो आपके बाग बगीचे के अंदर जो है सुगंधित पेरेनियल, जिसको हम बहुवर्षी प्लांट बोलते हैं, ये आपके बाग बगीचे में जो है कि इकट्ठे हो जाएंगे और खुशबू जरूर फैलाएंगे।
0: जी जी, धन्यवाद आपका। और हम बात कर रहे थे कि बगीचों में हमने ध्यान रखना है कि दीमक ना लगे, और उसके लिए हमें जो नीम वो है जन्ने वो है, बना हुआ है पेस्टिसाइड, उसका इस्तेमाल करना है। और उसके अलावा बारिश की हम बात कर रहे थे, आने वाली इंतजार है, उसके लिए हमें क्या करना है?
2: जैसे अभी ये तो हो गया कि जो हमारे ऑलरेडी प्लांट लगे हुए हैं उनके लिए ये रख रखाव की बात हो रही थी
0: जी।
2: अभी है कि कुछ किसान भाई बागवानी को जो है कि नई बागवानी अपना लगाना चाहते हैं, तो हम लोग ये सुझाव देते हैं कि जून के महीने में आप अपने मिट्टी के जो है कि मिट्टी में जहां पे भी खेत की आपने तैयारी की है वहां पे गड्ढे जो है आप खोद दें। गड्ढे का आकार इस बात पे निर्भर करता है कि किस तरह के पौधे को आप लगाना चाहते हैं। तो जनरली ये सुझाव दिया जाता है कि उसका एक फीट जो है कि चौड़ाई हो, एक फीट गहराई हो, और इसी आकार के आप गड्ढे लगाएं, और जिस तरीके से बताया गया है कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, उसी अनुसार आप गड्ढे को जो है कि बना करके मिट्टी को जो है ऊपर की तरफ जो है कि खोल दें जो है। कुछ दिनों के लिए जो है कि मिट्टी जो है कि खुली रहती है, तो उससे ये होता है कि जो हानिकारक जीवाणु और कवक होते हैं वो बढ़ते हुए तापमान में जो है कि मर जाते हैं, और फिर उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और जो रासायनिक उर्वरक आपके मिट्टी की जांच के बाद जो है कि जो निर्धारित मात्रा दी गई है उसको मिक्स करके मानसून आने से पहले जो है उसको फिर हम भर देते हैं, और फिर जो है जैसे पहला मानसून आ जाता है और तापमान जो है कि मिट्टी का जो है कि कम हो जाता है, फिर ये सुझाव दिया जाता है कि आप प्राइवेट नर्सरी या सरकारी नर्सरी से जो है उस पौधे को ले आइए, लगाइए और उसका थाला बनाइए और उसको सिंचाई कीजिए। तो उसमें देखा गया है कि ऐसा यदि करते हैं तो पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है और उनका मृत्यु दर जो है कि काफी कम हो जाता है जो है।
0: हाँ, और हम बताना चाहेंगे कि चल रहा है हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम, और आज का विषय है कि गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रख रखाव कैसे करें। स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल जो आपके मन में आ रहा है कि कैसे बगीचों की रखरखाव करें, फूलों का रखरखाव करें। और नंबर है हमारा 2342-1082, दूसरी फोन लाइन है 2342-1080, और एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या है?
3: अशोक कुमार शर्मा, गुटावली खुर्द बुलंदशहर।
0: आपने अपना रेडियो चलाया हुआ है साथ में?
3: रेडियो बंद कर दिया जी।
0: हाँ आप बताएं।
3: मेरा दूसरा क्वेश्चन ये भी, क्या इस टाइम हम गेंदा और गुलाब दोबारा

0: अच्छा जी,
1: कौन सा लगाना चाहता?
0: ठीक है जी।
2: यदि अशोक जी आपको गेंदा लगाना है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने 3 किस्मों को निकाला है, जिसमें पूसा दीप, पूसा पर, पूसा उत्सव। ये जुलाई के महीने में इसकी नर्सरी पड़ेगी जो है, और ये लगभग जो है कि मान के चलिए कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई से, जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर के अगस्त के पहले सप्ताह में इसका ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगा। और ये दिवाली के टाइम पे, ये फेस्टिवल जो होता है दिवाली, उस टाइम पे जो है कि इसमें पुष्पन आता है और उसके फूल की बड़ी अच्छी कीमत जो है कि अपने घरेलू पुष्प बाजार में मिलती है। रही बात जो दूसरा जो गुलाब है, गुलाब को भी आप लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए, हम लोगों के यहाँ रोज शरबत है, पूसा अल्पना है, रोजा चाइनेंसिस है, इनके पौधे जो है कि 15 अक्टूबर के बाद मिलना शुरू होंगे। 15 अक्टूबर से लेकर के और लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक इस पौधे को ले सकते हैं और इसको आप लगा सकते हैं। तो ये 3 किस्में जो है कि गेंदा में है, और 2 किस्में और 1 स्पेसीज जो है कि गुलाब के अंदर है, जो आपको व्यावसायिक खेती के लिए जो है कि चुन सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जो भी हमारी मांग है, फूलों की मांग है, वो लगातार बढ़ रही है। और खुशी की बात यह है कि जो रकबा है जिसमें खेती की जा रही है वो भी प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, फूल करने वाले भी आगे आ रहे हैं। और हमारे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारत के फूलों की मांग है, निर्यात भी बढ़ रहा है। तो अब जरूरी ये है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस व्यवसाय में आए, और उसके लिए सबसे जरूरी, डॉक्टर मार्कंडे आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर ऋतुजन आप बताएं पहले कि क्या है जरूरी, वो कुंजी क्या है?
3: जी, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि कमर्शियल तौर पे जो,
0: मैं माफी चाहती हूँ, अभी मुझे लगता है ये सीक्रेट आपको अभी नहीं बताना है, तो हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते मैडम जी।
0: जी नमस्कार, नाम बताएं।
1: मैं योगराज बोल रहा हूँ गुड़गांव से।
0: जी जी बताएं योगराज साहब।
1: एक तो जैसे जामुन के पेड़ में अब की बात समझ नहीं आ रहा है।
0: अच्छा जी,
1: और एक दूसरा सवाल है मेरा, जैसे चंद्रमुखी का जो फूल होता है
0: जी,
1: ये जैसे हरिद्वार के आसपास लगता है, क्या हम यहाँ लगा सकते हैं इसको?
2: योगराज जी, पहला आपका सवाल है कि जामुन के पौधे में इस बार फल नहीं लगा है, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के अंदर एक फ्रूट डिपार्टमेंट ही है। तो फ्रूट डिपार्टमेंट में यदि एक बार आप संपर्क कर लें, और वहाँ पे डॉक्टर ओपी अवस्थी जी जो है उस विभाग के अध्यक्ष हैं, तो उसका हो सकता है कि समाधान मिले कि भविष्य में जो है कि उसमें फलत हो। और जो चंद्रमुखी का पौधा है, हमें लग रहा है कि आप रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं जो है,
1: क्या जी?
2: रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं क्या?
1: चंद्रमुखी का ये फूल होता है जो पेड़ लगता है, ये हरिद्वार में के आसपास जैसे क्षेत्र में कुछ जगह पे होता है, जैसे इसमें कुछ ऐसे भी बताया गया आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है।
2: देखिए, जैसे आप यदि वहाँ के वातावरण में, यदि मान लीजिए आप मंसूरी के तरफ की बात करते हैं जहाँ पे तापमान थोड़ा कम होता है, यदि उसको यहाँ पे ले आकर के लगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें पुष्पन ना हो, लेकिन पर्टिकुलर यदि हरिद्वार के आसपास हो रहा है तो 2-4 पौधे ले आकर के ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको जो है।
1: पूसा में इसका बीज मिल जाएगा?
2: नहीं, चंद्रमुखी का तो नहीं मिल पाएगा जो है।
0: जी
2: जी,
0: धन्यवाद आपका। और डॉक्टर ऋतु जैन, हम वो रहस्य, वो कुंजी जानना चाह रहे हैं जो कृषि को, पुष्प कृषि को व्यावसायिक रूप से करने के लिए जरूरी है।
3: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है नीलम जी, क्योंकि व्यावसायिक रूप से जब आप फ्लोरिकल्चर करने जा रहे हैं, फूलों की खेती करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छा फूल चाहिए जिसकी मार्केट बहुत अच्छी हो, और मार्केट अच्छी होने के साथ साथ उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छी हो। तो सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्लांटिंग मटेरियल अच्छा हो। जो भी हम क्रॉप लगाएं उसकी हम अच्छी वैरायटी लगाएं, अच्छा उसका गुणवत्ता वाला प्लांटिंग मटेरियल हो, किसी विश्वसनीय जगह से हम वो बहुत खरीदें जिसे भी हमने लगाने। दूसरी बात, कभी भी हमें फूलों की खेती करनी है या कोई भी खेती करनी है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आप प्रशिक्षण जरूर लें। तो एक प्रशिक्षण जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप अच्छी फूलों की खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि

0: होता है और प्रशिक्षण के माध्यम से जैसे डॉक्टर रितु ने बताया किस फसल का चुनाव करना है, किस वैरायटी का चुनाव करना है, खेती करने का क्या तरीका है, प्लांट प्रोटेक्शन क्या है, पैकेजिंग क्या है, मार्केट, ये सारी जानकारी वहां मिलती है और ये जो है कि सभी युवा के लिए काफी लाभकारी रहेगा।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका डॉक्टर रितु जैन, डॉक्टर मार्कंडे, वाकई ये जानकारी उपयोगी रहेगी और हम चाहेंगे कि जो हमारे युवा हैं वो इससे जुड़े और प्रशिक्षण के साथ जुड़े और इस समय हमें अपने बगीचों का, अपने फूलों का पूरा रखना है रखरखाव।
2: तो इसी के साथ आज का हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रखरखाव यहीं समाप्त होता है और आशा है कि हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी।
3: कार्यक्रम में जो जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर मार्कंडे सिंह, अध्यक्ष पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, वहीं दूसरे विशेषज्ञ थे डॉक्टर रितु जैन, प्रधान वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी हमारी वरिष्ठ साथी नेहा मदान।
2: जी हाँ, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सभी सुनने वाले भाई बहनों को राम राम।
3: कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे नरेश, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे
2: तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदन लाल।
3: तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का, सभी किसान बहनों और भाइयों को राम राम
2: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सात बजकर 30 मिनट होने को है, अब सुनिए गजल।

गजलों के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। कहते हैं कि गजल और शामी गजल फर्क है। क्या फर्क है? क्योंकि वक्त ऐसा होता है जब आप शांत और ऐसे वक्त में जहां पर आप हर काम से निवृत्त हो जाते हैं और बैठते हैं एक चाय की चुस्की लेकर और जब गजल सुनते हैं तो वो समा इतना खूबसूरत हो जाता है कि गजल का मजा दुगना हो जाता है। तो गजलों के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं अनिल विश्वास का ये गजल।

यूं नजरों का टकराना, यूं नजरों का टकराना और दिल में हलचल हो जाना, क्या इसे ही मोहब्बत कहते हैं? जो मैंने महसूस किया, क्या उस नजर ने भी महसूस किया होगा? क्या मोहब्बत का यही आलम सदियों से चला आ रहा है? कई लोगों ने मोहब्बत पर कई बातें लिखी, लेकिन पहली नजर की मोहब्बत पर किसी ने बहुत खूब लिखा। यूं हलचल नजरों के टकराने से जो हुआ, हमने तो दुनिया ही खो दिया। और क्या ये मोहब्बत यूं ही उधर भी लगा है? वैसे तो मोहब्बत पे कई बातें लिखी गई हैं, लेकिन इस गजल में इसे बहुत ही खूबसूरती से सुनाया गया है। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:45 होने को है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी की जोन ओ में बसी कॉलोनियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। कहा इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण गिराए नहीं जाएंगे। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मानसून पूर्व तैयारियों के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बरसाती जल निकासी नालों के गाद निकालने का काम लगभग 70% पूरा कर लिया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में लगभग 1.25 लाख यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के जोन ओ में बसी कॉलोनियों को लेकर दिल्ली सचिवालय में कुछ

0: बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जानकारी दी गई कि इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण को गिराए जाने की कार्रवाई नहीं होगी। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने जोन ओ क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में शासन द्वारा लगाए गए नोटिस बोर्ड का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बोर्ड संदेश में लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और सरकारी रिकॉर्ड के अध्ययन से पाया गया है कि इन कॉलोनियों के पुराने निर्माण पर किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आदेश है वो नए चल रहे निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने आज करौल बाग मंडल भाजपा के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित विषयों और स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान नागरिक सुविधाओं, आधारभूत ढांचे और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। श्रीमती स्वराज ने पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों और शिकायतों को संबंधित विभागों के सामने प्रभावी रूप से उठाने और उनके समयबद्ध समाधान के लिए निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिविल लाइंस क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्वच्छता और प्रदूषण की रोकथाम के लिए निगम द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा की। इसके अलावा श्री खिरवार ने जहांगीरपुरी स्थित 2000 टीपीडी क्षमता वाले सीएनडी वेस्ट प्लांट का निरीक्षण किया। आयुक्त ने धूल की रोकथाम के लिए सीएनडी वेस्ट प्लांट के चारों तरफ शीट्स लगाने और वाटर स्प्रिंकलर लगाने के भी निर्देश दिए। साथ ही प्लांट के मुख्य मार्ग पर झाड़ियां लगाने और संयंत्र का सौंदर्यकरण करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कहा कि सजग समाज और दूरदर्शी विधानमंडल ही विकसित भारत 2047 के दो सशक्त स्तंभ हैं। ये बात श्री गुप्ता ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित द्वितीय पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही गई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है बल्कि मजबूत संस्थाओं, नागरिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की साझा संस्कृति से है। संबोधन के दौरान श्री गुप्ता ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जनसेवा वितरण के क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक संस्थानों की गरिमा, पवित्रता और मजबूती पर बल दिया। दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: अदालत में सीबीआई ने कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार मनीषा वाघमारे ने पैसे के बदले छात्रों को परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक किए। जांच एजेंसी ने उम्मीदवारों के बयानों का हवाला दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों के लिए पैसे दिए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 12 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई के अनुसार मनीषा छात्रों को जुटाने में लगे बिचौलियों में शामिल थी। आरोप है कि इन छात्रों ने विशेष कोचिंग सत्रों में शामिल होने के लिए लाखों रुपए का भुगतान किया था। यहां परीक्षा में पूछे प्रश्नों को बताया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 21 जून को पुनः परीक्षा आयोजित करेगी। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ चैनल जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov

0: www.radiomirchi.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राजधानी में बसों के रोजाना के संचालन और यात्री सेवाओं की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया गया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि सभी बसें अपने निर्धारित बस स्टॉप पर अनिवार्य रूप से रुकें और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम तरीके से बसों में चढ़ने और उतरने की सुविधा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार और लापरवाही का कोई भी मामला सामने आने पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने डीटीसी के सभी अधिकारियों को बसों की समय सारणी, रूट ऑपरेशन और सर्विस के समय के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली VMI का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मॉनसून की तैयारियों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले तूफानी जल निकासी नालों की गाद निकालने का लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार गाद हटाने का काम काफी पहले ही शुरू कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य वर्षा जल की सुचारू निकासी सुनिश्चित करना, सड़कों पर बाढ़ को रोकना, यातायात जाम को कम करना और राष्ट्रीय राजधानी में मॉनसून के मौसम के दौरान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के समग्र रखरखाव में सुधार करना था। प्राधिकरण ने कहा कि समय पर काम पूरा होने और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए DDA अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शेष कार्य मॉनसून शुरू होने से पहले इस महीने की 15 तारीख तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और 2 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति से समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार के अनुसार मामले की जांच जारी है और अनियमितताओं में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने बताया है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर अब तक सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप रिकॉर्ड की गई है। NCRTC ने बताया कि एक दिन में लगभग 1.25 लाख से अधिक यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। NCRTC ने कहा कि उपलब्धि NCR में लोगों के यात्रा करने के तरीके में आ रहे बड़े बदलाव को दिखाती है। निगम ने बताया कि दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के बीच नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देशभर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
3: समय रहते हुए इलाज हो सके इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है उसमें ये ध्यान में आया, और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन आया।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनजातीय अस्मिता तथा जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ ऐतिहासिक उलगुलान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर अध्याय है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का अदम्य साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान कृतज्ञ राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा। वहीं दिल्ली के समाज और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन, सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनजातीय समाज को स्वाभिमान, संगठन और अधिकारों की शक्ति का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और जनजातीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं। राजधानी में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है, वहीं शाम के समय कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी की जोन ओ में बसी कॉलोनियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। कहा, इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण गिराए नहीं जाएंगे। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में लगभग 1.25 लाख यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत मालिका का। गीत मालिका कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

फिल्म संगीत गीत मालिका सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और जब हम किसी से भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन जब बातें बढ़ती है तो शोर चारों बगल हो जाता है। और मोहब्बत की अगर बात हो, ये छुपे कभी नहीं छुपती। और दूसरा है कि इस सवाल का जवाब कुछ और तरीके से भी मिल जाता है। वैसे तो गीतों का देखा जाए तो गीतों को इस तरीके से ही बनाया गया है जिसमें मोहब्बत में क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से मोहब्बत रंग लाती है, इस तरीके के गीत कई सारे बने। उनमें से एक गीत ये भी है, आइए सुनते हैं फिल्म यस बॉस से ये गीत।

कुछ लोग तो चांद से अपने महबूबा की तुलना कर देते हैं और कहीं कहीं अपनी महबूबा को चांद ही समझ लेते हैं। और गीतों में भी इन बातों को खूब अच्छी तरीके से बताया गया है। कौन सा वो गीत है जहां महबूबा को चांद बताया गया है? बहुत सारे ऐसे गीत हैं, लेकिन उनमें से खूबसूरत गीत ये भी है। आइए सुनते हैं इसे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका मेरी यानी कि पूजा भारती के साथ। और जब फिल्मों की बात होती है तो कई ऐसे फिल्म ऐसे भी आए हैं जिसमें फिल्म तो हिट नहीं हो पाई लेकिन गाने हिट हो गए। उनमें से कई ऐसे गीत हैं जो आज भी हम गुनगुनाते हैं। गीतों का यह सिलसिला, ये सफर तभी बरकरार रहता है जब वो गीत आप सुन सके जो आपके हमेशा जुबान पर रहता है, यानी आप उसे गुनगुनाते रहते हैं। गीतों के सफर में सुनते हैं अगला गीत फिल्म लव से।

फिल्म संगीत गीत मालिका सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और गीत मालिका में कुछ गीत इस तरीके से बने हैं, उसे भी लिया गया है, जिसमें ये कहा जाता है कि कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब हर किसी का नहीं होता। जी ऐसे गीत बहुत सारे बने हैं, लेकिन उनमें से जो प्यारा सा गीत है वो आपके लिए अभी जस्ट हम प्ले करेंगे। लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कुमार सानू की आवाज में इस गीत को सुनने का आनंद कुछ अलग ही है। सुनते हैं इस गीत को, फिल्म पापा कहते हैं।

गीतों की खूबसूरती उसके बोल से, उसमें रची हुई आवाज और फिर आता है म्यूजिक। और कई गीत ऐसे बने हैं जहां इन तीनों का समावेश इतनी खूबसूरती से किया गया जिससे कि गीत हिट हो गए। वैसे तो देखा जाए तो आवाज का जादू हर एक गीत को खूबसूरत बना देता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं उस पे म्यूजिक इतनी खूबसूरत आ जाती है जिससे कि आप सुनते ही उसके उस ताल पर, उस धुन पर बिल्कुल फिदा हो जाते हैं। ऐसे ही गीत है जो अब आप सुनेंगे जिसमें आवाज का जादू तो जो है सो है, लेकिन उसकी धुन इतनी खूबसूरत और इतनी शांत, इतने सलीके से है कि गाना बहुत ही खूबसूरत लगता है। आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत।

जीवन में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, जिनसे मिलकर ऐसा लगता है कि जीवन पूरा हो गया। जी हाँ, और जीवन में बहुत संयोग से ही ऐसे लोग मिलते हैं। सभी की किस्मत में कहानी होते हैं, लेकिन जिन्हें मिल जाते हैं उनकी किस्मत सबसे खूबसूरत होती है। आइए और सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

वहीं आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉ जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय

0: सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनसीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेगी।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रहता हूँ।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए

0: afghatsports.gov.in या afghat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कम्प्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Ranveer Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes.

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। एक फनकार प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सरवरी बानो, आदाब कबूल कीजिए। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह की गाई कुछ गजलें। लीजिए पहले समाप्त फरमाइए फिराक गोरखपुरी का ये कलाम।

अभी आप फिराक और रुपये का कलाम समाप्त कर रहे थे। लीजिए अब समाप्त फरमाइए मिर्जा गालिब की ये गजल।

आज के एक फनकार प्रोग्राम में गजल सरा है चित्रा सिंह। लीजिए अब समाप्त फरमाइए सैयद राही की ये गजल।

0: 1692 करोड़ रुपए का उबूरी बजट मुख्तस करने की तजवीज रखी है। पीबीजी रामजी कानून मुल्क भर में 1 जुलाई 2026 से नाफिज हो जाएगा। दही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के दही तरक्यात के वजीरों के साथ आज नई दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग के इनका के बाद मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कानून के नफाज के पेश नजर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि किसी रियासत को मुख्तस किए गए बजट में कमी नहीं की गई है और पिछले साल के मुकाबले बजट में 40% का इजाफा कर दिया गया है। जनाब चौहान ने जोर देकर कहा कि वीबीजी रामजी का मकसद दिल्ली तरक्की की रफ्तार बढ़ाना और मजदूरों को बगैर किसी रुकावट के रोजगार फराहम करना है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मग़रिबी एशिया की बदलती हुई सलामती सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है और मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सार्फिन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1000 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से और आगे हम गुफ्तगू करेंगे आम बीमारियां और उनका यूनानी तरीका इलाज। आम बीमारियों से मुराद क्या है कि मौसम के बदलते बदलते कौन कौन सी बीमारी आती है। हर मौसम में कुछ न कुछ ऐसी बीमारी होती है जो आम होती है, इन्हें वायरल कहा जाता है। इस फोन में इस्तेमाल है डॉक्टर इमरान आपका और सबसे पहले सवाल मेरा ये आएगा कि इस मौसम में आमतौर पर आम बीमारी कौन कौन सी है।
2: जी, सुनने वाले को डॉक्टर इमरान का प्यार भरा सलाम। और मौसम के बदलते हुए खासतौर से इस गर्मी के मौसम में जो सबसे ज्यादा परेशानी का बाइस है वह डिहाइड्रेशन। शदीद गर्मी की वजह से बदन में जो पानी का बैलेंस है, जो वाटर बैलेंस है, वो कम हो जाता है। तो मैं अक्सर बेशतर जो भी मरीज आते हैं मेरे पास में उनको यही मशवरा देता हूं कि इनटेक वाटर बहुत ज्यादा होना चाहिए। हाँ, यानी कम से कम 5 लीटर्स वाटर इन ए डे। और इसमें जो सफी गजाएं हैं जो बड़ी मुश्किल से हजम होती है उनको थोड़ा दरकिनार करें।
1: भारी खाना
2: कहते हैं देसी जबान में, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो मौसम के एतबार से चीजें आती हैं उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर ने हमको मौसम के एतबार से जो चीजें दी हैं वो हमें इस्तेमाल करनी है।
1: अच्छा, वैसे डिहाइड्रेशन की वजूहत क्या क्या होती है?
2: पानी न पीना ज्यादा।
1: अच्छा, पानी न पीना एक तो बड़ी वजह है।
2: और बहुत ज्यादा धूप या लू में घूमना, तो ग्लूकोज लेते रहे, इसमें नींबू पानी लेते रहे। और जैसे मैंने अर्ज किया कि मौसम के एतबार से जो चीजें कुदरत ने हमको अता की हैं वही असर हो रही है।
1: अच्छा, एक चीज और भी है कि जो आपने डिहाइड्रेशन के बारे में बताया कि पानी की कमी होना, इसको आम जबान में ही कहते हैं।
2: जी जी जी,
1: तो इसके लिए घरेलू कोई नुस्खा भी होता है या फिर इसका ग्लूकोज या नींबू पानी इलाज है?
2: नहीं, घरेलू नुस्खा बहुत शानदार, इसमें आम का पन्ना बहुत मुफीद है। अगर आप घर में तो आम का पन्ना इस्तेमाल कीजिए और चीनी और नमक का घोल इस्तेमाल करें।
1: सबसे आसान तो ये है।
2: हाँ, मगर उसमें भी एक आजकल दुश्वारी पेश आ रही है कि डायबिटिक बहुत है, लोग हर चौथे पांचवें आदमी को है, तो उसमें हम मना करते हैं चीनी न लें। और या किसी को बीपी है तो नमक को भी मना किया जाता है। तो उसमें यह है कि सादा पानी आप पीते रहे मुस्तकिल,
1: सबसे अच्छा इलाज ये,
2: सबसे बेहतर तरीका ये है। बार बार
1: चलिए, बहुत अहम बीमारी होगी डिहाइड्रेशन की, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है?
2: इनडाइजेशन होता है इसमें।
1: अच्छा।
2: हाँ, गर्मियों के मौसम में चूंकि रातें इसमें छोटी होती हैं और दिन लंबे होते हैं, और दिन में शदीद गर्मी की वजह से या लू की वजह से कई बार इनडाइजेशन हो जाता है, जो खाना हमें ठीक से हजम नहीं होता, तो उसके लिए है कि एतदाल थोड़ा सा बरतें
1: खाने में।
2: और मैं अपने मरीजों को बताया करता हूं कि 8:30-5:00, यानी 8 बजे नाश्ता, 1:30 बजे खाना, 5 बजे कोई मौसम का फल, और रात का खाना 8 बजे। और रात के खाने के बाद कम से कम आधा किलोमीटर जरूर घूम कर आए। चूंकि हमारा तर्ज जिंदगी बदल गया है बड़े शहरों में, कुछ पता नहीं, कभी 11 बजे खा रहे हैं रात में खाना, कभी 10 बजे।
1: बहुत लंबी हो गई है।
2: जो लोग सिटी का काम करते हैं या बैठे रहने का काम करते हैं उनके लिए मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। जो सुबह की सैर है वो सेहत के लिए बहुत

0: ना।
1: तुम्हारे बाबू से? अरे छोड़िए, वो रिवाज पुराने हो चुके। आजकल तो लड़का और लड़की आपस में डायरेक्ट बात करते हैं।
2: ये कौन है?
0: बापू, ये लड़की है।
1: गुड मॉर्निंग, आई मीन नमस्ते।
2: नमस्ते, नमस्ते।
1: आपने अखबार में जो शादी के लिए इश्तेहार दिया था ना, उसके बारे में मैं खुद ही आ गई।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ तो बेटे पोपट जाए, तुम जाना अपने कमरे में।
1: अच्छा बापू, नहीं इसे मत जाने दीजिए, वरना बात कैसे होगी।
2: ओहो, ये बात करके क्या करेगा? अरे बात तो मैं खुद करूँगा।
1: नहीं, मेरा तो यही ख्याल है कि हम एक दूसरे से बात कर लेते तो अच्छा था, उसके बाद फिर आपसे भी बात हो जाएगी।
0: तो फिर मैं जाऊं बापू?
2: मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। अरे हमें बात करनी तो। आपने बहुत तकलीफ की खुदा ने।
1: ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी अगर इस घर में मैं हमेशा के लिए आ जाऊं।
0: बापू!
2: अरे क्या है पोपटलाल, तुम फिर आ गए।
0: बापू, मेरे जूते बदल गए हैं, इसीलिए वापस आ गए।
2: अरे जूते कहाँ बदले हैं बेवकूफ, तूने जूते उल्टे पहन रखे हैं।
0: ओह अच्छा अच्छा, तभी मैं भी कहूँ जी, मेरे पाँव में जूते ठीक आ क्यों नहीं रहे हैं। अच्छा तो अब मैं जाऊँ बापू।
1: ये आपका बहुत ही फर्माबरदार बेटा है, आपसे पूछे बिना एक कदम भी नहीं उठाता, बार बार आपसे पूछता है।
2: जी क्या बताएं, इसका दिमाग खराब रहता है। अब देखो ना, जूते भी उल्टे पहन।
1: दरअसल इसने पहली बार मुझे देखा है ना, इसीलिए नर्वस हो गया है। ऐसा हो ही जाता है।
2: या। अच्छा ये बताइए, आप चाय पियेंगी या ठंडा?
1: कोई खास जरूरत तो नहीं है।
2: अमीर चाय? हेलो अमीर चाय,
3: ये रही पावर।
2: अरे जल्दी से चाय लाओ।
3: चाय तो मैं ले ही आया हूँ।
2: ले आए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे क्या है पोपटलाल?
0: मैंने सोचा चाय आ गई है, मैं बैठ कर पी लूं जी।
1: हाँ यहीं बैठ कर पियो ना, मैं तो यही कहने वाली थी।
2: हाँ यहीं बैठ कर पी लो, लेकिन जल्दी। यहाँ
1: अगर आप बुरा ना माने तो आप थोड़ी देर के लिए चले जाएं, ताकि हम आपस में खुलकर बात कर लेते।
2: मैं कहता हूँ कि वो क्या बात करेगा आपसे, अखबार में इश्तिहार तो मैंने दिया है।
0: बापू ठीक कहते हैं जी, मैं कैसे बात करूँगा आपसे, अखबार में इश्तिहार तो बापू ने दिया है।
1: इसमें कौन सी बात है, अखबार में इश्तिहार तो हमेशा बाप ही दिया करता
2: लेकिन
1: है।
2: लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बाप के होते हुए बेटा बात करे?
0: बापू तुम ठीक कहते हो जी। हाँ? बाप के होते हुए भला बेटा कैसे बात करे?
1: लेकिन जो बात मैंने बेटे से करनी है वो भला बाप से कैसे कर सकती हूँ?
0: आप भी ठीक कहते हैं जी, जो बात आपने बेटे से करनी है वो भला बाप से कैसे कर सकती हूँ?
2: लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता।
0: बापू तुम ठीक कहते हो जी, तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते।
1: लेकिन आपको बर्दाश्त करना होगा, आपको यहाँ से जाना होगा।
0: आप भी ठीक कहते हैं जी, बापू को यहाँ से जाना होगा।
2: मैं तो अजीब मुसीबत में फंस गया।
1: लगता है तुम्हारे बापू का दिमाग ठिकाने नहीं है।
0: आप ठीक कहते हैं जी, इसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने नहीं है।
1: अच्छा अब बताओ ना पोपटलाल, तुम्हारी क्या मर्जी है?
0: इसमें मैं क्या बताऊंगा जी, जो मेरे बापू की मर्जी वही मेरी मर्जी।
1: अरे गोला मारो बापू को, तुम अपनी बात करो।
0: आप भी ठीक कहते हो, गोला मारो बापू को, मुझे तो अपनी बात करनी है।
1: तो फिर हाँ कह दो ना।
0: हाँ कह दो?
1: ओहो मैं कहती हूँ हाँ कह दो ना।
0: आप ठीक कहते हो जी, मुझे हाँ कह देनी चाहिए।
1: जब तुम हाँ कह दोगे तो तुम्हारा बापू भी हाँ कह देगा।
0: ये भी तो ठीक कहती हो जी, जब मैं हाँ कह दूंगा तो बापू भी हाँ कह देगा।
1: तो फिर हाँ।

0: तू पकड़ लिया जी।
1: तुमने हाँ कह दी, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया।
0: अरे मुझे छेड़ो ना जी, मुझे शर्म लगती है।
1: शुरू में ऐसा ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी शर्म उतर जाएगी।
2: अब आ जाओ तुम अपने कमरे में।
1: शादी के बाद हम दोनों पिक्चर जाया करेंगे।
0: हाँ जाएंगे, और साथ में बापू भी तो जाएगा।
1: किस मनहूस का नाम ले लिया बीच में।
0: ये भी तुम ठीक कहते हो जी, किस मनहूस का नाम ले लिया।
1: शाम को हम हर रोज सैर करने जाया करेंगे।
0: हाँ जरूर जाया करेंगे।
1: तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होगा और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में,
0: और साथ में बापू भी तो जाएगा।
1: ओहो, वो बुड्ढा क्या जाएगा सैर करने।
0: आप ठीक कहते हो जी, वो बुड्ढा क्या जाएगा सैर करने।
2: पोपटलाल।
0: हाँ बापू।
2: तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे
0: हो। हाँ बापू, तुम ठीक कहते हो जी, मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा हूँ।
1: मैं कहती हूँ, आप कौन होते हैं हमारे मामलात में दखल देने वाले।
0: आप भी ठीक कहती हो जी, बापू कौन होता है हमारे मामलात में दखल देने वाला।
1: चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलें, बहुत दूर।
0: चलो जी, जितनी दूर कहो उतनी दूर चले चलेंगे, अपना क्या जाता है। हाँ बापू।
2: मैं कहता हूँ रुक जाओ, तुम इसके साथ नहीं जा सकते।
0: बापू तुम ठीक कहते हो जी, मैं इसके साथ नहीं जा सकता।
1: क्यों नहीं जा सकता, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
0: आप भी ठीक कहते हो जी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
1: टाटा बापू।
0: टाटा बापू।
2: अरे मैं कहता हूँ रुक जाओ पोपटलाल, पोपट के बच्चे।
3: टाटा बापू।
0: क्यों क्या हुआ सरकार।
2: अरे अनहोनी हो गई अमीर चंद, वो लड़की मेरा इश्तिहार पढ़कर आई थी और वो पोपटलाल को भगा के ले गई, बजाय मुझसे शादी करने के वो पोपटलाल से शादी करेगी।
4: आपको लड़कियों की भला क्या कमी है। अरे हुजूर, वो नहीं तो और आ जाएगी।
2: अमीर चंद।
1: जी सरकार।
2: तुम बाहर गेट पर खड़े हो जाओ, अब जो भी आए उसे सीधा मेरे कमरे में ले आ।
0: बहुत अच्छा सरकार, आप कमरे में चलिए, जो भी आया उसे मैं सीधा आपके पास ही लाऊंगा।
2: न जाने मेरा दिल धक धक क्यों कर रहा है, कहीं कोई और अड़चन ना पड़ जाए।
0: आप जाइए सरकार, अंदर जाइए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए।

0: जैसे ये प्लान नंबर 666 यही है
1: जी, यही है।
0: अखबार में शादी के लिए इश्तहार?
1: अखबार में इश्तहार हमने ही, मेरा मतलब है उन्होंने ही छपवाया है।
0: तो ठीक है,
1: आप तो इन्हें लॉन में ही बैठ गई है, चलिए ना अंदर, चलिए ना
0: अंदर। जाकर क्या करेंगे? यही लॉन में बैठकर बातें करेंगे। कितनी ठंडी ठंडी और रोमांटिक हवा चल रही है। शाम हो चुकी है, चांद भी निकल आया है। जैसे कि किसी ने कहा है,
2: ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक निगाह पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है।
1: मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे हैं।
0: वही हो, बिल्कुल वही। मैंने तुम्हें आज तक नजरों से नहीं देखा था, लेकिन मेरे ख्यालों में न जाने आज तक तुम कितनी बार आ चुके हो, कितनी बार मुझे तड़पा चुके हो। जैसा कि किसी ने कहा है,
2: ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते।
1: जी, मैंने कहा धीरे धीरे बोलते, कोई सुनने गया।
0: जैसे कि किसी ने कहा है, हमें किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं।
1: मेरा तो दिल घबरा रहा है।
0: अखबार में शादी के लिए इश्तेहार इतने जोरों का दिया, लेकिन मुझसे बातें करते हुए घबराते हो। तुम्हारी तो वही हालत है, जैसे कि किसी ने कहा है, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो

0: कैसे समझाऊं कि मैं अमीर?
1: हाँ मैं जानती हूँ कि तुम अमीर हो, तुम्हारे पास दौलत है, जायदाद है, मोटर है, बंगला है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। तुम्हारी दौलत से कोई सरोकार नहीं। जैसे कि किसी ने कहा है, तुमको मुबारक हो ऊंचे महल ये, हमको है प्यारी हमारी गली।
0: जी मेरा मतलब है मैं अमीर चंद
1: तुम जितलाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अमीर हो और मैं गरीब।
0: आप रोए नहीं, खुदा के लिए मत रोइए।
1: तो तुम वादा करो कि तुम शादी करोगे, तुम मेरे साथ ही करोगे।
0: ये वही है, मेरा मतलब जो इश्तिहार अखबार में निकलवाया था उसे पढ़कर आई है।
2: अरे तो इसे वहाँ क्यों बिठा रखा है, यहाँ भेजो हम बात करेंगे।
1: ये कौन है? मेरा मतलब है तुम्हारा और इसका क्या रिश्ता है?
0: जी इनका मेरा रिश्ता वही है, वही है जो एक मालक और नौकर का होता है।
1: ओ, तो यूँ कहो ना कि ये नौकर है, इसे कहो अंदर जाए और अपना काम करे, हमें जरा बातें करने दे। तुम्हें कह रही थी
2: जी। अरे तुमने सुना या नहीं, अंदर जाओ, अंदर बैठ कर बात करें।
1: अब और क्या बात करनी है, बात तो हमने कर ली।
2: क्या कहा, बात आपने कर ली? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मालिक से ही करनी चाहिए और कुछ ऐसी होती हैं जो नौकर से भी की जा सके।
1: अब तो जो बात होनी थी सो हो चुकी।
2: बात हो चुकी क्या मीठा, क्या बात हो चुकी?
0: बात ये है कि
1: पूछो ना, मुझसे पूछो। यानी कि मैंने हाँ कर दी।
2: हाँ कर दी यानी नहीं आता, नहीं आता।
1: जब मैं बार बार हाँ कर रही हूँ तो न जाने इस बुड्ढे को यकीन क्यों नहीं आता। मैंने कहा तुम्हें तो यकीन है ना, जैसे कि किसी ने कहा है, वो साथी तकदीर के कैसे दिखाऊं दिल चीर के।
2: अब यकीन आ गया, अब यकीन आ गया, आज के बाद तुम इस घर की मालिकन और मैं।
1: अब बात तकी है, क्यों ना लगे हाथ कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज की एप्लीकेशन दे दे।
2: सिविल मैरिज, हाँ वो ठीक रहेगा, बेकार शोर मचाने की क्या जरूरत है, क्यों क्या शादी हो जाएगी।
1: अच्छा चले कोर्ट में,
2: चलो मैं तो बिल्कुल तैयार।
1: अरे तुम्हें कौन कह रहा है, तुम घर बैठो, हम दोनों कोर्ट जा रहे हैं।
2: तुम दोनों कोर्ट जा रहे?
1: क्यों, जब मालिक की शादी कोर्ट में होनी है तो क्या जरूरी है कि नौकर भी साथ जाए?
2: यही तो मैं कह रहा हूँ कि नौकर के जाने की क्या जरूरत है। अरे अरे तुम दोनों जा रहे, मैं कह रहा हूँ अमीर जान।
0: अरे
2: मैंने कहा ये काम आ गया है, तुम क्यों जा रहे?
0: सरकार मैं क्या बताऊँ, ये शादी आपकी नहीं हो रही, बल्कि मेरी हो रही है।
2: कमबख्त नौकर लड़की को लेकर चला गया और मालिक देखता ही आ गया। और मैं किस मुसीबत में फंस गया, किस परेशानी में फंस गया।
3: क्या बोलते हैं साहब, तुम परेशानी में फंस गया? हम तुम्हारा परेशानी दूर करेगा।
2: जी आप कौन?
3: हमने पेपर में तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट पढ़ा कि तुम शादी करना मांगते हैं।
2: जी हाँ जी हाँ, हम शादी करना मांगते हैं।
3: और हमारा मिस पिपली भी शादी करना मांगता
2: है। पिपली?
3: हाँ बोरा मिस पिपली, मिस पिपली।
2: ये क्या, चूचू कुकू?
3: हमारा मिस पिपली टिम्बकटू का रहने वाला है।
2: टिम्बकटू?
3: टिम्बकटू एक कंट्री का नाम है। तुमने नाम नहीं सुना उस कंट्री का?
2: टिम्बकटू का नाम तो मैंने आज ही सुना।
3: ओह नेवर माइंड, हमारा मिस पिपली सिर्फ अपने कंट्री का बोली बोलता, ये और कोई लैंग्वेज नहीं समझता। टिम्बकटू का हर लड़की उसी आदमी के साथ

0: शारी का नमांत जिसका एज 60 से ऊपर होता है।
1: 60 से ऊपर
0: फिर तो खुशामदीद, यानी कि वेलकम, आइए आइए बैठिए, मेरा एज 62 साल। वो तो हमको नजर आता। हमारा मिस पीपली आपसे मैरिज करने को एकदम रेडी।
2: अगर वो रेडी है तो हम एवर रेडी।
0: गुड, वेरी गुड।
3: चाचू पापा, चाचू पापा,
0: चाचू पापा, इसे तो मुझे क्यों हमेशा कह दे, लेकिन पापा तो ना कहे। सेठ, तुम इसको बोली नहीं समझता। इसको कहने का मतलब है हम सिर्फ उससे शादी करना मांगता जो मोहब्बत कर सकता।
2: मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत करना तो हमारा खानदानी पेशा है। हमारा बाप एक वक्त में चार चार लड़कियों से मोहब्बत करता था।
0: गुड, वेरी गुड। मिस पिपली, चामी चामी, चुचुका चुचुका,
3: चिको मिको, गुगु गुगु।
0: मिस पिपली बोलता मोहब्बत करना मांगता, अगर तुम मोहब्बत में फिट हुआ तो वो तुमसे एकदम शादी करना मांगता। मिस पिपली, जम जम चका चका,
2: अरे ये क्या तरीका है मोहब्बत करने का, मेरे घुटने पर आगे बैठ के आए
0: चुंबक में मोहब्बत करने का यही तरीका है। बिलवेट लवर के घुटने पर बैठना मांगता है।
2: घुटने पर बैठने का ये मतलब तो नहीं कि मेरा दमी घुटने लगे, इसे कहा मेरे घुटने से उतर जाए।
0: मिस पिपली, डिंग डिंग डोंग डोंग, डिंग डिंग डोंग डोंग,
3: चुमु चुमु चा, चुमु चुमु चा।
0: मिस पिपली कहता है कि अगर उसे लव करने से रोका गया तो इस बेचारे का दिल टूट जाएगा।
2: लेकिन अगर इसका दिल न टूटा तो मेरा घुटना टूट जाएगा। आए
0: मिस पिपली, मिस पिपली, चुपचाप टिपिट टिपिट टिपिट। वो देखो सही, मिस पिपली तुम्हारे घुटने से उतर गया।
2: मेरी जान में जान आई।
3: काचू माचू चिको से मोच,
2: ये बात हुई ना मोहब्बत करने की। मिस पिपली शायद काजू और चिलखोजे मांग रही है, मैं अभी लाता हूँ।
0: नो सही, अभी मिस पिपली तुमको और लव करना है।
2: अभी और लव करना मांगता है या मेरी जान निकालना मांगता
3: है?
2: क्या था मिस पिपली, तुम्हारे लिए चीकू काट कर लाओ अभी आया।
0: ओ सेठ, तुम मिस पिपली का लैंग्वेज नहीं समझ सकता। मिस पिपली कहता है तुम छत से उल्टा लटको और मिस पिपली नीचे खड़े होकर तुमसे बात करना मांगता।
2: क्या था, मैं छत से उल्टा लटकू, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
0: मिस पिपली चीकू चीकू खाट खाट, चम चमा चम, चम चमा चम,
3: चम्बी चम्बी, इसकी मिस्की खटखटा
0: दिल छोड़ दिया। वो रो रहा है, वो कहता है हमारा इंसल्ट हुआ है, हम शादी कराए बगैर वापस जाना मांगता।
2: मत रो, मत रो, मत रो, वापस ना जाओ। मैं तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर करता हूँ, मैं छत से लटकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद शादी करोगी मुझसे?
0: मिस पिपली, शाय शाय, कौन शाय, चिबी चिबी, चिबी चिबी, चिबी चिबी,
3: बमचिक बमचिक बमचिक।
0: देखता है सही, तुम छत से लटकने के लिए हैप्पी हुआ तो मिस पिपली हैप्पी हो गया। अब जल्दी से छत से लटको, मिस पिपली बेताब हो रहा है।
2: लेकिन मैं लटकू कैसे?
0: पिपली टुटुकटू टुटुकटू,
3: मत मत मत मत।
2: अरे मिस पिपली, रस्सा अपने साथ लाई
0: है। चंपक टू में हर लड़की रस्सा अपने साथ रखता क्योंकि उसका किसी भी वक्त किसी से लव हो सकता है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
0: हम तुम्हारे पाँव में रस्सा बांध देता ऐसे, और अब हम टेबल पे खड़े होकर ये रस्सा सीलिंग फैन से बांध देता।

0: Llegamos y vas, llegamos y votamos, yo taro, bhai, Misha taro.
1: Yes, partner.
2: Ghar sambhal liya.
1: Ghar sambhala nahi, balki ghar ka pura safaya kar liya.
0: Are, ye Hindustani bhi janti. Are, mera ghar loot kar le ja raha ho. Are, main kehta hu ruk jao. Are, mujhe ulta lagta to na chhod do.
2: Goodbye,
1: Sid.
2: Goodbye.
1: Bye,
0: Sid. मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ. ये अनहोनी ना करके जाओ. अरे, अरे मैंने शादी करनी थी. उल्टा तो नहीं लगना था.
3: अभी आप जनाब वी एम आनंद का तहरीर करदा ड्रामा सुन रहे थे अनहोनी बातें. पेशकश अनवर खान की थी, मुआविन थे योगराज. ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद. तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब.

सुनिए खाश मंत्री सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। बुढ़ाला इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित कुमार दामोदर। अलीगढ़ डबवाली से बसंती चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन। और यहां जनाब करणवीर हाउस भूचो केचिया, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा और करणवीर करण। करनाल से बलविंदर सिंह सोडी। वाड़ी खामगांव से अनंता वाड़े, रमेश्वर वाड़े और शुभम साक्षी। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सायमा नवाज और हसन नवाज। हासी गांव बाजार से करण अजीत पुनकर। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू। वही मुंबई से नवाब खान, इशद जहां और मास्टर अजहर खान। नसवाड़ा चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल और प्रथमेश पाटिल। सिद्धार्थ नगर दरेपुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले और सुशील येले। कारगिल नगर यावतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और वेदिका फूलमाली। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। नई दिल्ली से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और रविन्द्र सिंह छाबड़ा। टेकरी मध्य प्रदेश से शबनम अकरम और तबरेज। फातमा कॉलोनी श्रीरामपुर से नासिर शेख, नादिर नासिर और साजिद शाहिद। और समझ लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में एक साल फिल्म का यह नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है रवि ने। पसंद करते हैं आप सब। भट्टापारा से बचका माल, डॉक्टर बसंत दुर्गुल और मोतीलाल यादव। कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दिले, सविता दिले और अनिकित दिले। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा जी। गांव कलमंडी खुद जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत और उनके अहले खाना। और जनाब ये है किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और भानुप्रिया। छोटी बलिया कडियत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले और सदा इकबाल फूल वाले। लखनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले और उनके अहले खाना। नो महल मैसूर से तमिल बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और फरज जहानाज। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर और वंदना गौहर के साथ जयपाल यादव भी हमें सुन रहे हैं। और ये जनाब जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक। कनेरा मोहल्ला पटियाले से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और निहारिका। भोपाल से चंपालाल दुबे, अनंत और दर्शिका दृष्ट। मंजू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। और जनाब ये हैं फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया और श्रीमती सरोज चौरसिया। नगरगढ़ जय विहार से शाहरुख फारूख और शबनम शहनाज। किशोरनगर अमरावती से हीरामन शिंदे और शैला देवी शिंदे। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श, बेगम राबे शेख और शेख रहीमुन्ना। भट्टापारा से रविन्द्र चावला, सोहन जोशी और शिव कुमार शर्मा।

प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में सोने की चिड़िया फिल्म का नगमा, नगमा निगार साहिर, मौसीकार ओपी नैयर। सुनना चाहते हैं गुवाहाटी आसाम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या। सिद्धेश्वर नगर यावतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और शराबी रामटेके। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार। नानमंदिल मैसवल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बीकम इशरतकम और रुबीना वसीम। गणेशपुर गंडोलवारा से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां और शेफा सिमरन। और जनाब ईमेल किसका है, चक 5 एमडी पथरोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल और अंकुल जनागल। और ये जनाब कौन सा है, गांव कल्याण मल्लिका जिला भटिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया परमिंदर और सचनूर। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और साईराज सपकाल। रजौली जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयवान पाल, जयहिंद पाल और दीक्षा पाल। और यह जनाब पोस्ट सोरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, संजना नामदेव और रेखा नामदेव। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा और रॉबिन राणा। किशन कॉलोनी हंसी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू। यह जनाब मंडी हरजीराम मलोट पंजाब से नथुराम शर्मा, ललित शर्मा और इंदिरा शर्मा। मेहनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहनकर, श्रीमती सरिता गवाहनकर और अर्जुन गवाहनकर। रेलवे रोड गंडोनवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगमनाज और बीबी फातिमा गाजी। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण और अंजू श्रीवास्तव। आवास विकास कॉलोनी काजगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़ और आशीष गौड़। और ये जनाब सतबाला उत्तर प्रदेश से सलोनी चौरसिया, सुबोध चौरसिया और शिवानी चौरसिया। लेक सिटी उदयपुर से नरितम गौड़, हिमांशु गौड़ और यश गौड़। और बांदा उत्तर प्रदेश से फहीम मंसूरी और फातिमा मंसूरी।

बदलिया। जी हाँ, ये है उस फिल्म का नाम जिसका नगमा अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया है नौशाद ने। सुनना चाहते हैं तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, ग्राम पहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से भूषण पंचोर, चंद्रकिरण और छायावंशोर, नरेश्वर नगर नरवील मारा से पीएस नावकर, निर्मल नावकर और विशाल नावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपन ताइडे और आशीष महरकरे, पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टीलू नायक, कलामोर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन शर्मा, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत, आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे और शुभम बेंडे, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से गुलाम साबिर राही, ताज मोहम्मद अंसारी और मेराज जहां, अनारकली बाजार जगनाव से कमल पाठक, सुनील पाठक और गव्या मल्होत्रा, कमल कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से परवीन श्रीमाली और मीना श्रीमाली, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर।

Arthur Schwarzenegger. और यही जनाब नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुतार, मनोज सुतार और हिमांशु सुतार। मालपुरा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी गोस्वामी। गांव हीरा वाले फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा और इंदु पार्वती। राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर और रुद्र गुप्ता। गांव हंडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नौमान और तनवीर मसरत। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी और गौरव सैनी। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। और जनाब ये हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम और इमरान खान। गिरिडीह झारखंड से हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम। अच्छा जनाब ये हैं गौतमनगर नांदेड़ से प्रभागत जौंदले और आरती जौंदले। धंडी नादुरा महाराज से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और जयप्रकाश राहुल। मीनबाजार कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर। उत्तर नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल और गीतिका भानु। और ये अगला मेल है बिंदुलाल रजक जी का है, कहां से है इन्होंने लिखा नहीं। डोर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली। और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इस्सा, खतीजा बेगम और मोहम्मद अशफाक। आप सबकी पसंद आपकी नजर है।

आप सुन रहे थे मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में साहिर का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया था खयाम ने। फिल्म थी फिर सुबह होगी। सुनना चाहते थे जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेचा, हंसा कोटेचा और आशीष कोटेचा। बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से इम्तिया

आई सामीन अब सुनते हैं आशा भोसले और साथियों को, फिल्म है लाजवंती, मौसीकार है एस डी बर्मन। सुनना चाहते हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, ये हैं जनाब सिंगर। छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार यादव, माया यादव और कमल यादव। कोली नांदेड़ महाराज से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। अयोध्या नगर अलीगांव से विनोद कुमार धावले, विनोताई और प्रथमेश धावले। कुम्भार गली कालीगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन और प्रतीक्षा चंदन। सुंदरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी और राधा तंवर। पश्चिम थोक गंडुनवारे से मुनव्वर लल्ला, नसीम मिर्जा और अरबाज शाहबाज। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। और ये जनाब रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही और बेगम रुखसार।

नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा जिला सोलापुर महाराज से मास्टर अनिल पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार और यही जनाब सिटी सेंटर खंडवा से भाई मनोज सेन, पूनम सेन, दीपक सेन, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमराज, पटेली रोड गंडोद्वारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबी अरीबा हबीबा, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना और लाबिया और यह जनाब कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शब्बीर बनट्टी और आसिफ इकबाल और अगला मेल हमें मिला तखतपुर छत्तीसगढ़ से भेजने वाले मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा और राम रतन टाकीज कुंडलवाड़ी से ही गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर, सिटी सेंटर खंडवा से भाई मनोज सेन, पूनम सेन और सोमी सेन,

अगला सबने दो दो पहनी शुरू कर दी, फिर से मैसेज खाली भी उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू अशरफ और अगला मेल अब हम लेंगे इस नगमे के बाद।

Peki Çohan, यहाँ पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और शिवांश वर्मा। विराटनगर नेपाल से प्रियंका कुमारी शर्मा, वंदना कुमारी शर्मा और रेणु शर्मा। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और सोनू सुरेश। हिंगोली महाराज से शाजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और उत्तम जामधाड़े। मेनोड तेलहरा से प्रकाश पवारकार, नर्मदा पवारकार और कुमारी सुजाता पवारकार। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। कोलो महाराज से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता और रिमी तनुश्री गुप्ता। एटा रोड गुंडुनवाला से फैसल शेख, कैसर शेख और हरीफ शेख। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, परवीन रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। और यही जी मधुबनी बिहार से ए के झा और राजेश साबले पाटिल। मुदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। बैनपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भाव्या कुमारी। आप सबकी पसंद आपकी नजर है।

हमारे साथ प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में भरत व्यास का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है वसंत देसाई ने, फिल्म है गूंज उठी शहनाई। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आशियाना अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई से मोहम्मद मुजीब शेख, जायना नाबिया शेख और बेबी अमीरा शेख, वाला शाहपुर कोल्हापुर माड़ा से चौहान विजय चौहान इंदूरकर तेजस्वनी चौहान और अंकिता।

आजकल प्रोग्राम के लिए पेशकश प्रदीप की आवाज में दो बहनी फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है वसंत देसाई ने।

और सुन लीजिए, सुनिए शमशा बेगम की आवाज में शकील बदायूनी का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजा है नौशाद ने, फिल्म है मेला।

अब ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शाहिद हबीब। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू

0: काफी करीब है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की तरफ से ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी बमबारी के मुकाबले में ज्यादा मुआसिर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरहद पर हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद बाहमी बातचीत अब भी आगे बढ़ रही है। अमरीका में हजारों हुनरमंद तारिकीन वतन को फायदा पहुंचने वाला है क्योंकि एक वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से H-1B वीजा फीस को $1,00,000 करने की तजवीज को गैर कानूनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अमरीका में जिला जज लियो सोरोकिन ने यह फैसला 20 डेमोक्रेट स्टेट अटॉर्नी जनरल की जानिब से दायर किए गए मुकदमे के बाद सुनाया है। इस मुकदमे में इस पॉलिसी को चैलेंज किया गया था जिसका ऐलान सदर ट्रंप ने गुज़श्ता साल सितंबर में किया था। इस पॉलिसी के तहत H-1B वीजा दरखास्त की फीस तकरीबन $2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की कोशिश की गई थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। यह निजाम जमीनी बंदरगाहों को मरकजी निजाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाईयों के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। यह हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निजाम को जमीनी बंदरगाहों के लिए दस्तियाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निजाम की तामीर की जानी अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नजरिए से हम आहंग है और यह तिजारत में आसानी कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को NEET के दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामानिकारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया परीक्षाओं की तैयारी से लेकर इम्तिहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। ब्रिक्स जरिए कॉन्फ्रेंस कल से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के नुमाइंदे यकजा हो रहे हैं और दुनिया भर में ज़राअत को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत कर रहा है जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स जरिए कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी जरिए तजारत माहौल दोस्त जरिए तरीकेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूदात पर वसी तर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद रुकन ममालिक के दरमियान मजबूत इश्तराक को फरोग देना और सभी को दरपेश चैलेंजों के मुश्तरक हल ढूंढना है। कांगो के मशरक हिस्से में हुकाम की जानिब से इबोला फैलने के ऐलान के एक महीने से भी कम अरसे में 100 से ज्यादा अफराद की जानें तलफ हो गई। इबोला की जिस बीमारी में ये अमवात हुई है वो एक नायाब वायरस बर्डी डुगियों की वजह से हुई है और इसका जाहिरी वायरस की तरह न तो कोई इलाज है और न इसके लिए कोई मंजूर शुदा टीका है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बातचीत की है और ब्रिक्स जरिए कॉन्फ्रेंस कल से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मंडी में 1,71 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सावन छपका एक बजा चाहता है। यहां हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह में 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात पर और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज डल डमरू मध्य के पास अमरीकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विज्ञान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ए 259 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Ministry of External Affairs acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi yesterday, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said, "As New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan, Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses."
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, JAAC, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation yesterday with the Emir of Kuwait, Sheikh Mishal al-Ahmad al-Jabir al-Sabha. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed a deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attack on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated that the call for de-escalation dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. The central government has given financial support of approximately 1.23 lakh crore rupees to the oil marketing companies OMC to support the consumer from the burden of rising crude oil price. According to the government sources, the financial support provided to OMCs is for the initial 78 days of the West Asia conflict. The financial support includes the excise duty cut. The sources said that the gold imports have seen a reduction. It added that the reduction is a result of higher import duty on gold and Prime Minister has appealed to the nation for not buying gold for at least a year. Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday visited the National Testing Agency NTA headquarters and reviewed the preparations for the re-NEET exam, which is going to be held on the 21st of this month. Talking to reporters outside the NTA headquarters in New Delhi, the minister said the center has ensured that all necessary measures are being taken while maintaining complete confidentiality from the preparation of the question papers to all subsequent procedures. In men's cricket, India defeated hosts Sri Lanka by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Dambulla International Stadium yesterday, and that is the end of this news bulletin.
4: आप सुन रहे हैं AIR Live News 24/7. 1:10 हो चुके हैं. समय है कार्यक्रम गीत सुनहरे.

गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। जी हाँ, पुराने गीतों का वो सफर शुरू हो रहा है मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। उन सफर को आइए तय करते हैं जिस सफर से हम चलना शुरू किए थे, यानी कि वो समय जब फिल्म संगीत में कम ही लोग आगे आ पा रहे थे और जो आगे आ रहे थे वो हिट हो रहे थे, क्योंकि लोगों के पास एक खूबसूरत सोच, खूबसूरत नजरिया और नया कुछ करने की तमन्ना उस वक्त पनप रही थी, और वही समय लेकर आया ये गीत।

0: पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल।
1: रास्ते चाहे जैसे भी हो, लेकिन महबूब का वो रास्ता जहां से दिल चलकर दिल तक पहुंचता हो, वो सबसे प्रिय होता है। ये गीत कुछ इसी तरीके के बोल बोल रहा है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

और प्यार करने के बाद जब ये एहसास हो कि मेरा मोहब्बत सबसे प्यारा है, तब गीतों के बोल कुछ अलग होते हैं। और जब ये एहसास हो कि मोहब्बत जिससे की है ये मैंने क्या किया, तब गीत कुछ और होते हैं। गीतों के बोल, उनके राग और संगीत, सब कुछ गीतों को एक अलग मोड़ दे देता है। आइए सुनते हैं अगला गीत, इसमें क्या कहा जा रहा है।

इन गीतों को सुनते हैं वो आवाज जो मुकेश की थी, वो आवाज उस जमाने में संगीत के नाम पर इतना कुछ दिया हमें कि उन गीतों को याद करके आज भी हम उस राग को अपनाने की कोशिश करते हैं। वो बोलने का तरीका, वो गीत गाने का तरीका, सब कुछ सभी से भिन्न था। इसलिए मुकेश ने अपने गीतों से लोगों को बहुत खुश किया।

जहां पर मुकेश के इस गीत को सुना, तो वहां पर वो गीत जहां पर अपने महबूबा की तारीफ करते हुए वो शब्द बोले गए, कुछ इस अंदाज में।

कहते हैं कि जब मोहब्बत है जहां पर वहां पर टकराव भी है, और फिर पहले तुम का चक्कर हर जगह होता है। जी हाँ, मोहब्बत के बनाए हुए उन गीतों को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है, राग के साथ साथ धुन, धुन के साथ साथ गीत के बोल, यूं कहें कि गीत के बोल ही इतने खूबसूरत हैं, जिसे अगर खूबसूरती से गाया जाए, खूबसूरती के धुन से सजाया जाए, तो गीत और भी खूबसूरत हो जाते हैं।

0: नहीं है।
1: कहीं कहीं मोहब्बत में बहुत मशक्कत है, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि दिल में आखिर क्या है। तो क्यों ना दिल की आवाज ही सुना दी जाए।

जी हाँ, जब बात आती है कि दिल से दिल तक बात पहुंच चुकी है, तब ख्वाब सिर्फ एक ही देखता है, ये दिल अपने महबूब के साथ वो बिताए हुए पल, या फिर वो बिताने के लिए वो पल ढूंढता है। ख्वाब ऐसे होते हैं जिसे पूरा करने के लिए दिल का तड़पना जरूरी हो जाता है, और गीतों में इसे बहुत खूबसूरती से बताया गया है।

कहते हैं कि जब मोहब्बत की राहें बहुत तकलीफ भरी होती है तब भी मोहब्बत करने वाले भटकते नहीं हैं। राहों को जितनी भी तकलीफ क्यों ना बना दो, ये दिल मोहब्बत के नाम पर धड़कता रहेगा।

0: तो मोहब्बत का ये जादू कोई एक ही तरफ थोड़ी ना होता है, दूसरी तरफ भी यही जादू चल रहा है। अपना महबूब कितना प्यारा लग रहा है, और वो तारीफ, वो अदाएं, वो शोखियां, सब कुछ उस तारीफ में जब एक साथ सिमट कर आ जाए तो गीत कुछ इस तरह से बनते हैं।
1: जुल्फ से

और फिर वो समय भी करीब आ गया जब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की बात होती है। और जी हाँ, समय के समाप्त होने पर ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन एक गीत तो और भी है जो आप और हम सुनेंगे और फिर उसमें डूबेंगे भी, और ये भी कहेंगे कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। जी हाँ, फिलहाल इस कार्यक्रम से, यानी कि फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा की फिल्मी संगीत से मुझे दीजिए अनुमति। आप सुनिए कि गीत और फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आप जुड़े हैं AIR लाइव न्यूज 24/7 से। 2 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल पूर्वैत के अमीर शेख विशाल अल अहमद अल जावेर और सवाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें विनती है कि डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आवर्जन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामुल्ला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Ministry of External Affairs acknowledged in several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi yesterday, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Sirindeer Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। 3 बजने को है, आप सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मल्होत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। मैं अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस

0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रूसी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पूर्व परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक AI का उपयोग और ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने के विषय पर आयोजित की गई। इसमें 10 देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम के विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत AI विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के डांबला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारतीय ने श्रीलंका को 1-8 रन से हरा दिया है। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय RS रघु। The Ministry of External Affairs acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi yesterday, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated.

जोजी सिंह की आवाज में गाइस गजल के साथ ही आज के अगलों का कार्यक्रम में होता है संपन्न आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। चार बजकर 20 मिनट हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन, कलाकार हैं मिनी एन। आपने प्रस्तुत किया है रागम कल्याणी जो मिश्र चापू तालमेलबद्ध है। संगीत दिया है स्वाति तिरुनाल ने और निगंगम पर संगत किया है MV चंद्रशेखर ने।

नहीं, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और ये अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम योग करें। आज का योग हुआ बद्ध पद्मासन। आप सुन सकेंगे 5:20 पर देशभक्ति गीत। 5:30 का समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जल तरंग, प्रस्तुत करेंगे मनीष शर्मा।

है, आज कल 10 मिनट पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 46 पर चिंतन प्रसारित किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों पर चिंतन। रामचरितमानस से पाठ आप सुन सकेंगे 6:45 पर। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 82। 6:55 पर सुनेगा संस्कृत में समाचार।

0: साथ ही आप सुनेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार। संगीतिका का समय रहेगा सुबह 7:10। आज आप सुनेंगे डॉक्टर स्मृति त्रिपाठी के गायन भजन। 7:30 सुनिएगा गीत वाले गुड मॉर्निंग। 8:00 आप सुन सकेंगे समाचार। 8:45 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा का। आज आप सुनेंगे शेख फरहान अमीन का गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग मियां की तोड़ी। 9:15 का समय रहेगा साइंस मैगजीन का। 9:30 सुनिएगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी में है। 10:00 सुनिएगा आपकी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम और 11:10 पर सुनिएगा सावरस कार्यक्रम। 11:30 सुरमंजरी के अंतर्गत आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे जयश्री। आप प्रस्तुत करेंगे राग बहादुरी तोड़ी। 8:00 प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:00 वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसा सुवासा नाल निभाही, तना दी कमाई दा ध्यान धर के खा

पावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आए ता। देग तेग फतेह वैद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के।

विवेकदान विवेकदान विसादान परुसादान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जय।

0: पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे तां साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मनया होवे प्रमाणता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी तांदर गह पैदा जाए सी तांदर गह पैदा जाए सी
1: कोई गावे रागी ना दी बेदी बहु भांत का।